103.7 मेगाहर्ट्ज पर ये FM शिमला है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 23 जून 2026। इस समय सुबह के 5:58 और 23 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। सुबह की इस सभा में आप सभी का स्वागत है।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। 6 बजने को है, आइए आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से विकसित हो रही भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय शक्ति है।

0: श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा कि पिछले दशक में भारत की उपलब्धियां राष्ट्र प्रथम की भावना से निर्देशित रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लिए गए निर्णय और कार्रवाई सदियों तक देश के भविष्य की आधारशिला रहेंगी।
1: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
0: प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में अपनी हाल की भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के प्रति भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की चेतना में सदियों से सहेजी गई स्मृतियां जीवंत हैं। वर्तमान में उठाए गए कदम अगले 1000 वर्षों के लिए भविष्य को आकार देंगे। सरकार के 12 वर्ष के सेवा कार्यों का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश के लगभग 45,000 गांवों तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि आज कुछ लोग संविधान की बात उठाते हैं, लेकिन जब वे सत्ता में थे तो नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में संविधान का नाम लेने पर ही गोली तक मार दी जाती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया जैसी पहल इस कारण सफल हो सकी है क्योंकि देश के लोगों ने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा और देश के प्रति कर्तव्य निभाए। आर्थिक सुधारों से मध्यम वर्ग को मिल रहे लाभों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कर राहत उपायों से परिवारों की कर मुक्त आय बढ़ी है। भारत और मोरक्को के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में हुई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉक्टर विनोद बाहड़े और मोरक्को के राष्ट्रीय न्यायिक पुलिस ब्रिगेड के प्रमुख हिशाम बाली ने की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण और बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। उम्मीद है कि ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थी मारे गए और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं, जिससे ये प्रक्रिया ज्यादा आसान और सुलभ हो जाएगी। फीफा विश्व कप में इस समय अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ग्रुप 1 के मुकाबले में फ्रांस और इराक के बीच मैच चल रहा है। इससे पहले ग्रुप जे के मैच में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी ने 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

प्रथम पूज्य श्री गणपति गणेश की इस वंदना के साथ। हिंदू धर्म और हमारी संस्कृति में ये परंपरा है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान श्री गणेश के नाम से ही होती है, इसीलिए उन्हें प्रथम पूज्य और विघ्नहर्ता कहा जाता है। चाहे गणेश चतुर्थी का उत्सव हो, गृह प्रवेश हो या सुबह की दैनिक पूजा हो, गणपति बप्पा के भजनों के बिना सब कुछ अधूरा लगता है। तो आइए इस गणपति वंदना के साथ शुरुआत करते हैं भक्ति रस से सराबोर कार्यक्रम हिमांजलि की।

इस गणपति वंदना के बाद आइए अब आराधना करते हैं भोलेनाथ शिवशंकर की। महादेव वो शक्ति हैं जो हर भक्त के हृदय में असीम शांति और प्रेम भर देते हैं। उनका रूप भले ही कठोर और तपस्वी हो, परंतु उनकी करुणा संसार को सहारा देती है। वो विनाश के देवता हैं, पर हर विनाश के पीछे नई सृष्टि का बीज छिपा होता है। भोलेनाथ का सरल स्वभाव और गहरी करुणा हमें ये सिखाती है कि जीवन में भक्ति और सत्य ही सबसे बड़ा सहारा है।

आज मंगलवार है, वीर हनुमान जी का दिन है, तो आइए उनकी आराधना करते हैं। और हनुमान जी जो हैं केवल संकट मोचन नहीं हैं, बल्कि वो हर उस दिल में बसते हैं जो सच्चाई, निष्ठा और भक्ति को अपनाता है। जब व्यक्ति जीवन की उलझनों में घिरता है, तब जब आत्मबल कमज़ोर पड़ने लगता है, तब जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जैसे शब्द

भक्ति रस से सराबोर कार्यक्रम हिमांजलि सुन रहे हैं आप हमारे साथ एफएम शिमला पर। और आइए अब सुनते हैं आज के इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

भक्तिरस से सराबोर कार्यक्रम हेमांजलि में आज बस इतना ही। आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 MHz पर। आइए अब सुनते हैं FM शिमला की एक और भक्तिमयी प्रस्तुति, मानस गान। गायन स्वर हैं लता मंगेशकर, आशा भोंसले और कविता कृष्णमूर्ति के। संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

सती ने महादेव से छल तो किया, किंतु उनके समाधि में चले जाने के बाद पश्चाताप की आग में स्वयं जलने लगी। शिव की समाधि का एक एक दिन सती के लिए एक एक युग के समान बीतने लगा। मन में ये सोच कि इस दारुण दुख के अथाह और अनंत सागर को कब पार कर सकेंगी। शंकर के विमुख हो जाने के बाद भी विधाता उन्हें क्यों जिला रहा है। विडंबना ये है कि आत्मग्लानि के भेद को किसी पर प्रकट भी नहीं कर सकती। 87,000 वर्ष बीत जाने के बाद शिव की समाधि टूटी। सती ने आकर उनके चरणों में सिर नवाया तो महादेव उन्हें आदर से पास बिठाकर हरि अवतार की कथाएं सुनाने लगे। उन्हीं दिनों सती के पिता दक्ष को ब्रह्मा ने प्रजापतियों का नायक बनाया। ऐसी प्रभुता का पद पाकर अभिमान किसे नहीं होता। दक्ष को भी अभिमान हुआ और उन्होंने एक महायज्ञ करने की ठानी, जिसमें गंधर्व, किन्नर, शेषनाग, सिद्धों सहित सभी देवताओं को निमंत्रित किया।

अभी आप सुन रहे थे मानस गान 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं FM शिमला का प्रसारण। आइए अब सुनते हैं देश गान।

0: अभी आप सुन रहे थे देशगान 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं FM शिमला। लीजिए पेश हैं FM न्यूज़ हेडलाइंस।
1: नमस्कार, FM न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं सरुपमा शर्मा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहित करने और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की सरकार की नीतियों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिलासपुर के हरनौड़ा से तत्तापानी तक 30 किलोमीटर लंबा क्रूज मार्ग विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह नादौन में ब्यास नदी और शिमला जिला में सतलुज नदी पर एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। सराज विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों के साथ बातचीत के दौरान शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 137 करोड़ रुपए की लागत से चैल चौक जंझैली सड़क को सुदृढ़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 83 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना को CRIF के तहत मंजूरी मिली है और इसके पूरा होने से क्षेत्र आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राजकीय महाविद्यालय ननखड़ी सहित प्रदेश के कई अन्य महाविद्यालयों को बंद करने के फैसले को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और जन विरोधी करार दिया है। उन्होंने कहा कि दुर्गम क्षेत्र में स्थित महाविद्यालयों को बंद कर सरकार ने स्थानीय युवाओं के उच्च शिक्षा प्राप्त करने के

0: अफसरों पर सीधा प्रहार किया है। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि छात्र संख्या का बहाना बनाकर स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने की बजाय छात्र संख्या बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। राजस्व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में शिमला में मंडी व ऊना जिले में एचपी शिवा परियोजना की प्रगति के संबंध में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उन्होंने योजना के तहत 30 जून तक संतोषजनक प्रगति न होने की स्थिति में ठेकेदारों के कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर उन्हें ब्लैकलिस्ट करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। FM न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। 7:57 पर फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।
1: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: एक सौ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। 7 बजने को है हिंदी में समाचार अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता से सफल हुई है।
3: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की और सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। भारत और मोरक्को के बीच आतंकरोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण तथा बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी

0: रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। यह पोर्टल नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि यह पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों तथा हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई थी और 9 अन्य घायल हो गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: MHz पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। इस समय सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए चिंतन। प्रस्तुति डॉक्टर हुकम शर्मा की है।
2: विषयों की ओर या किसी के भी प्रति आसक्ति या ममत्व बुद्धि ही समस्त संसार बंधन का मूल कारण है। ज्ञानी लोग किसी को भी व्यक्तिगत रूप से प्रेम नहीं करते और ना वे दूसरों को व्यक्तिगत रूप से अपने को प्रेम करना या अपने में आसक्त होने देना चाहते हैं। स्वयं मुक्त हैं, इसीलिए वे किसी को भी निज के प्रति माया मोह में नहीं फंसने देना चाहते। वे अपनी आत्मा को, भगवान को सभी में देखते हैं। अतः समस्त जीवों पर उनका एक समान प्यार और स्नेह होता है। उनके प्रेम में देह और इंद्रियों का कोई संबंध नहीं, कामकंध नहीं। ज्ञानी ही प्रकृत प्रेमी होता है और प्रकृत प्रेमी ही ज्ञानी। त्याग, प्रेम और पवित्रता भगवत प्राप्ति के उपाय हैं। सृष्टि के प्रारंभ में सतयुग का समय था। उस समय देवताओं ने महर्षियों से कहा, श्रुति कहती है कि यज्ञ में अज बलि होनी चाहिए। अज बकरे का नाम है, फिर आप लोग उसका बलिदान क्यों नहीं करते? महर्षियों ने कहा, देवताओं को मनुष्यों की इस प्रकार परीक्षा नहीं लेनी चाहिए और न उनकी बुद्धि को भ्रम में डालना चाहिए। बीज का नाम ही अज है। बीज के द्वारा अर्थात अन्न से ही यज्ञ करने का वेद निर्देश करता है। यज्ञ में पशुवध सज्जनों का धर्म नहीं है, परंतु देवताओं ने ऋषियों की बात स्वीकार नहीं की। दोनों पक्षों में इस प्रश्न पर विवाद आरंभ हो गया। उसी समय राजा उपरीचर आकाश मार्ग से सेना के साथ उधर से निकल रहे थे। भगवान नारायण की आराधना करके राजा उपरीचर ने ये शक्ति प्राप्त की थी कि वे अपने रथ तथा सैनिकों, मंत्रियों आदि के साथ इच्छानुसार आकाश मार्ग से सभी लोगों में आ जा सकते थे। उन प्रतापी नरेश को देखकर देवताओं तथा ऋषियों ने उन्हें मध्यस्थ बनाना चाहा। उनके समीप जाकर ऋषियों ने पूछा, यज्ञ में पशु बलि होनी चाहिए या नहीं? राजा उपरीचर ने पहले ये जानना चाहा कि देवताओं और ऋषियों में से किसका क्या पक्ष है। दोनों पक्षों के विचार जानकर राजा ने सोचा, देवताओं की प्रसन्नता प्राप्त करने का यह अवसर मुझे नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने निर्णय दे दिया कि यज्ञ में पशु बलि होनी चाहिए। उपरिचर का निर्णय सुनकर महर्षियों ने क्रोधपूर्वक कहा, तूने सत्य का निर्णय न करके पक्षपात किया है, असत्य का समर्थन किया है।

अतः हम शाप देते हैं कि अब तू देवलोक में नहीं जा सकेगा। पृथ्वी के ऊपर भी तेरे लिए स्थान नहीं होगा, तू पृथ्वी में धंस जाएगा। उपरिचर उसी समय आकाश से गिरने लगा। अब देवताओं को उन पर दया आई। उन्होंने कहा, महाराज, महर्षियों के वचन मिथ्या करने की शक्ति हम में नहीं है। हम लोग तो श्रुतियों का तात्पर्य जानने के लिए हठ किए हुए थे। पक्ष तो महर्षियों का ही सत्य है, किंतु हम लोगों से अनुराग होने के कारण आपने हमारा पक्ष लिया। इससे हम वरदान देते हैं कि जब तक आप भूगर्भ में रहेंगे, तब तक यज्ञ में ब्राह्मणों द्वारा जो घी की धारा डाली जाएगी वो आपको प्राप्त होती रहेगी। आपको भूख प्यास का कष्ट नहीं होगा।

अभी आप सुन रहे थे चिंतन, प्रस्तुति डॉक्टर हुकम शर्मा की थी। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला का प्रसारण।

FM शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो आइए आपको बता दें आज की FM हाइलाइट्स। अब से कुछ देर बाद यानी के 7:15 पर आप सुनेंगे अपना पसंदीदा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला। सात बजकर 57 मिनट, 8:30 और 9:57 पर FM शिमला पर हमारे साथ आप सुनते हैं FM न्यूज हेडलाइंस और समाचार प्रभात के लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र हम आपको लेकर चलेंगे ठीक 8 बजे। लौटिंग FM शिमला पर 8:32 पर और सुनवाएंगे आपको लोक संगीत कार्यक्रम।

8:45 पर आप सुनेंगे हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। इस कार्यक्रम में आज का विषय रहेगा काला मोतिया, और अगर आप इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 8:45 से लेकर 9:15 के दरमियान। हमारे फ़ोन नंबर्स 2808034 और 2808152 पर।

10 बजे कुछ चुनिंदा फिल्मी गीतों के साथ आप सुनेंगे कार्यक्रम राग छाया। 11:05 पर पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम आप सुनेंगे और 11:30 पर पहाड़ी संगीत कार्यक्रम पेश किया जाएगा। महिलाएं सुनेंगी अपना खास कार्यक्रम महिला सम्मेलन 12:20 पर। दोपहर 1:10 पर हमारे साथ

फिल्म शिमला पर आप सुनेंगे हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो शिमला। और 2 बजे का समय रहता है हमारे नॉन फिल्मी प्रोग्राम सबरंग का।

बजकर 30 मिनट पर युवाओं का खास कार्यक्रम युवाणी पेश किया जाएगा और 4 बजे आप सुनेंगे हमारे साथ फिल्म संगीत। चार बजकर 20 मिनट से लेकर शाम 7:05 के दरमियान विभिन्न हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं।

और शाम 7:10 पर आप सुनेंगे किसानों और बागवानों का पसंदीदा कार्यक्रम कृषि जगत। 8 बजे भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुनना बिल्कुल ना भूलें। एक फिल्म से ये प्रोग्राम आपके लिए हम लेकर आते हैं 9:15 पर। तो कौन सी है हमारी आज की फिल्म, ये जानने के लिए रहिए हमारे साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 9:30 पर हमारा ईमेल्स बेस्ड प्रोग्राम दिल की आवाज भी सुन आप सुन सकते हैं। गजलों के शौकीन हैं तो सुनिए हमारे साथ चंद दिलकश गजलें रात 10 बजे। सभा के अंत में 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे सदाबहार नगमे। तो ये थी जानकारी एफएम शिमला पर आज पेश किए जाने वाले कुछ खास कार्यक्रमों की। और एफएम शिमला पर अब वक्त हो चला है आपके पसंदीदा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला का।

FM शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज पर और FM शिमला पर ये वक्त है जानकारी और मनोरंजन से लबरेज हमारे उस खास प्रोग्राम का जिसका हर सुबह यूं ही बेसब्री से आप इंतज़ार किया करते हैं और अपनी किसी भी पसंदीदा चीज़ के लिए इंतज़ार करना कितना मुश्किल होता है ये हम बखूबी जानते हैं। इसीलिए तो लेकर आ गए हैं आपके लिए आप ही का अपना पसंदीदा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला। जी हाँ, बहुत सी बातें यहाँ पर होंगी रोज ही की तरह और कुछ लवली सॉन्ग्स भी हम आपको यहाँ पर सुनाएंगे डेफिनेटली, लेकिन उससे पहले हम ज़रा आपके मिजाज तो जान लें। तो बताइए कैसे हैं आप, अच्छे हैं ना? अजय अच्छे हैं तो बढ़िया हैं, और अगर नहीं हैं तो अब हो जाएंगे, क्योंकि आपके अपने चहेते FM शिमला पर अब हम आपको एंटरटेन करने के लिए आ गए हैं। तो चलिए फिर टेंशन्स और परेशानियों को भूल जाइए और FM शिमला पर हमारे साथ इंजॉय कीजिए हमारा ये प्रोग्राम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग शिमला। और FM शिमला पर आज का ये हसीन सफ़र आप इंजॉय करेंगे अपनी दोस्त रेडियो एंकर वीना नरवाल के साथ। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल।

चलिए जी, आप खैरियत से हैं ये जानकर तसल्ली हुई। तो चलिए तसल्ली से अब अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ, विचार जो है वो बहता हुआ पानी है। अगर इसमें आप गंदगी मिलाएंगे तो वो नाला बन जाएगा, और अगर सुगंध मिलाएंगे तो फिर वही गंगा जल कहलाएगा। कोशिश कीजिए कि जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी रहे या ना रहे मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। सुन रहे हैं आप FM।

जी हाँ, FM शिमला सुन रहे हैं आप हमारे साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो लिसनर्स, आज है 23 जून 2026 और बात अगर आज की तारीख से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं की करें तो ऐसी कई घटनाएं हैं जो आज की तारीख से जुड़ी हैं और आज की तारीख को खास बनाती हैं। आज की तारीख के साथ कुछ ऐसी घटनाएं दर्ज हैं जिन्होंने कई बार हवाओं के रुख मोड़ दिए। आपको बताएं कि 23 जून 1980 की एक घटना भारत के इतिहास की एक ऐसी घटना है जिसने देश की राजनीति के सारे समीकरण ही बदल डाले थे। दरअसल इस दिन हुई एक विमान दुर्घटना में देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी का निधन हो गया था। संजय गांधी को इंदिरा गांधी के राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाता था, लेकिन उनके निधन से देश की सियासी हवाएं पूरी तरह बदल गई थीं।

एक विमान दुर्घटना में देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी का निधन हो गया था। संजय गांधी को इंदिरा गांधी के राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाता था, लेकिन उनके निधन से देश की सियासी हवाएं पूरी तरह बदल गई थीं।

0: और आज का ये जो दिन है एक अन्य विमान हादसे का भी गवाह है। 1985 में आज ही का वो दिन था जब एयर इंडिया का एक यात्री विमान आयरलैंड तट के करीब हवा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और 329 यात्रियों की मौत हो गई थी। इस हादसे के समय विमान जो था वो अपने गंतव्य यानी कि एयरपोर्ट से मात्र 45 मिनट की दूरी पर था। और भी कई ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो आज की तारीख से जुड़ी हैं और आज की तारीख को खास बनाती हैं, उनके बारे में भी हम आपको ज़रूर बताएंगे अपने इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग शिमला। तो आपने कहीं नहीं जाना है, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रहिए हमारे साथ यूं ही शिमला एफएम पर।
1: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
2: भाभी जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
1: नीलम अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
2: भाभी छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
3: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।

ये लवली सॉन्ग्स इस वक्त आप इंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ एफएम शिमला पर। प्रोग्राम वही है, आपका अपना जाना पहचाना, गुड मॉर्निंग शिमला। आज की तारीख से जुड़ी कुछ और घटनाओं का जिक्र करें तो 1994 में

संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने दक्षिण अफ्रीका की सदस्यता को मंजूर कर लिया था 1994 में। उत्तरी कोरिया द्वारा परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने की घोषणा कर दी गई थी। 1996 में शेख हसीना वाजिद ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। और बात अगर करें 2008 की, तो टायर बनाने वाली देश की प्रमुख कंपनी जेके टायर इंडिया लिमिटेड ने मैक्सिको की टायर कंपनी टोनल एवं उसकी सहायक कंपनियों को 270 करोड़ डॉलर में खरीद लिया था। १८१० में बॉम्बे के डंकन डॉक का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। 1868 में क्रिस्टोफर एल शोल्स को टाइपराइटर के लिए पेटेंट मिला था। 1953 की बात करें तो जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कश्मीर में एक अस्पताल में निधन हो गया था आज ही की तारीख में। बात करें 1960 की, तो जापान और अमेरिका के बीच सुरक्षा समझौता हुआ था आज की तारीख में। और 1980 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है। तो लिसनर्स, ये कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो जुड़ी हैं आज की तारीख से और आज की तारीख को खास बनाती हैं। और हमारा इतिहास जो है हमें देता है जानकारी अपने बीते हुए अतीत के बारे में, और कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो हमारी जानकारी में इजाफा करती हैं। और इसी तरह की जानकारियों के साथ साथ भरपूर मनोरंजन हम आपके लिए लेकर आते हैं अपने सभी प्रोग्राम्स में। तो चलिए प्रोग्राम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और लवली सॉन्ग। आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
1: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
0: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सबर रहे।
1: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: तो लिसनर्स, चलिए प्रोग्राम में अब रुख करते हैं मौसम का। तो मौसम का मिजाज जो है वो आए दिन बदलता रहता है, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी धूप तो कभी बारिश। ये सब आजकल चल रहा है हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में। और बात अगर अपने खूबसूरत शिमला शहर की हम करें तो यहाँ का जो मौसम है वो एकदम सुहाना है। और आजकल अगर आप तपती गर्मी से छुटकारा पाने के लिए यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप ज़रूर आइए। और वैसे भी कुछ ही दिनों में मानसून जो है वो रिमझिम बारिशों का मौसम लेकर आने वाला है। और बारिशों के मौसम में पहाड़ी इलाकों में थोड़ी बहुत दिक्कतें भी हो जाती हैं, तो इसीलिए पहाड़ी इलाकों में और पहाड़ों में अगर आप घूमना चाहते हैं तो सही टाइम यही है। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अगर आप चाहें तो शिमला घूमने का प्लान बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं यहाँ की हसीन वादियों के साथ साथ यहाँ का औसम वेदर भी। और फिलहाल इन्जॉय कीजिए हमारे साथ प्रोग्राम में ये नेक्स्ट लवली म्यूजिकल नंबर। सुन रहे हैं आप एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुनते रहिए और बस यूं ही मुस्कुराते रहिए।

0: अरे पता है, हिमाचल प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक चल रहा है।
1: अच्छा, इसमें क्या होगा?
0: इसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं। इसमें मकानों से जुड़ी जानकारी ली जाएगी।
1: अच्छा, तो क्या घर के दस्तावेज, बैंक की जानकारी या कोई ओटीपी देना होगा?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं। जनगणना में किसी भी प्रकार के दस्तावेज, बैंक विवरण, पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगा जाता।
1: अच्छा,
0: केवल अधिकृत 33 प्रश्नों की जानकारी दीजिए। सही जानकारी देकर हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए।
2: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
3: अब एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। मंगलवार यानी के 23 जून 2026 को सुबह 8:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जाने वाले लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है काला मोतिया। यदि आप इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें मंगलवार यानी कि आज 23 जून को सुबह 8:45 से लेकर 9:15 के दरमियान हमारे फ़ोन नंबर्स 2808034 और 2808152 पर संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए विषय विशेषज्ञ आकाशवाणी स्टूडियोज में उपस्थित रहेंगे। और लीजिए अब इंजॉय कीजिए आज के इस प्रोग्राम का ये लास्ट म्यूजिकल नंबर।

तो लिसनर्स प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला में आज बस इतना ही। FM शिमला से अभी से लेकर 11 बजे तक बहुत सारे एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स हम आपके लिए लेकर आएंगे। अब से कुछ देर बाद FM न्यूज़ हेडलाइंस आप सुनेंगे, 8 बजे समाचार प्रभात आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, लोक संगीत 8:32 पर और 9:30 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम कुदरत के रंग। 10 बजे कुछ चुनिंदा फिल्मी गीतों के साथ हम आपके लिए लेकर आएंगे आपका पसंदीदा राग छाया कार्यक्रम। और 11:05 पर सुनना ना भूलिएगा पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। FM शिमला आपको देता है लगातार मनोरंजन, तो आपने कहीं नहीं जाना है, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रहिए हमारे साथ यूं ही शिमला FM पर।

0: एफएम शिमला पर अब वक्त हो चला है एफएम न्यूज हेडलाइंस का।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं सरुपमा शर्मा। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि केंद्र सरकार ने हिमाचल को बरसात के नुकसान के लिए भरपूर सहायता दी है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 94,000 से ज़्यादा मकान स्वीकृत किए गए हैं। वे शिमला में जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की और मनरेगा व MPLAD के लंबित कार्यों को एक सप्ताह में पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत बिलासपुर जिला के 22 चयनित गांवों में विकास कार्यों के लिए 20-20 लाख रुपए की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। उपायुक्त राहुल कुमार ने एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि ग्राम विकास योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में पंचायतों को पूरा सहयोग दिया जाए ताकि विकास कार्य निर्धारित अवधि में पूरे किए जा सकें। मिड डे मील वर्कर्स ने कल अपनी मांगों को लेकर प्रदेश व्यापी हड़ताल की। सीटू से संबंधित मिड डे मील वर्कर्स यूनियन ने वेतन बढ़ोतरी, ग्रेचुटी पेंशन और 12 महीने का वेतन देने जैसी मांगों को लेकर शिमला में टॉलेंट से सचिवालय तक रोष रैली निकाली। यूनियन की राज्य महासचिव शांति देवी ने मिड डे मील वर्कर्स को हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक 12 महीने का वेतन देने और नियमित करने के लिए नीति बनाने की मांग की है। प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड का वर्ष 2026-27 के लिए करीब 14 करोड़ रुपए का बजट तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर अभिषेक जैन की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित बैठक में पारित किया गया। इस दौरान अभिषेक जैन ने बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली परीक्षाओं में उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। शिमला शहर के प्रतिबंधित मार्गों पर रहने वाले लोगों की समस्याओं को लेकर भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने सांसद सुरेश कश्यप को एक ज्ञापन सौंपा। भाजपा नेता करण नंदा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने जाखू यूएस क्लब, बेनमोर और कनलो क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक रेजिडेंट पास जारी करने, परमिट शुल्क में तर्कसंगत कमी और प्रतिबंधित मार्गों से संबंधित नियमों में छूट प्राप्त श्रेणी में शामिल करने का आग्रह किया। एफएम न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। नमस्कार।
2: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: 8 बजने को है समाचार प्रभात के लिए आइए आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अग्निकांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 और आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक ले जा रहे 4 जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान LNG विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को साझा किया है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता में सफल हुई है।
3: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां, विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
3: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1,28,00,000 लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
3: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है, ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा है हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे। और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।

0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन की विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
1: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: हमारी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पद्म पुरस्कार पाने वाले सम्मानित व्यक्तियों के जीवन, उनके कार्यों और समाज में उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
2: मैदाब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
3: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सी के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
0: ये विशेष कार्यक्रम आज सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने BNS और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामजद आरोपियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। राज्य सरकार ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए हैं। घटना की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT का गठन किया गया है, जिसके सदस्य 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। SIT में अतिरिक्त मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य, पर्यटन और संस्कृति अमृत अभिजात और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। कल दोपहर लगी भीषण आग में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर 16 से 25 साल की उम्र के छात्र थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहल का भी शुभारंभ करेंगे। यूरिया, डाई अमोनिया फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के

0: विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लाफान क्षेत्र में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोहा स्थित भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 बजे से पहले नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जम्मू से कश्मीर जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन दोपहर 3 बजे के बाद सुरंग में प्रवेश नहीं मिलेगा। परामर्श में घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए समय सीमा भी तय की गई है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
1: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदाम्बी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इस बीच आज सवेरे 8:30 बजे से जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोस का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
0: मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तटवर्ती कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बृहस्पतिवार तक तेज हवाएं चलने और गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद मुकेश। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका ईरान के बीच बात बनी, 60 दिन में होगा अंतिम समझौता। ईरान के तेल से पाबंदी हटी, स्विट्जरलैंड के बुर्गेन स्टॉक रिसॉर्ट में घंटों चली वार्ता, बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई, जेडी वेंस ने बैठक को ऐतिहासिक बताया। पंजाब केसरी ने तनाव के बीच उम्मीद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जेडी वेंस अमेरिका के भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। अगर शांति समझौता विफल रहता है तो ट्रंप इसका पूरा दोष वेंस पर डाल देंगे। ये शांति समझौता वेंस के राजनीतिक करियर के लिए दोधारी तलवार बन चुका है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस्तीफे का ऐलान किया, बर्नहम ने पीएम पद की दावेदारी पेश की। स्टार्मर बीते 10 साल में ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा देने वाले 6ठे व्यक्ति। जनसत्ता की सुर्खी है, लखनऊ के अलीगंज में इमारत में लगी आग, 12 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लिया, जांच के लिए SIT गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दैनिक जागरण ने लापरवाही की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, बहुत दिन नहीं हुए जब देश की राजधानी में अवैध होटल में आग से 20 से अधिक लोग मारे गए थे। माना यह गया था कि इस घटना से सीख ली गई होगी, लेकिन लखनऊ की आग से पता चलता है कि ऐसा नहीं किया गया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अधिकरण कांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक लेकर आ रहे 4 जहाज हुरमुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Varma. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says principle of nation first has been driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. President Draupadi Murmu to confer Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan today. Uttar Pradesh government suspends 4 officials in connection with Lucknow fire incident. 4 accused arrested. 4 ships carrying fertilizers heading towards Indian ports after crossing Strait of Hormuz. Qatari authorities confirm death of 12 Indian nationals in Ras Laffan LNG explosion. And Lakshya Sen and Tanvi Sharma to lead India's challenge at US Open Super Badminton Tournament beginning today in California. Prime Minister Narendra Modi has said the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Addressing a summit organized by a private media house in New Delhi, the Prime Minister said the country's achievements of the past decade were rooted in trust, stability and a commitment to the larger global good.
2: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी 2-3 दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
1: Referring to his recent participation in the G7 summit, Mr. Modi said, world leaders recognized India's unwavering commitment to putting national interests first, a philosophy that continues to shape the country's policies and development agenda. Highlighting the government's 12 years in office, the Prime Minister said initiatives such as Swachh Bharat, Make in India, promotion of Khadi and support for local products succeeded because citizens embraced the spirit of nation building.
2: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही हैं, उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे, हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया। देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं।
1: Mr. Modi said nearly 25 crore people had moved out of poverty in recent years, leading to the emergence of a large new middle class and boosting economic activity.
2: 25 crore log garibi se bahar nikle hain, new middle class mein aaye hain, to iska fayda keval un parivaron tak nahi rehta, balki middle class ka bhi isme fayda hota hai. क्योंकि ये नया कंज्यूमर है जो इकोनॉमी को ड्राइव करता है, उसे अल्टीमेटली मिडिल क्लास के लिए अवसर बनते हैं। यानी गरीबी कम होना केवल वेलफेयर का ही विषय नहीं है, यह अवसरों के विस्तार की गाथा है, नई एस्पिरेशन की प्रेरणा है।
1: प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू

0: confer Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan today. Uttar Pradesh government suspends four officials in connection with Lucknow fire incident. Four accused arrested. Four ships carrying fertilizers heading towards Indian ports after crossing Strait of Hormuz. Qatari authorities confirm death of 12 Indian nationals in Ras Laffan LNG explosion. And Lakshya Sen and Tanvi Sharma to lead India's challenge at US Open Super Badminton Tournament beginning today in California. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: एक सौ 3.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। 8:30 हुए हैं, लीजिए पेश हैं एफएम न्यूज हेडलाइंस।
2: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं सरुपमा शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे।

0: Indra's Lafan LNG explosion, and Lakshya Sen and Tanvi Sharma to lead India's challenge at US Open Super Badminton Tournament beginning today in California. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: एक सौ 3.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। 8:30 हुए हैं, लीजिए पेश हैं FM न्यूज हेडलाइंस।
2: नमस्कार, FM न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं सरुपमा शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। ये यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। परामर्श के अनुसार अमरनाथ यात्रा के काफिलों की आवाजाही को सुचारू बनाने के लिए नवयुग सुरंग से सामान्य यातायात पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध रहेगा। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सुबह 11:30 बजे से पहले नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जम्मू से कश्मीर जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन दोपहर 3 बजे के बाद सुरंग में प्रवेश नहीं मिलेगा। देश में 5 लाख से अधिक अंगदान का संकल्प लिया गया है। ये अंग और उत्तक दान को लेकर लोगों में बढ़ती जागरूकता और सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि अंगदान प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रहे मरीजों को आशा और जीवन का दूसरा मौका देता है। मंत्रालय के अनुसार ये उपलब्धि सामाजिक जिम्मेदारी और भागीदारी विकसित करने के सरकार के निरंतर प्रयासों का परिणाम है। इस वर्ष जनवरी में आधार ऐप शुरू करने के बाद 3,10,00,000 से अधिक लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि इस ऐप के बढ़ते इस्तेमाल से पता चलता है कि सेवाओं का लाभ शीघ्र उठाने में इसके प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है। ऐप के जरिए एक ही क्लिक में लॉक या अनलॉक करना, उपस्थिति के साक्ष्य के लिए चेहरा प्रमाणित करना, QR बेस्ड परिचय पत्र और विजिटिंग कार्ड जैसी सेवाएँ प्राप्त की जा रही हैं। FM न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। 9:57 पर फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।
1: आठ बजकर 32 मिनट हुए हैं और FM शिमला पर यह वक्त है पहाड़ी लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक संगीत का।
3: मेरी बाठने पे चंदेरा थाला।
1: कार्यक्रम का ये पहला लोकगीत आइए सुनते हैं दीपराम भारद्वाज की आवाज़ में।

दीप राम भारद्वाज की आवाज़ में कार्यक्रम का ये पहला लोकगीत आपने सुना। आइए अब सुनते हैं विद्यानंद और साथियों की आवाज़ में ये लोकगीत।

0: नमस्कार, लाइफ ऑन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में मैं हुकम शर्मा आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। श्रोताओं, आज कार्यक्रम में हम काला मोतिया विषय पर चर्चा करेंगे और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज विषय विशेषज्ञ हमारे स्टूडियोस में हैं। डॉक्टर रामलाल शर्मा, प्रोफेसर एंड हेड नेत्र रोग विभाग, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में। डॉक्टर रामलाल शर्मा चिकित्सा जगत का एक बहुत बड़ा नाम है और आज इनके जो अनुभव हैं इन पूरा हम कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि जो काला मोतिया है इसके बारे में विस्तृत रूप से तमाम श्रोताओं को इनके माध्यम से हम जानकारियां हासिल करके तो आपसे साझा करें। श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि हमारी जो आँखें हैं ये कुदरत का एक अनमोल तोहफा है और यही आँखें हैं जो हमारे जीवन को रंगों से भर देती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बीमारी ऐसी भी है जो बिना आहट से चुपके से हमारी इन आँखों की रोशनी को चुरा सकती है? जी हाँ, ऐसी भी एक बीमारी है और जिसको कि ग्लूकोमा कहा जाता है या काला मोतिया भी इसको कहते हैं, और कुछ लोग तो इसको कहते हैं दृष्टि का मूक चोर। ये कब हमारी आँखों पर वार करता है पता ही नहीं चलता है, लेकिन एक आम व्यक्ति को पता नहीं चलता है, विशेषज्ञ तो जान लेते हैं कि क्या समस्या है। तो आइए इन्हीं तमाम बातों को डॉक्टर रामलाल शर्मा से साझा करते हैं। डॉक्टर साहब, आकाशवाणी स्टूडियोज में आपका स्वागत है।
1: जी नमस्कार।
0: काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया तो आम लोग सुनते हैं और बहुत बार सुना है, ये दोनों में फ़र्क क्या है?
1: जी, जो काला मोतिया और सफ़ेद मोतिया है इसका जो नामकरण है इसलिए हुआ है कि जब भी लोगों को सफ़ेद मोतिया की मर्ज़ होती है तो आँख के अंदर एक सफ़ेद रंग का बिंदु दिखता है जो कि एक मोती की तरह लगता है, इसीलिए इसका नाम सफ़ेद मोतिया रखा गया है। और इसके विपरीत इसमें क्योंकि दृष्टि कमज़ोर हो जाती है और टाइम के साथ इसमें फिर ऑपरेशन या इस सफ़ेद मोतिया को निकालने की ज़रूरत पड़ती है। ऐतिहासिक तौर पर ये देखा गया, इसकी जो टर्म है काला मोतिया की, हमारे बहुत पुरानी उसमें जो हमारे आयुर्वेद के ग्रंथ है उसमें भी ये लिखा हुआ है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि दृष्टि आपकी क्षीण हो रही है, नज़र ख़त्म हो रही है, पर आँख में किसी तरह का कोई सफ़ेद बिंदु नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि आँख का जो हमारी पुतली है वो बिल्कुल काले रंग की है, इसीलिए इसको जो है काला मोतिया कहा गया कि बिना किसी सफ़ेदी के भी आँख की दृष्टि धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। ये एक वजह थी कि इसको नामकरण काला मोतिया दिया गया। दूसरी वजह ये है कि जो काला मोतिया है उसमें जो है एक बार जब दृष्टि ख़त्म हो जाती है, जो दृष्टि कम हो जाती है उसको वापस नहीं ला सकते हैं। दूसरी बड़ी वजह ये थी कि सफ़ेद मोतिया वालों में देखा गया है कि वो भी टाइम के साथ उसकी दृष्टि ख़त्म होती है, पर अगर उसका ऑपरेशन हो जाए तो ऑपरेशन के बाद उसकी दृष्टि वापस आ जाती है। काला मोतिया में जो नज़र का नुकसान हो गया, अगर नज़र ख़त्म हो गई तो वो व्यक्ति हमेशा के लिए अंधा हो जाता है। दूसरी वजह काला मोतिया या मतलब बुराई के साथ जिसको कह सकते हैं, बुरी तरह की जो मर्ज़ कह सकते हैं, दूसरी वजह ये थी, तो इसलिए इसको सफ़ेद मोतिया और उसके मुकाबले में काला मोतिया कहा गया।
0: जी, हमारे श्रोता भी हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। श्रोताओं, 0177 शिमला का STD कोड है और फ़ोन नंबर एक बार फिर दोहरा देता हूँ आपके लिए, 2808034 और दूसरा नंबर है 2808152। काला मोतिया के संबंध में आपका कोई भी प्रश्न है तो सीधे हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं आप फोन लाइन के माध्यम से, और डॉक्टर रामलाल शर्मा जी

0: इस वक्त आकाशवाणी स्टूडियोज में आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए यहाँ हमारे साथ हैं। जी तो डॉक्टर साहब, जो काला मोतिया है इसको अगर हम जानना चाहें कि देखिए ना, अब आपने कहा कि नुकसान हमारी आंखों को पहुंचाता ही है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर उसकी आंखों की ज्योति चली जाती है तो एक तरह का नुकसान ही है
1: जी।
0: तो ये किस तरह से हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाता है?
1: जी, जैसे हमने बताया कि काला मोतिया धीरे धीरे आपकी नज़र को क्षीण करता है। आँख में हमारे दो या तीन इम्पॉर्टेंट रोग ऐसे हैं जो क्षरण रोग कह सकते हैं, डीजनरेशन जिनको कह सकते हैं, जिसमें कि उम्र दराज होने से आँख की जो दृष्टि है हमारी वो कम होने लगती है। तो इन तीन श्रेणियों में जो सबसे मुख्यतः रोग है, पहला वाला सफ़ेद मोतिया जिसका आपने जिक्र किया, दूसरा वाला रोग जो है आपकी काला मोतिया है, और तीसरा रोग जो है वो हमारे आँख के पर्दे का या दृष्टि पटल का जो है क्षरण है।
0: शर्मा जी, हमारी चर्चा जारी रहेगी, एक श्रोता से बात कर लेते हैं
1: जी।
0: हेलो।
2: हेलो, नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार
2: महोदय जी, मैं तहसील करसो गांव तलहर से, मैं बोधराज वर्मा बात कर रहा हूँ।
0: वर्मा जी बोलिए।
2: सर, डॉक्टर साहब से मैं जानना चाहता हूँ, जैसे ये मोतियाबिंद है ना जी, जैसे काला मोतिया है ना
0: जी,
2: ये यदि किसी को हो जाए तो ऐसा तो चलो मालूम है हमें भी कि इसका ऑपरेशन हो जाता है, यदि ऑपरेशन करके दोबारा से आंखें खराब हो जाए तो क्या दोबारा से उसका ऑपरेशन हो सकता है? नंबर एक। दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हम ठंडे पानी से आंखों को छलकते हैं ना, सवेरे छलकते हैं आंखों को
0: जी,
2: तो क्या ये ऐसा करना मुमकिन है या नामुमकिन है? कृपया आकाशवाणी शिमला के माध्यम से डॉक्टर साहब विस्तार से बताएं। धन्यवाद जी।
0: ठीक है जी, धन्यवाद फोन करने
1: का। जी चलो, आपके दो प्रश्न हैं, एक पहले, दूसरे वाले का जवाब मैं पहले दे देता हूँ। आँख को छालने से आँख को बिल्कुल कोई नुकसान नहीं होता है, बशर्ते कि वो आपका जो आँख में पानी जा रहा है वो साफ़ सुथरा हो। आँख छालना, बाहर से आप किसी भी तरह के ठंडे पानी से आँख छालिए, आँख के लिए हमेशा स्वस्थ रहता है। आहार बाहर की जो धूल है, डस्ट है, उसके कण हैं वो निकल जाते हैं, इस करके आँख छालना बिल्कुल एकदम अच्छी बात है। आँख पर बहुत जोर से नहीं छाल मारनी चाहिए, हल्के से आप उंगली में अपनी हथेली में पानी लेके आँख को गीला ठंडा कर सकते हैं, बट डायरेक्टली आँख को खुले रख के उसके ऊपर कभी भी डायरेक्टली पानी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि हमारी आँख को इससे नुकसान हो सकता है। और इसका जो है आँख को फायदा होता है बहुत सारी, जैसे मैंने बोली कि आँख के बहुत सारे कण धूल के निकल सकते हैं, इसमें कई बार डिस्चार्ज होता है छोटा मोटा, वो भी साफ हो जाता है। दूसरी बात जो आपने बताई काला मोतिया को लेके, तो काला मोतिया क्योंकि अभी विषय शुरू ही हुआ है, आप वाले उसका क्वेश्चन आंसर मैं दो लाइनों में दे देता हूँ। हाँ, इसका ऑपरेशन दो बार किया जा सकता है अगर एक बार में ये फेल हो गया हो। असली बात यह कि काला मोतिया हो क्यों रहा है वो ज़्यादा ज़रूरी है। काला मोतिया जो है हमारी आँख का अंदरूनी दबाव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो आँख की नस है, जो हमारी दृष्टि की जो नस पीछे नर्व होती है, वो बढ़े हुए दबाव की वजह से उसमें डैमेज होने लगता है, और टाइम के साथ साथ जैसे ये दबाव बना रहता है आँख में तो ये नज़र जो है, ये नस जो है पूरी तरह सूख जाती है। तो सबसे पहली वजह ये है कि इसको जिस तरह से आप एक शरीर का ब्लड प्रेशर देखते हो, इसी तरह से हमारे आँख का भी एक प्रेशर होता है जो कि सामान्यतः 15 और 20 के बीच में रहता है। जैसे हमारा ब्लड प्रेशर 80-120 है लगभग, अब सभी लोग जानते हैं, तो उसी तरह से आँख का प्रेशर भी अगर 15 और 20 के बीच में है तो इसको हम ठीक मानते हैं। यही जो प्रेशर है जब 20 का लेवल क्रॉस करने लगता है, उसी स्थिति को हम काला मोतिया बोलते हैं।
0: एक और श्रोता है जी लाइन पे। हेलो।
3: हेलो, नमस्कार सर।
0: जी नमस्कार,
3: मैं रोशला ठाकुर बोल रहा हूँ जी, बिलासपुर गांव चंगल से जी।
0: ठाकुर साहब बोलिए।
3: सर, मेरी आंख में एक आंख में ऐसा है, दो दो तीन तीन बल्ब दूर दिखाई देते हैं, भाई बड़े हुए जी, ऐसा है ये, इसमें क्या मोतियाबिंद है ऐसे ही जाड़ा पड़ा हुआ है?
1: जी जी, जो इस पे हम आ ही रहे थे कि जो इसमें लक्षण हैं जो आपके काला मोतिया और सफ़ेद मोतिया के थोड़े अलग अलग होते हैं, इसमें सबसे पहला लक्षण तो आपकी दृष्टि में कमी होती है, और जो दृष्टि की कमी है वो धीरे धीरे धुंधलापन, ऐसे लगता है कि जैसे आप बादलों के बीच में देख रहे हो, तो इस तरह के लक्षण सफ़ेद मोतिया में होते हैं, और कई बार एक चीज़ के दो दो तीन तीन इमेज बनते हैं, जैसे आप बता रहे हो कि आपको जो सामने चीज़ें दिख रही है वो एक आँख से दो दो या तीन तीन अगर आपको दिख रहे हैं, तो ज़्यादातर ऐसा जो है सफ़ेद मोतिया का लक्षण है। इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं होती है, क्योंकि इसको ऑपरेशन से ठीक किया जा सकता है। हाँ, पर

0: आपको इसके लिए एक बार दिखाना जरूर होगा कि इसकी वजह क्या सफेद मोतिया है या कोई और भी जो है वजह हो सकती है, या कई बार दोनों मोतिया साथ होते हैं, सफेद मोतिया भी होगा साथ साथ में काला मोतिया भी हो सकता है। तो एक वो बहुत बड़ी थोड़ी चिकित्सा की जो है दुविधा रहती है कि कई बार डॉक्टर जो है सिर्फ सफेद मोतिया देख लेते हैं क्योंकि आँख के अगले हिस्से में होता है, जबकि काला मोतिया आँख के पीछे बेस में या रूट में होता है, और इस वजह से काला मोतिया की जो वो है उसकी डिटेक्शन है, पहचान है, वो जो है नहीं हो पाती है। दूसरी चीज़ ये कि इसके लिए एक स्पेशल औजार से या एक स्पेशल यंत्र से हम आँख का प्रेशर नापते हैं, तभी उसका पता लगता है कि आँख का प्रेशर बढ़ा हुआ है या नहीं।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि जो इसके लक्षण है, एक मेरे ख्याल काला मोतिया के बहुत आसानी से तो लोगों को पता नहीं
0: जी
1: चलते
0: जी
1: हैं,
0: जी जी जी
1: तो एक आम इंसान को कब सतर्क हो जाना चाहिए? क्या कोई ऐसे शुरुआती कोई संकेत होते हैं जिनकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए
0: जी
1: कि
0: जी
1: समस्या हो सकती है?
0: जी जी जी बहुत बहुत ही है, क्योंकि जो काला मोतिया के लक्षण है वो सामान्य दूसरी मर्ज से मिलते जुलते हैं। बाकी आपने जैसे बोला कि जैसे ही काला मोतिया आँख में होने लगता है वो आगाह जरूर करता है आपको, पर उसको हम सामान्य तौर पर इग्नोर करते हैं। उसकी वजह ये है कि सबसे सादा लक्षण हमने जो बोला वो है जो नज़दीक की नज़र है हमारी, उसको जो है तेज़ी से उसमें हम जैसे 40 साल के आसपास हमारी नज़दीक की दृष्टि कम होती है तो लोग चश्मा पहनते हैं, तो उसको एक वो बहुत ही सामान्य चीज़ है क्योंकि वो एज रिलेटेड उसको रीडिंग ग्लासेस बोलते हैं, वो हम दे देते हैं। पर ये रीडिंग ग्लासेस यूजुअली 5 साल तक, आपके एक बार जब बना दिए तो 4-5 साल तक आराम से देख सकते हो। ये अगर तेज़ी से इसका नंबर बदल रहा है कि 2 या 3 साल में ही आपको ये नज़र का चश्मा बदलना पड़ रहा है, तो ये एक काला मोतिया का लक्षण हो सकता है। तो इसका मतलब ये कि जो आपने बोला था कि जो साइलेंट थीव है, इसको इसीलिए बोला जाता है कि ये उस मर्ज से इसके लक्षण मेल खाते हैं। लोग सोचे मेरा चश्मे का नंबर है
1: जी
0: इसलिए जब मैंने बदल दिया तो मेरा काम हो गया। एक दूसरा लक्षण इसका होता है कि सिर में आपका सिर में क्या आंख में दबाव रहता है, जिसको आई स्ट्रेन बोलते हैं, जिसको कि लोग ये सोचते हैं कि मैं कंप्यूटर मोबाइल में ज़्यादा काम कर रहा हूँ इसलिए स्ट्रेन हो रहा है, या मैं थोड़ा आज बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हुआ गर्मी में धूल में गया इसलिए दबाव हो रहा है। दूसरा जो आँख में जब भी भारीपन या दबाव हो ये काला मोतिया का लक्षण हो सकता है।
1: जी मतलब सिर दर्द जैसी
0: जी
1: संभावना।
0: जी हेडेक
1: जी
0: ये तीसरा लक्षण है, बहुत तेज़ सिर दर्द हो सकती है जब आप थोड़ी सी कम लाइट में जाओ, उस टाइम तीखापन हो सकता है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट लक्षण इसका सिर दर्द माना जाता है आई स्ट्रेन के अलावा। तो क्योंकि ये तीनों लक्षण दूसरी मर्जों के होते हैं इसलिए लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, सिर दर्द के लिए दवाइयाँ खा सकते हैं, आई
1: जी
0: स्ट्रेन के लिए कोई वैसा सादा ठंडक वाला पानी या कई तरह के ड्रॉप्स है उसको यूज़ करते हैं, और इसीलिए इस मर्ज़ को इग्नोर करते जाते हैं। चौथा लक्षण इसका नज़र में कमी है,
1: जी
0: दृष्टि की कमी भी इसमें किसी और तरीके से होती है, उसमें कम नहीं दिखना शुरू होगा बल्कि जो आँख का आपका दायरा है, जो घेरा है, वो कम होने लगता है, उसको हम इग्नोर करते हैं। जैसे मैं आपके ऊपर सीधा देख रहा हूँ तो जो आर पार की दृष्टि है वो कम होने लगती है कि बाहर आप कम देख सकते हो, इसलिए जो दायरा है आपका विजन का, आउटर विजन जिसको बोलते हैं, विजुअल फील्ड जिसको बोलते हैं, वो इसमें कंस्ट्रिक्ट होने लगती है, उसको भी आदमी इग्नोर करता है। इसलिए जो इसके 4 या 5 लक्षण हैं
1: जी
0: ये सब है अगर आप बहुत ही केयरफुल है, या डॉक्टर आपको देखता है और फिर बताता है कि आपको काला मोतिया होने का शक है या काला मोतिया है।
1: एक और श्रोता से बात करते हैं। जी हेलो।
2: हाँ जी सर, नमस्कार। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
0: जी
1: जी
0: जी मैं
1: नमस्कार।
2: मध्य प्रदेश सागर से विपिन कटारे बात कर रहा हूँ सर।
0: जी
2: सर मेरे दो सवाल थे। पहला सवाल ये था कि जो सफेद मोतियाबिंद होता है वो तो लगभग हर इंसान को ही देखने को मिलता है, जो 50-60 से ऊपर हो जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को होता ही है।
0: जी
2: लेकिन सवाल मेरा ये था कि जो काला मोतियाबिंद, कहते हैं कि बहुत गंभीर होता है और किसी को हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है, तो सवाल ये था कि जो काला मोतियाबिंद है इसकी शुरुआती पहचान कैसे कर सकते हैं और क्या अलग से क्या लक्षण इसमें दिखाई देते हैं? और दूसरा सवाल ये था कि कई बार देखा जाता है किसी भी व्यक्ति को अगर मोतिया बंद हो जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये हटा दिया जाएगा या फिर इसको साफ कर देंगे हम, तो सवाल मेरा ये था कि मोतियाबिंद साफ होता है या फिर इसका लेंस ही चेंज किया जाता है?
0: जी जी जी जी बहुत ही अच्छा सवाल और टेक्निकल सवाल है आपका। इसके लक्षण मैं पहले बता चुका हूँ कि 3 तरह के लक्षण हैं। एक जैसे बोला कि आँख में हल्का सा दबाव रहता है, सिर दर्द रहती है, और नज़र का घेरा जो है आसपास से कम होने लगता है, और जो आपका नज़दीक का चश्मा है ये बदलने लगता है जब आप 40 साल के ऊपर

0: पर हो उन लोगों के लिए ये वाले लक्षण हैं जो आपको ये बता सकते हैं कि जो है काला मोतिया होने की जो है लक्षण, शुरुआती लक्षण क्या क्या होते हैं। दूसरा सवाल था आपका कि जो काला मोतिया है उसके जो होने के लिए हमें जो है कैसे डॉक्टर को आप पता कर सकते हैं कि जो है उसकी वजह होने की क्या है। उसके लिए सबसे पहली बात मैं ये बताऊंगा कि जब भी आप नज़दीक की नज़र को अपना चश्मा रीडिंग ग्लासेस लो तो प्रायः लोग टेक्नीशियन या आँख का जो एक चश्मा बनाने वाला एक टेक्निकल आदमी होता है उस तक पहुँचते हैं, वो आँख के अंदरूनी हिस्से को डॉक्टर से नहीं चेक करवाते हैं। वो एक सबसे बढ़िया उम्र है कि 40 साल के आसपास आँख के आप अंदरूनी हिस्से को चेक कराए, उसकी नस को देखता है डॉक्टर, हालांकि काम सिर्फ ये एक मिनट का है पर उससे ये बहुत बड़ी मर्ज का पता लगता है कि आपकी आँख या आँख की नस में कोई दबाव तो नहीं है, और फिर आँख का प्रेशर देखा जाता है, अगर वो बड़ा हुआ है तो काला मोतिया की एक संभावना रहती है। तो वो एक बहुत बड़ा लक्षण है कि आप 40 साल के आसपास कभी भी उसको जो है आँख को ज़रूर डॉक्टर से चेक करवाइए बजाय कि चश्मा बदलने के। दूसरी बात आपने पूछी थी कि डॉक्टर कई बार इस तरह की बात बोलते हैं कि साफ कर देते हैं, ये बेसिकली आम आदमी के लिए भाषा है। बाकी आपने बिल्कुल सही बताया, जो सफ़ेद मोतिया है वो हमारी आँख के अंदर एक लेंस होता है जो हमारी आँख की विजन को एडजस्ट करता है नज़दीक और दूर के लिए। उम्र के साथ ये लेंस सफ़ेद हो जाता है, इस लेंस को हटा के हम वहाँ पर एक आर्टिफिशियल लेंस यानी प्लास्टिक का लेंस लगा देते हैं, उसी चीज़ को काला मोतिया सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन या लेंस लगाना बोलते हैं। तो उसको साफ नहीं किया जा सकता, बल्कि सफ़ेद हुआ जो हमारा नेचुरल लेंस है उसको हटा के वहाँ एक क्लियर लेंस बाहर से डाला जाता है। जबकि इसके विपरीत काला मोतिया का इस तरह का कोई इलाज नहीं होता, उसमें आँख का प्रेशर बढ़ता है और जो बढ़ा हुआ प्रेशर है वो नस को सुखा देता है, नस धीरे धीरे सूखती है 10% 20% 50% 100% और 100%। तो उसके लिए हम आँख में जो दबाव है उसको कम करने की दवा देते हैं या फिर उसको ऑपरेशन से उस दबाव को कम किया जाता है। पर जो डैमेज हो चुका, मान लो किसी की आँख में 50% डैमेज हो गया है, तो वो वहीं रोकने की कोशिश करते हैं ताकि वो हाई प्रेशर से आगे डैमेज ना हो।
1: एक और श्रोता है जी लाइन पे। हेलो,
2: नमस्ते सर जी।
1: जी
2: हुकुम शर्मा बाबू को नमस्ते, मैं बहुत याद करता हूँ।
1: जी
2: मैं डॉक्टर सितारे बिहार के वैशाली जिले से।
1: धन्यवाद डॉक्टर सितारे, क्या जानना चाहेंगे आज कार्यक्रम में?
2: काला मोतिया क्या खानदानी बीमारी है?
1: जी,
0: बहुत ही अच्छा सवाल है। काला मोतिया जो है वो एक खानदानी बीमारी भी है। इसमें ये देखा गया है कि ये जन्म जाती भी हो सकती है, कई बार जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसी वक्त उसकी आँख में काला मोतिया होता है, बट बहुत रेयर है। दूसरी संभावना ये रहती है कि जिस परिवार में काला मोतिया है, उम्र दराज लोगों में, उसमें पूरी संभावना रहती है कि उसमें एक वल्नरेबिलिटी या एक संभावना है कि उसमें भी काला मोतिया बने। बट ये कहूँगा कि इसकी बहुत ज़्यादा परसेंटेज नहीं है, पर आगाह आपको ज़रूर होना चाहिए। अगर आपके जो है पीढ़ियों में किसी को काला मोतिया रहा है, उससे उसकी दृष्टि खत्म हुई है, तो उससे जो है उनमें चांसेस काला मोतिया होने के भी ज़्यादा रहते हैं। हालांकि ज़्यादातर केसेस में ये ज़रूरी नहीं है कि ये अनुवांशिक होए।
1: जी जी, एक और श्रोता से बात करते हैं जी। हेलो।
3: हेलो
1: जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, शायद मोबाइल से फ़ोन कर रहे हैं आप, तो कहीं अगर सिग्नल क्लियर है आपके पास तो बात करें।
3: जी योगेश जांगड़े बोल रहे हैं।
1: कहाँ से बोल रहे हैं जी?
3: छत्तीसगढ़।
1: जी जांगड़े जी बोलिए।
3: ये जो काला मोतिया है ये मतलब अनुवांशिक भी होता है क्या? मतलब ये परिवार में एक दूसरे को?
0: जी, एक दूसरे को तो नहीं, ये जीन के साथ आ सकता है। जैसे आपके माता या पिता को किसी को है तो आगे संभावना होनी चाहिए, किसी भी जीन्स में माता पिता नाना नानी दादा दादी है उससे लेटर, एक दूसरे से नहीं फैल सकता क्योंकि ये सिर्फ आँख का एक तरह का दबाव बढ़ना है। तो जिसमें अगर किसी में अनुवांशिक तौर पर कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जिसमें दबाव बढ़ने के चांस रहते हैं, तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है।
1: जी एक और श्रोता इस वक्त लाइन पे हैं जी, लगातार श्रोता कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो।
4: हेलो
1: जी, स्वागत है कार्यक्रम में।
4: नमस्कार शर्मा जी।
1: जी नमस्कार
4: डॉक्टर साहब को, मेरा नमस्कार।
0: जी नमस्कार,
4: मैं मदन बोल रहा हूँ जी, रोहडू से।
1: मदन जी बोलिए।
4: हाँ जी, मेरी आंखें जी बचपन में मतलब जब मेरा जन्म हुआ ना जी, तो मतलब आंखें

0: बिल्कुल छोटी थी, मतलब जैसे बढ़ता जाए उम्र बढ़ती की बढ़ गई, तो आंखें मेरी ऊपर को जा रही है जी डॉक्टर साहब
1: जी,
0: तो आंखें ऊपर को मतलब नीचे को होती नहीं है, अरे परे भी नहीं होती है, मतलब बड़ा जोर लगाना पड़ता है इसमें, क्या दिक्कत हो रही है, मतलब ये कुछ इसके बारे में कुछ बताएंगे आप
1: जी? जी साइज भी छोटा था, आंखें भी छोटे साइज की है।
0: हाँ जी हाँ जी, आंखें भी
1: जी
0: छोटी है, छोटी को बड़ी है।
1: जी जी जी कोई बात नहीं जी। तो जो इस तरह की स्थितियां आती है, ये अनुवांशिक तौर पर देखने को मिलती है। कुछ बच्चों की जो है आंखें, जब वो बच्चा बन रहा होता है पेट के अंदर, तो वो आंख का डेवलपमेंट बहुत सारी वजहों से रुक जाता है, जिससे आंख का साइज़ प्रॉपरली नहीं बनता है। जब आंख का साइज़ छोटा रह जाता है, तो वो डिपेंड करता है कि किस स्टेज में वो डेवलपमेंटल अरेस्ट हुआ है। तो आपके केस में ऐसा ही संभावना है कि जो है जिस वक्त आपकी आंख डेवलप हो रही थी, एक आंख का डेवलपमेंट थोड़ा सा बड़ा होगा, इसलिए उसकी साइज़ लगभग थोड़ा बेहतर होगा। दूसरी आंख बोल रहे हो कि बहुत ही छोटी है, तो उसका साइज़ थोड़ा छोटा रह गया। दूसरी बात आपने ये बताई कि वो आंखें थोड़ी ऊपर की तरफ जा रही है, उसकी वजह ये होती है कि जैसे जैसे हमारी शरीर का साइज़ बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, हमारे आंख और ऑर्बिट का साइज़ भी बड़ा होता है। तो ऐसा बच्चा जब वो आंख का ऑर्बिट का साइज़ तो बड़ा हो गया, पर उसमें आंख छोटी रह गई, तो इसलिए उसकी जो पोजीशन है एकदम वो पैरेलल नहीं आती है, क्योंकि वो बेसिकली इस तरह है कि कोई एक आप बड़ी चीज़ में एक छोटी सी चीज़ फिट कर रहे हो, इस वजह से उसकी पोजीशन जो है ऊपर या नीचे को होती है। दूसरी वजह इसकी पोजीशन ऊपर जाने की होती है कि जो आँख के आसपास हमारी मसल है, वो भी आँख को एडजस्ट करके हमारे आँख को सीधा रखते हैं। उसकी अगर भी माल डेवलपमेंट है, तो कुछ एक मसल का खिंचाव एक तरफ को ज़्यादा पड़ता है, जिससे आई बॉल जो है अपरोल होने लगता है या थोड़ा ऊपर की तरफ चला जाता है। जी
2: एक और श्रोता से बात करते हैं जी। हेलो
3: डॉक्टर हुकम साहब नमस्कार।
2: जी नमस्कार
3: डॉक्टर रामलाल जी नमस्कार।
1: जी नमस्कार
3: डॉक्टर साहब, मेरा नाम एस एस कौशल है, आई एम रिटायर्ड सोशल सेक्रेटरी 83 ईयर ओल्ड।
1: जी
3: डॉक्टर साहब, मैं पहले भी आज मिल चुका हूँ।
1: जी जी जी
3: माई प्रॉब्लम इज के आई साइट उम्र के हिसाब से तो रीडिंग भी है, दूर का भी है
1: जी,
3: लेकिन वेन आई मूव बाय बॉल माई यू नो आई बॉल्स
1: जी,
3: तो फ्लोटिंग क्लाउड्स नजर आते हैं आसपास में
1: जी।
3: What is this?
1: जी जी जी जी तो जो इस तरह की स्थितियां आती है, ये भी एक हमारे उम्र दराज रोग है। जैसे मैंने बोला कि कुछ रोग हमारे जो है आंख के क्षरण से शुरू होते हैं। इसकी हालांकि बहुत सारी वजह जो मुझे लगती है मोस्ट लाइकली, हालांकि देखने के बाद ये बताया जा सकता है कि क्या किस तरह का रोग रहा होगा, पर मोटे तौर पर जैसे मैंने बोला कि जो उम्र दराज रोग है, एक सफ़ेद मोतिया जिसमें हमारा लेंस धुंधला पड़ जाता है जिसको ऑपरेशन से ठीक करते हैं, दूसरा ये काला मोतिया जिसमें हमारी नस सूखने लगती है आँख के दबाव बढ़ने से, तीसरा वाला रोग जो उम्र दराज है वो आप वाले जैसे लक्षण होते हैं कि जो हमारे आँख है उसके अंदर एक जेल होता है जिसको विट्रियस कहते हैं, वो आँख की पैकिंग का काम करता है। तो ये उम्र के साथ ये पैकिंग हमारी लूज़ हो जाती है, या ये जेल जो है लिक्विफाइड हो जाता है, लिक्विड बन जाता है। तो ये लिक्विड जो है हमारी आँख में वो पैकिंग की जगह फिर घूमने लगता है। जब ये हमारा आई बॉल इधर उधर घूमता है, तो ये लिक्विड भी उसके साथ साथ घूमता है, जिससे हमारे को इसके अंदर जो भी है थोड़े से दाने नज़र आने लगते हैं। तो हालांकि है ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पर इसके थोड़े इस तरह के लक्षण रहते हैं। तो सामान्यतः ऐसे लोगों को हम बोलते हैं कि आप इसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, इसकी तरफ देखें नहीं, इससे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता है। हाँ, रेयरली ऐसा होता है कि आँख की पैकिंग ढीली होने से कई बार आँख के पर्दे को थोड़ा बहुत खिंचाव होता है या कई पर्दे को नुकसान हो सकता है। जी
2: जी अगले श्रोता से बात करते हैं जी। हेलो
4: हेलो नमस्कार डॉक्टर साहब।
2: जी नमस्कार,
4: मैं महेंद्र कुमार शर्मा शिमला से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब को मेरा सादर नमस्कार। डॉक्टर साहब, मैं अभी मेरी आयु लगभग 55 वर्ष है
1: जी,
4: और मैंने लगभग 40 से 41 साल में अपनी आंखों का चेकअप करवाया था, तो उसमें बाईं आंख के पर्दे में हल्का सा सुराख था
1: जी।
4: तो उसका क्या होता था डॉक्टर साहब कि मेरे को कभी कभी हल्का हल्का दर्द होता था या होता है कभी कभी बीच में, कभी 1-2 महीने में होता है डॉक्टर साहब। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर डॉक्टर साहब कि वो क्या वो पर्दे का सुराख का साइज बढ़ता घटता रहता है सर?
1: जी जी जी जी।
4: और
1: जी,
4: मैं उसका क्या उपाय करूँ सर?
1: जी जी जी, उसमें 2-3 चीजें है एग्जैक्टली कि एक तो हमारे सेंट्रल मैकुलर होल बोलते हैं, अगर ऐसी स्थिति है तो बहुत सारे केसेस में होता है, 40 तो नहीं, कई बार 40 के आसपास या उसके बाद कभी भी हो सकता है। बुज़ुर्ग लोगों में ये बहुत आम तौर पर देखना है, उसको मैकुलर होल कहते हैं। उसमें कुछ भी नहीं है, वो होल नहीं है एक तरह का, वो आँख का सेंट्रल हिस्सा डैमेज होके आपके कमज़ोर होके पतला पड़ जाता है, इसलिए उसमें नज़र कम हो जाती है। एक पेरिफेरल होल होते हैं बाहरी तौर पर भी, वो भी डीजेनरेशन या क्षरण से होते हैं आँख के, उसमें अगर आपका आसपास का रेटिना उठा हुआ नहीं है उस होल के चारों तरफ वाला, तो उसमें कोई खतरा नहीं होता, उसमें बस वेट एंड वॉच और ऑब्जर्वेशन है। कोई ऐसा

0: लक्षण आए आपको कि आपकी उसमें दृष्टि कम हो रही है उस आँख में, या आँख के सामने काले दाने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और या आँख के सामने कोई बिजली चमक रही है, ये अगर तीन लक्षण हुए तो आपको इस होल के बारे में जो है वो होना चाहिए, थोड़ा सा अवेयर या उसको दिखा देना चाहिए। अदरवाइज आँख में होल होना एक थोड़ा सा नज़र का नुकसान करता है, अदरवाइज इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ फॉलोअप कराएं, एक या दो साल में आँख को चेक करवा लीजिए।
1: एक और श्रोता से बात करते हैं जी। हेलो,
2: गुड मॉर्निंग सर।
1: जी गुड मॉर्निंग जी,
2: किरण बात कर रही हूँ सर।
1: किरण जी कहाँ से बात कर रही हैं
2: सर? मैं कुफरी शिमला।
1: जी बताएं क्या जानना चाहती हैं।
2: गुड मॉर्निंग सर।
0: जी
2: सर, मेरा सवाल ये है कि मैं मतलब मेरी आँख है रेडिया बिंदु है, मतलब वो बाहर जाते हैं
0: जी,
2: तो सर मतलब वो आँख उसी मतलब उसमें लाल हो जाती है जैसे आँख है ना।
1: सिग्नल आपका क्लियर नहीं आ रहा है, कुछ सिग्नल्स में आकर थोड़ा सा क्लियर आप कहें, क्या जानना चाहती हैं? बात नहीं पहुंच रही है आपकी हम तक।
2: जी सर, अब आ रही है सर आवाज़?
1: हाँ हाँ जी, हाँ जी बोलिए
2: सर। मैं ये कहना चाह रही हूँ जैसे मतलब मेरी आँख में स्ट्रेट बिंदिया है ना,
0: हाँ,
2: तो मतलब उसमें आँख ऐसे लगती है जैसे कि लाल जैसे आग होती है ना।
0: हाँ लाल हो जाती है आग की तरह, सफेद बिंदु है आँख में।
2: जी सर, तो मतलब उसमें जलन हो जाती है, मतलब दिन में कम से कम 12-15 बार तो आंखें
0: जलन खारिश रहती है आंख में।
2: जी
0: हाँ जी, हाँ जी जी, चलो समझ गए आपकी बात का जवाब देता हूँ मैं। जो इस तरह की आँख में कई बार जो है लाली आती है, ये बचपन या जो है कुछ लोगों को थोड़ा बढ़ती उम्र में भी होता है। सामान्यतः तो जो छोटे बच्चे हैं 5 और 15 साल के बीच में, उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलती है। ये आँख की एलर्जी होती है जो धूप गर्मी और धूल की वजह से होती है। इसमें आँख में कई बार सफ़ेद सफ़ेद दाने आते हैं, थोड़ा डिस्चार्ज आता है, खुजली रहती है, लाली रहती है। तो इसके लिए एक उपाय आप जैसे बता रहे हो कि आँख को थोड़ा सा धो के रखिए और धूप धूल से बचाव करिए, और इसमें कुछ दवाओं की ज़रूरत होती है, उसके लिए आप डॉक्टर से के पास जाएं, वो आपको दवाइयां लिखेंगे। और ये प्राय सीजनल होती है, गर्मी के मौसम में आती है और थोड़ा ठंडा और बरसात में कम हो जाती है। बहुत कम केसेस में ये 12 महीने रहते हैं, उसमें ज़्यादातर दवाइयों की ज़रूरत होती है। बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें आप केमिस्ट से सीधा दवाई लेके आँख में ना डालें, क्योंकि कई बार लोग स्टीरॉयड डालते, उससे आराम हो जाता है पर वो आँख को नुकसान कर सकता है। जी
1: जी डॉक्टर साहब, कुछ अब मेरे जहन में भी सवाल हैं, वो भी शायद क्योंकि लगातार आज श्रोता जुड़ते रहे
0: जी।
1: तो अब थोड़ा सा फ़ोन कॉल्स को विराम देते हुए कुछ महत्वपूर्ण जो विषय हैं
0: जी,
1: जैसे कि हमारे शरीर में कोई भी समस्या हमें होती है, मान लीजिए कोई डायबिटिक है, कोई हाई ब्लड प्रेशर किसी को है, या दूसरी कोई तमाम समस्याएं हैं, क्या उन समस्याओं का भी हमारी आँखों से कोई संबंध है?
0: जी बहुत बड़ा संबंध है। हम उसको सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स जो है वो आँख के साथ बहुत सारी एसोसिएटेड है। आँख में जो ये आपने दो रोगों के जिनके नाम लिए, ब्लड प्रेशर हो गया, बीपी का बढ़ना है, आँख पर बिल्कुल प्रभाव करता है, आँख की अंदरूनी नसों को डैमेज कर देता है, आँख की नसों को ब्लॉक कर देता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या, बहुत सारे बुजुर्ग आते हैं हमारे पास जिनकी सडनली आँख की अंदरूनी आर्टरीज या वेन्स ब्लॉक हो जाती है, उसका एक बड़ा कारण ब्लड प्रेशर का बढ़ना है। इसलिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखें, नहीं तो आपको ये आँख को नुकसान कर सकता है। डायबिटीज़ तो वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है इन हमारे देश में भी और पूरे संसार में भी। जो शुगर से जुड़े हुए आँख के पर्दे के रोग है वो इतने ज़्यादा है कि वो बहुत सारे लोगों को ये अंधा करते हैं, और इसकी वजह से सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया दोनों ज़्यादा दिखने को मिलते हैं। जितने भी हमारे शुगर और उस वाले बीपी वाले पेशेंट्स होते हैं, शुगर वाले पेशेंट, उसमें सफ़ेद मोतिया भी हो सकता है और काला मोतिया भी हो सकता है। तीसरी जो आपका शरीर का रोग है जो आँख को नुकसान करता है, वो है हमारी जॉइंट डिसऑर्डर्स। जितने भी लोग गठिया बाई और गठिया से जुड़े हुए, उनके आँख का पानी सूख जाता है, और आँख में जो उनके लिए जो दवाइयाँ चलती है गठिया रोग वाली, वो भी आँख को नुकसान करती है। तो ये जो तीन तरह के बड़े रोग है जो सामान्यतः बहुत सारे लोगों में देखने को मिलते हैं, उससे आँख पर बहुत सारा प्रभाव पड़ता है, जिसमें हमारे ये एक काला मोतिया भी एक एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर है, जो कई बार बहुत दवाइयों से भी हो सकता है, ड्रग से भी हो सकता है, स्टीरॉयड से हो सकता है, और कई बार शारीरिक की मर्ज से भी हो सकता है।
1: तो आखिर में कोई संक्षेप में आपका कोई सुझाव काला मोतिया से बचाव के लिए या आँखों की देखभाल के लिए?
0: जी काला मोतिया के लिए मोटा सुझाव यही है मेरा कि जो है, एक तो अगर आपको ये 3-4 लक्षण लगे आँख का, विजन का,

0: का दायरा कम होने लगे तो हमेशा आँख को जल्दी चेक करवाइए और उसका इलाज करवाइए। कई तरह की इलाज अवेलेबल है, पूरी तरह से काला मोतिया का इलाज हो सकता है बशर्ते आपकी नज़र ख़त्म नहीं हुई है। जब नज़र ख़त्म होगी तब काला मोतिया का कोई इलाज नहीं हो सकता। तो मेरा सबसे बड़ा आज का संदेश यही रहेगा लोगों को कि नज़र आप बीच में चेक करवाते रहें और इसके बारे में जो है हमेशा सतर्क रहें कि आपकी आँख में काला मोतिया होने के चांसेस उम्र के साथ रहते हैं।
1: जी डॉक्टर रामलाल शर्मा, आपके जो तमाम अनुभव हैं हमारे श्रोताओं से आपने साझा किए और हमें पूरा यकीन है कि श्रोताओं को इसका लाभ भी होगा। आपने अपना कीमती समय हमारे श्रोताओं के लिए निकाला, आकाशवाणी स्टूडियोज़ में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।

0: आकाशवाणी शिमला और एफएम शिमला पर अभी आप लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर सुन रहे थे। हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं आज प्राइमरी चैनल से प्रसारित किए जाने वाले कुछ खास कार्यक्रमों के बारे में। 9:31 पर कार्यक्रम सुरबेला आप सुनेंगे और 10 बजे का समय रहेगा हमारे ईमेल्स बेस्ड प्रोग्राम रिमझिम का। ग्यारह बजकर 5 मिनट पर लोक संगीत आप सुनेंगे और महिलाओं का खास कार्यक्रम महिला सम्मेलन पेश किया जाएगा 12:20 पर। दोपहर 1:10 पर सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम सैनिकों के लिए और 2 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम सुनहरी किरणें का।

0: 3:05 पर आकाशवाणी के हमारे प्राइमरी चैनल से आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी। FM शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 MHz पर। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर भी सुना जा सकता है।
2: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले,
3: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण,
2: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
3: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
5: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
4: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
6: अरे पता है, हिमाचल प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक चल रहा है।

0: अच्छा, इसमें क्या होगा?
1: इसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं। इसमें मकानों से जुड़ी जानकारी ली जाएगी।
0: अच्छा, तो क्या घर के दस्तावेज, बैंक की जानकारी या कोई ओटीपी देना होगा?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। जनगणना में किसी भी प्रकार के दस्तावेज, बैंक विवरण, पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगा जाता।
0: अच्छा,
1: केवल अधिकृत 33 प्रश्नों की जानकारी दीजिए। सही जानकारी देकर हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन दिल्ली में नागरिक अलंकरण समारोह में 65 पद्म पुरस्कार प्रदान करेगी। प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए इस वर्ष 3,336 करोड़ की लागत की 19 जल विद्युत परियोजनाएं हुई हस्ताक्षरित। पहली जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त पेंशनरों को जुलाई में जारी की जाएगी एरियर की बकाया राशि। मंडी स्थित मिलफेड की चक्कर इकाई की बढ़ाई जाएगी क्षमता। प्लांट में अतिरिक्त पाश्चराइजर होगा स्थापित। और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की 93वीं जयंती आज प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों में दी जा रही है श्रद्धांजलि। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन दिल्ली में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। गणतंत्र दिवस की पूर्ण संध्या पर सरकार ने वर्ष 2026 के लिए 5 पद्म विभूषण सहित 131 पद्म अलंकरणों की घोषणा की थी। पद्म अलंकरण देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। राज्य सरकार ने इस वर्ष लगभग 3,336 करोड़ रुपए की लागत से 278 मेगावाट क्षमता की 19 जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन समझौते हस्ताक्षरित किए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस उपलब्धि के लिए विभाग के प्रयासों को सराहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश की कुल विद्युत क्षमता 24,000 मेगावाट है, जिसमें से 12,588 मेगावाट क्षमता की 189 परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि 1,528 मेगावाट क्षमता की 54 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं तथा 7,500 मेगावाट क्षमता की 526 परियोजनाएं स्वीकृति के विभिन्न चरणों में है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऊर्जा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अपनी ऊर्जा नीति में संशोधन करते हुए 25 मेगावाट क्षमता तक की जल विद्युत परियोजनाओं में रॉयल्टी दरों को 40 वर्षों के लिए 12% कर दिया है। हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड की मंडी स्थित चक्कर इकाई में बढ़ते दुग्ध संग्रहण को देखते हुए प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। वर्तमान में प्लांट की क्षमता 50,000 लीटर प्रतिदिन है, जबकि यहां करीब 1,00,000 लीटर दूध प्रतिदिन पहुंच रहा है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता।
1: मंडी जिला के मिल्कफेड की चक्कर इकाई में बढ़ते दुग्ध संग्रहण को देखते हुए प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इकाई प्रभारी विश्वकांत शर्मा ने बताया कि वर्तमान में 1,00,000 लीटर दूध प्रतिदिन पहुंच रहा है। इसी बढ़ते दबाव को देखते हुए प्लांट में एक अतिरिक्त पॉश्चराइजर स्थापित किया गया है और रेफ्रिजरेशन क्षमता बढ़ाने का कार्य भी जारी है। इन कार्यों के पूरा होने के बाद प्लांट की क्षमता बढ़कर लगभग 1,50,000 लीटर प्रतिदिन हो जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा दूध के खरीद मूल्य में बढ़ोतरी के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन के प्रति किसानों का रुझान लगातार बढ़ा है। जनवरी 2023 में लगभग 9,000 दुग्ध उत्पादक जुड़े थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 21,000 से अधिक हो गई है। दुग्ध उत्पादकों को समय पर भुगतान भी सुनिश्चित किया जा रहा है। मई माह के लिए लगभग 15,70,00,000 रुपए का भुगतान किसानों को किया जा चुका है और जल्द ही भुगतान की पूरी प्रक्रिया DBT के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में की जाएगी, जिससे पारदर्शिता और सुविधा दोनों बढ़ेगी। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
0: प्रदेश में पहली जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए सभी सरकारी और पारिवारिक पेंशनरों को उनकी बची हुई एरियर राशि जुलाई 2026 में जारी कर दी जाएगी। वित्त विभाग से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 2016 से पहले के सभी पेंशनधारकों के एरियर का बकाया भुगतान सीधे बैंक खातों में किया जाएगा। ये निर्णय राज्य सरकार द्वारा लंबित पेंशन एरियर के चरणबद्ध भुगतान की प्रक्रिया के तहत लिया गया है, जिससे हजारों पेंशनर्स लाभान्वित होंगे।

0: होगी। वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के कर्मचारियों के हक में एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत के अनुसार 15 मई 2003 से पहले वर्क चार्ज स्टेटस पाने वाले कर्मचारी भी पुरानी पेंशन पाने के हकदार होंगे। अदालत ने वित्त विभाग की ओर से पेंशन रोकने के वर्ष 2019 के आदेश को पूरी तरह रद्द कर दिया है। साथ ही याचिकाकर्ताओं की CCS पेंशन नियम 1972 के तहत पेंशन और अन्य सभी सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने के आदेश जारी किए गए हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी वेबसाइट www.newsair.gov.in, DTH सेवा और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार लगातार प्रदेश में झूठा प्रचार करती रही है और केंद्र सरकार पर हिमाचल के साथ भेदभाव का आरोप लगाती रही है, जबकि केंद्र सरकार प्रदेश को हर क्षेत्र में भरपूर सहयोग प्रदान कर रही है। हर्ष महाजन ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी के एक आधिकारिक पत्र का हवाला देते हुए कहा कि शिक्षा मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत हिमाचल प्रदेश को पिछले 3 वर्षों में करोड़ों रुपयों की केंद्रीय सहायता उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 में समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश में 486 करोड़, वर्ष 24-25 में 526 करोड़ और वर्ष 25-26 में 676 करोड़ की केंद्रीय सहायता राशि जारी की गई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के तहत पिछले 3 वर्षों में प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 1963 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता मिली है। हर्ष महाजन ने सवाल उठाया है कि जब केंद्र सरकार लगातार धन उपलब्ध करवा रही है तो प्रदेश में विकास कार्य अपेक्षित गति से क्यों नहीं हो पा रहे हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की आज 93वीं जयंती है। इस अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह को याद किया जा रहा है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित कई गणमान्य लोग आज रिज मैदान स्थित वीरभद्र सिंह की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए वीरभद्र सिंह फाउंडेशन द्वारा आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें रक्तदान शिविर, अस्पतालों में मरीजों को फल वितरण कार्यक्रम सहित रिज मैदान पर इंटरनेशनल प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप शामिल है। राज्य में हरित आवरण में वृद्धि तथा पर्यावरण संरक्षण में जन भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरंभ की गई राजीव गांधी ग्रीन एडॉप्शन योजना के अंतर्गत वन विभाग कुल्लू ने 2 निजी संस्थाओं के साथ MOU साइन किया है। जायका वानिकी परियोजना के मुख्य परियोजना निदेशक डॉ. संजय सूद ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र संस्थाएं वन विभाग द्वारा चिन्हित वन क्षेत्रों को गोद लेकर पौधारोपण, इको रेस्टोरेशन तथा उनके रखरखाव का कार्य करेगी। प्रदेश की ऊंची चोटियों में कल हल्की बर्फबारी हुई है, जबकि कुल्लू और चंबा जिला के निचले इलाकों में बारिश दर्ज की गई है। चंबा जिला की ऊंची चोटियों सहित रोहतांग दर्रा में बर्फबारी से जनजातीय इलाकों में ठंडक बढ़ गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ लाहौल स्पीति से हमारे संवाददाता।
1: जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में इन दिनों मौसम लगातार ठंडा बना हुआ है। पिछले कल खराब मौसम के चलते जिले में दिन भर रुक रुक कर हल्की बारिश होती रही। वहीं रोहतांग दर्रा, बारालाचा, लाश शिंगुला सहित जिले के सभी ऊंचे चोटियों में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई। ताजा बर्फबारी के बाद पूरे जिले में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को जून के महीने में भी सर्दी का एहसास हो रहा है। जहां देश के अधिकांश हिस्से भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं, वहीं लाहौल स्पीति का मौसम ठंडा और सुहावना बना हुआ है। हालांकि ये मौसम पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, लेकिन किसानों और बागवानों की चिंता को भी बढ़ा रहा है। लगातार बादल और कम धूप के कारण फसलों के पकने की रफ्तार प्रभावित हो रही है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: वहीं राजधानी शिमला सहित अधिकतर क्षेत्रों में आज धूप खिली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार अगले 4 दिनों तक राज्य के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान चोटियों पर हल्की बर्फबारी के भी आसार बने हैं। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। अमर उजाला की सुर्खी है, HRTC कर्मियों को राहत, मेडिकल बिलों के भुगतान के लिए 20 करोड़ जारी। बागवानी विभाग में भरे जाएंगे 450 पद शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है, मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी, सेब बागवानों को मिलेगी बेहतर तकनीकी सहायता।

पंजाब केसरी की एक खबर है, हिम केयर योजना का दायरा बढ़ा, अब 10 लाख तक स्वास्थ्य कवर। हिमाचल के 37 दवा उद्योगों में बनी 44 दवाएं जांच में फेल, शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है, हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह से लेकर गैस्ट्रिक रोगों की दवाइयों के साथ 4 सिरप भी शामिल। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन दिल्ली में नागरिक अलंकरण समारोह में 65 पद्म पुरस्कार प्रदान करेगी। प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए इस वर्ष 3,336 करोड़ की लागत की 19 जल विद्युत परियोजनाएं हुई हस्ताक्षरित। 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्ति पेंशनरों को जुलाई में जारी की जाएगी एरियर की बकाया राशि। मंडी स्थित मिल्क फैट की चक्कर इकाई की बढ़ाई जाएगी क्षमता, प्लांट में अतिरिक्त पाश्चराइजर होगा स्थापित। और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की 93वीं जयंती आज, प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों में दी जा रही श्रद्धांजलि। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते

0: शेयर की बकाया राशि। मंडी स्थित मिल्क फैट की चक्कर इकाई की बढ़ाई जाएगी क्षमता, प्लांट में अतिरिक्त पाश्चराइजर होगा स्थापित। और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की 93वीं जयंती आज, प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों में दी जा रही श्रद्धांजलि। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
1: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
2: सीखें युवा दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
3: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद,
2: अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनित में जारी।
4: अभी आप प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला पर भी प्रसारित किए जा रहे थे। हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं, हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 MHz FM शिमला।
5: हर खुशी अब लगे नमी,
1: मस्त चुनो मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए FM।

एफएम शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हाँ, 9:30 हो गए हैं और एफएम शिमला पर अब आपके लिए हम लेकर आ गए हैं हमारा वो खास प्रोग्राम जिसका आप कर रहे हैं बेसब्री से इंतज़ार। और इंतज़ार करने की एक बड़ी ही खास वजह है, और वो ये है कि अपने इस प्रोग्राम में हम आपको लेकर चलते हैं अपने खूबसूरत हिमाचल की कुछ बेहद खूबसूरत और फेमस जगहों की सैर पर। और वैसे भी हिमाचल में आना और यहाँ पर घूमना हर किसी का ड्रीम रहता है। यहाँ की खूबसूरती और शांत वातावरण जो है वो सदियों से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते आए हैं, और आज तक ये जो सिलसिला है ज्यों का त्यों बरकरार है। तो अब आप यकीनन ये जानना चाहेंगे कि इस प्रोग्राम में आज हम आपको कहाँ लेकर जाने वाले हैं, तो ज़रूर हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं आज के इस प्रोग्राम का ये फर्स्ट म्यूजिकल नंबर।

आप ट्यून इन है हमारे साथ एफएम शिमला पर और सुन रहे हैं प्रोग्राम कुदरत के रंग। और आज अपने इस प्रोग्राम में हम आपको एक ऐसी वैली के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर घूमने के बाद आप कुल्लू मनाली जैसी फेमस जगहों को भी भूल जाएंगे। दरअसल होता क्या है कि गर्मियों का सीज़न बढ़ने के साथ ही जब मैदान तपते हैं तो लोग जो हैं ठंडी जगहों और ठंडी छाओं के साथ साथ सुंदर प्राकृतिक नज़ारों को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में ऐसे अनगिनत स्थान हैं जहां पर जाकर आपको गर्मी से राहत मिल सकती है, लेकिन एक जगह यहाँ पर ऐसी भी है कि जहाँ पर गर्मी से राहत ही नहीं बल्कि आपको मिलेगा एक अलग ही सुकून भी। हम बात कर रहे हैं कांगड़ा और मंडी की सीमा पर ऊहल नदी।

के साथ बसे बरोट वैली की। जी हाँ, बरोट वैली जो है टूरिस्ट को काफ़ी रास आती है और यहाँ पर मनाली और शिमला की तरह टूरिस्ट्स की जो है भीड़ नहीं होती है, लेकिन ये जगह जो है टूरिस्ट को काफ़ी समय से अट्रैक्ट करती आ रही है। और हम आपको बताएं कि अगर आप बरोट नहीं गए हैं तो समझ लीजिए कि प्राकृतिक नज़ारों से रूबरू होने से आप जो हैं अभी तक महरूम हैं। जी हाँ, मंडी ज़िला की चौहार घाटी का बरोट जो है बहुत ही सुंदर और आकर्षक एक टूरिस्ट प्लेस है जो कि टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और समुद्री सतह से 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित बरोट ऊहल नदी के साथ बसा हुआ छोटा सा खूबसूरत हिल स्टेशन है और इस जगह को बिजली परियोजना के लिए ऊहल नदी पर बसाया गया था, लेकिन आज की डेट में ये सबसे ज़्यादा फेमस टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। मंडी से करीब 80 किलोमीटर दूर देवदार के घने जंगलों से घिरा बरोट नेचर और एडवेंचर लवर्स के लिए एक बेहद सुंदर जगह है और यहाँ पर टूरिस्ट जो है प्रकृति की खूबसूरती के बीच ट्रैकिंग से लेकर फिशिंग, कैंपिंग, रैपलिंग जैसी एक्टिविटीज़ का मज़ा ले सकते हैं। बिजली परियोजनाओं के लिए भी बरोट जो है काफ़ी मशहूर है। बरोट में अंग्रेज़ों की ओर से बनाई गई शानन विद्युत परियोजना का जलाशय भी है और साल 1925 में ब्रिटिश सेना के इंजीनियर कर्नल बंटी और मंडी के राजा जोगेंद्र सेन के बीच एक अनुबंध हुआ था जिससे जोगेंद्र नगर की शानन और बस्सी जल विद्युत परियोजनाएँ भी बनी हैं। इस जगह के बारे में और भी कुछ बातें हैं आपको बताने के लिए हमारे पास, वो हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल आप इंजॉय कीजिए प्रोग्राम में एक प्यारा सा सॉन्ग और यूं ही रहिए हमारे साथ FM चिमला पर।

हिमाचल के फेमस बरोट वैली की बातें आज हो रही हैं प्रोग्राम कुदरत के रंग में। तो लिसनर्स, आपको हम बताएं कि बरोट वैली जो है अपनी खूबसूरती के अलावा अपने ट्राउट फिश फार्म के लिए भी फेमस है। इसका संचालन मत्स्य पालन विभाग कर रहा है और हर साल यहाँ पर मत्स्य अखेट प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। इस जगह के आसपास की जगहों के बारे में बात करें तो बरोट के आसपास जोहार घाटी, झांकड़ी गांव और हुरंग नारायण मंदिर जैसे आकर्षक स्थल भी मौजूद हैं। ये मंदिर भी अपनी विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं और बरोट ऐसी जगह है जहां पर जनाब हर साल टूरिस्ट जो हैं बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं और किसी भी मौसम में यहां पर जाया जा सकता है। हालांकि मानसून में बारिश होने की वजह से यहां पर कई बार रास्ते जो हैं बंद भी हो जाते हैं, इसीलिए भारी बरसात के दिनों में कोशिश कीजिए कि आप यहां पर ना जाएं। आजकल अगर आप जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी बरसातें जो हैं हल्की हैं, शुरू नहीं हुई हैं पूरी तरह से, तो आप अभी यहाँ पर जा सकते हैं। और आपको हम बताएं कि आखिर यहाँ पर आप कैसे पहुँच सकते हैं। तो लिसनर्स, अगर आप बाय रोड यहाँ पर आना चाहते हैं तो पठानकोट और मंडी के नेशनल हाईवे पर स्थित घटासनी स्थान से बरोट आप जा सकते हैं। अगर दिल्ली से आप आ रहे हैं तो वाया कांगड़ा, बैजनाथ, पालमपुर होकर आप बरोट पहुंच सकते हैं। गग्गल एयरपोर्ट से उतरकर आप यहां से टैक्सी और बस की यात्रा कर सकते हैं और बरोट के नज़दीक जो एयरपोर्ट है कुल्लू में है और ये यहाँ से 108 किलोमीटर दूर है। इस एयरपोर्ट से बरोट जाने के लिए बस और टैक्सीज जो हैं वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। बरोट घाटी का जो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो है जोगिंदर नगर, जहाँ से आनी से बरोट घाटी आप आसानी से पहुँच सकते हैं। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आखिर कौन सा मार्ग आप चुनते हैं बरोट वैली जाने के लिए। और हम तो आपसे यही कहेंगे कि वक्त अगर कभी इजाज़त दे तो एक बार इस जगह की खूबसूरती को निहारने के लिए जाइएगा ज़रूर।

0: तो लिसनर्स, प्रोग्राम कुदरत के रंग में आज बस इतना ही। आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब पेश है एफएम न्यूज़ हेडलाइंस।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं सरुपमा शर्मा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के कर्मचारियों के हक में एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत के अनुसार 15 मई 2003 से पहले वर्क चार्ज स्टेटस पाने वाले कर्मी पुरानी पेंशन पाने के हकदार होंगे। अदालत ने वित्त विभाग की ओर से पेंशन रोकने के 2019 के आदेश को पूरी तरह रद्द कर दिया है। साथ ही याचिकाकर्ताओं को CCS पेंशन नियम 1972 के तहत पेंशन और अन्य सभी सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने के आदेश जारी किए गए हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की याद में शिमला के प्रसिद्ध ऐतिहासिक रिज मैदान पर एक भव्य जयंती कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। राजा वीरभद्र सिंह फाउंडेशन द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम 23 जून को उनके 93वें जन्मोत्सव के अवसर पर मनाया जाएगा। कार्यक्रम में राज्यपाल कविंदर गुप्ता और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। राज्य वन विभाग ने राजीव गांधी ग्रीन एडॉप्शन योजना के तहत पर्यावरण संरक्षण में जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से कुल्लू में 2 निजी संस्थाओं रेड एप्पल और पैराडाइज के साथ MOU हस्ताक्षर किया गया है। वन बल प्रमुख जायका वाणी की परियोजना के मुख्य परियोजना निदेशक डॉक्टर संजय सूद ने बताया कि पात्र संस्थाएं वन विभाग द्वारा चिन्हित क्षेत्रों को गोद लेकर पौधरोपण, पारिस्थितिक पुनर्स्थापन और उनके रख रखाव का कार्य करेंगी। आपदा रक्षक पायलट परियोजना के तहत कांगड़ा जिला में 12 उपमंडलों में अब तक 300 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। धर्मशाला में परियोजना के तहत आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए SDM शिल्पी बेगटा ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को आपदा जोखिम की समझ, प्राथमिक सुरक्षा उपाय, खोज व बचाव व सामुदायिक समन्वय जैसी तैयारियों से जुड़े विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रोहतांग दर्रा सहित पांगी की ऊंची चोटियों पर बीते कल हल्की बर्फबारी हुई है भी। वहीं कुल्लू और चंबा जिला के निचले इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई है। हालांकि राजधानी शिमला सहित अधिकतर क्षेत्रों में आज धूप खिली हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी 4 दिन तक राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है, जबकि इस दौरान ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी होने के आसार हैं। FM न्यूज़ हेडलाइंस में आज बस इतना ही। कल सुबह 6:57 पर फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।
2: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।
3: हर खुशी अब लगे नमी,
2: मस्त चुनो, मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए FM शिमला।

एफएम शिमला सुन रहे हैं आप हमारे साथ, और एफएम शिमला पर बहुत सारे एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं आज पूरा दिन भर आप सुनेंगे। अब से कुछ ही देर बाद राग छाया प्रोग्राम लेकर हम आएंगे आपके लिए, और 11:05 पर आप सुनेंगे पुरानी फिल्मों से प्रोग्राम। पहाड़ी संगीत आप सुनेंगे 11:30 पर, और दोपहर 1:10 पर सुनना बिल्कुल ना भूलें हेलो शिमला, हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में आप भेज सकते हैं अपनी फरमाइशें, कर सकते हैं हमें कॉल्स, और सुनेंगे अपनी फरमाइश के गीत भी आप हमारे साथ। तो ये जो सारे प्रोग्राम्स हैं आप इन्हें इंजॉय कीजिएगा हमारे साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, और बस यूं ही सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

जी हाँ, इस वक्त अपने रेडियो सेट्स पर आपने ट्यून किया है एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी बिल्कुल, 10 बज चुके हैं और एफएम शिमला पर हमारे साथ अब आप सुनेंगे राग छाया कार्यक्रम। हिंदुस्तानी रागों पर आधारित हमारा ये प्रोग्राम हर मंगलवार इसी वक्त आप सुनते हैं हमारे साथ, और एक घंटे के इस पूरे प्रोग्राम के दौरान चंद बेहतरीन गीत हम आपके लिए लेकर आते हैं। और राग जो होते हैं वो सिर्फ बेहतरीन धुनें नहीं हैं, बल्कि वो कुछ सुनियोजित और व्यवस्थित प्रणालियां हैं जो कि संगीत में हर एक भाव को आकार देने में अहम भूमिका निभाते हैं। ये राग मिलकर संगीत में एक नवरस का सृजन करते हैं और हम तक पहुंचाते हैं दिलकश गीत और बेहतरीन संगीत। तो आइए फिर आगाज करते हैं अपने आज के इस प्रोग्राम का इस गीत के साथ जिसे हमने आपके लिए चुना है पारस मनी फिल्म से। इसे गाया है मोहम्मद रफी ने। एफएम शिमला पर गीत संगीत के इस सुहाने सफर में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त रेडियो एंकर वीना नरवाल। सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

ठुकराया हमने भी बहुतों को है तेरी खातिर, तुझसे फासला भी शायद उन्हीं की बद्दुआओं का असर है। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये बहुत ही प्यारा सा गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मेरे हुजूर फिल्म से। जी हाँ, FM शिमला पर हैं आप हमारे साथ, सुन रहे हैं प्रोग्राम राग छाया।

ऐसे गीत में जो हमने अभी आपको सुनवाया है। और अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए आपको हम सुनवा रहे हैं कुदरत फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा गीत। इस गीत में आप सुनेंगे किशोर कुमार की आवाज़। मजरू के बोलों को संगीत से सजाया है राहुल देव बर्मन ने।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों

0: युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
1: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
0: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

प्रेम रोग फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना लता मंगेशकर के साथ। इस गीत में आवाज़ें थी किश सुरेश वादेकर की।

राग छाया प्रोग्राम सुन रहे हैं आप हमारे साथ FM शिमला पर। और लीजिए अब सुनिए एक दूजे के लिए फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा गीत। इस गीत में आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और आनंद बख्शी की।

मोहब्बत भरे ये दिलकश नगमे आप सुन रहे हैं हमारे साथ राग छाया प्रोग्राम में। तो लीजिए अब सुनिए क्रांति फिल्म का गीत। इसे गाया है लता मंगेशकर और नितिन मुकेश ने।

0: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थान में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
2: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
3: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: जी हां, FM शिमला पर इस वक्त हमारे साथ आप सुन रहे हैं प्रोग्राम राग छाया। लता मंगेशकर की आवाज में लीजिए अब सुनिए खिलौना फिल्म का गीत। फिर निकलेंगे तलाशे मोहब्बत में, कोई बेवफा ना मिले, बस आप ये दुआ कीजिएगा।

कत्ल करने की अदा भी हंसी और कातिल भी हंसी, कत्ल करने की अदा भी हंसी और कातिल भी हंसी, ना भी मरना हो तो मर जाने को जी चाहे।

सुरीले गीतों का ये सुहाना सफर आप इंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ एफएम शिमला पर, और लीजिए अब सुनिए आज के इस सफर का ये आखिरी गीत। मेरे सनम फिल्म का ये गीत आप सुनेंगे आशा भोसले की आवाजों में।

0: जी हाँ, समय जाने का है तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन बहुत ही जल्द हम आपसे फिर मुखातिब होंगे FM शिमला पर किसी नए प्रोग्राम को लेकर। फिलहाल आज के इस हसीन सफ़र से विदा लेने की दीजिए इजाज़त, और आप सुनते रहिए यूं ही FM शिमला 103.7 MHz पर।
1: आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। 11 बजने को हैं, अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आकाशवाणी FM शिमला 103.7 MHz पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के साथ साथ DTH सेवा पर भी उपलब्ध हैं।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सरकार ने वर्ष 2026 के लिए 5 पद्म विभूषण सहित 131 पद्म अलंकरणों की घोषणा की थी। पद्म अलंकरण देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की आज 93वीं जयंती है। इस अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह को याद किया जा रहा है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सहित कई गणमान्य लोग आज रिज मैदान स्थित वीरभद्र सिंह की प्रतिमा पर

0: श्रद्धांजलि अर्पित करी। इस अवसर पर राज्यपाल ने वीरभद्र सिंह को याद करते हुए कहा कि वे जनता के समीप थे, जनता के सेवक के रूप में कार्य करते थे। राज्यपाल ने कहा कि वीरभद्र सिंह का राजनीतिक अनुभव सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उनका राजनीतिक कद इस बात से स्पष्ट होता है कि वे 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह के लिए सच्ची श्रद्धांजलि रहेगी कि उनके विचार और सोच हमें अपनानी चाहिए। राज्य सरकार ने इस वर्ष लगभग 3,336 करोड़ रुपए लागत की 278 मेगावाट क्षमता की 19 जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन समझौते हस्ताक्षरित किए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस उपलब्धि के लिए विभाग के प्रयासों को सराहा है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि प्रदेश की कुल विद्युत क्षमता 24,000 मेगावाट है, जिसमें से 12,588 मेगावाट क्षमता की 189 परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि 1,528 मेगावाट क्षमता की 54 परियोजनाएं निर्माणाधीन है तथा 7,500 मेगावाट क्षमता की 526 परियोजनाएं स्वीकृति के लिए विभिन्न चरणों में है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऊर्जा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अपनी ऊर्जा नीति में संशोधन करते हुए 25 मेगावाट क्षमता तक की जल विद्युत परियोजनाओं में रॉयल्टी दरों को 40 वर्षों के लिए 12% कर दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार लगातार झूठा प्रचार करती रही है और केंद्र सरकार पर हिमाचल के साथ भेदभाव के आरोप लगाती रही है, जबकि केंद्र सरकार प्रदेश को हर क्षेत्र में भरपूर सहयोग प्रदान कर रही है। हर्ष महाजन ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी के एक आधिकारिक पत्र का हवाला देते हुए कहा कि शिक्षा मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत हिमाचल प्रदेश को पिछले 3 वर्षों में करोड़ों रुपये की केंद्रीय सहायता उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के तहत पिछले 3 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में 1,963 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता मिली है। हर्ष महाजन ने सवाल उठाया है कि जब केंद्र सरकार लगातार धन उपलब्ध करवा रही है तो प्रदेश में विकास कार्य अपेक्षित गति से क्यों नहीं हो रहे हैं। प्रदेश में 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए सभी सरकारी और पारिवारिक पेंशनरों को उनकी बची हुई एरियर राशि जुलाई 2026 में जारी कर दी जाएगी। वित्त विभाग से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 2016 से पहले के सभी पेंशनधारकों के एरियर का बकाया भुगतान सीधे बैंक खातों में किया जाएगा। ये निर्णय राज्य सरकार द्वारा लंबित पेंशन एरियर के चरणबद्ध भुगतान की प्रक्रिया के तहत लिया गया है, जिससे हजारों पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के कर्मचारियों के हक में एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत के अनुसार 15 मई 2003 से पहले वर्क चार्ज स्टेटस पाने वाले कर्मचारी भी पुरानी पेंशन पाने के हकदार होंगे। अदालत ने वित्त विभाग की ओर से पेंशन रोकने के 2019 के आदेश को पूरी तरह रद्द कर दिया है। साथ ही याचिकाकर्ताओं को CCS पेंशन नियम 1972 के तहत पेंशन और अन्य सभी सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं। राज्य की ऊंची चोटियों में कल हल्की बर्फबारी हुई है, जबकि कुल्लू और चंबा जिला के निचले इलाकों में बारिश दर्ज की गई है। चंबा जिला की ऊंची चोटियों सहित रोहतांग दर्रा में बर्फबारी से जनजातीय इलाकों में ठंडक बढ़ गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति के संवाददाता।
1: जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में इन दिनों मौसम लगातार ठंडा बना हुआ है। पिछले कल खराब मौसम के चलते जिले में दिन भर रुक रुक कर हल्की बारिश होती रही। वहीं रोहतांग दर्रा, बारालाचा, लाश, शिंगुला सहित जिले के सभी ऊंचे चोटियों में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई। ताजा बर्फबारी के बाद पूरे जिले में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को जून के महीने में भी सर्दी का एहसास हो रहा है। जहां देश के अधिकांश हिस्से भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं, वहीं लाहौल स्पीति का मौसम ठंडा और सुहावना बना हुआ है। हालांकि ये मौसम पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, लेकिन किसानों और बागवानों की चिंता को भी बढ़ा है। लगातार बादल और कम धूप के कारण फसलों के पकने की रफ्तार प्रभावित हो रही है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: वहीं राजधानी शिमला सहित अधिकतर क्षेत्रों में आज धूप खिली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार अगले 4 दिनों तक राज्य के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसी के साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आकाशवाणी FM शिमला 103.7 MHz पर भी सुना गया। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
3: सुरीला सफर संगीत का साथ हो मनमीत का, घर आंगन में महके

सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला। मस्त चुनो, मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार डियर लिसनर्स, तहे दिल से स्वागत आप सभी सुनने वालों का आपके अपने चहेते रेडियो स्टेशन 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर, जहां पर हम आए हैं आपके लिए गीत संगीत और मस्ती मनोरंजन का खूब सारा खजाना लेकर। तो जल्दी से तैयार हो जाइए हमारे साथ आज के इस ब्यूटीफुल म्यूजिकल जर्नी पर चलने के लिए, जहां पर आप और हम होंगे एकदम साथ इस सुहाने सफर में। जी हां, एफएम शिमला पर आपका साथ निभाने आ गई है आपकी अपनी रेडियो हम सफर, बबीता शर्मा। और डियर लिसनर्स, एफएम शिमला पर अब वक्त हो गया है आपके अपने कार्यक्रम का, नाम है जिसका पुरानी फिल्मों से।

जी बिल्कुल, वो महफिल जहां वक्त ठहर जाता है, यादें मुस्कुरा उठती हैं और पुराने गीत फिर से दिल की धड़कनों में बस जाते हैं, या फिर यूं कहें जहां हर नगमा एक कहानी है, हर धुन एक एहसास है और हर पल हमें ले जाता है उस सुनहरी दौर में जब संगीत दिल से बनता था और सीधे दिल तक पहुंचता था। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब सजेगी सुरों की महफिल और बिखरेंगे सुनहरे जमाने के ये रंग।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने सुना जीने की राह फिल्म का गीत, बोल आनंद बख्शी के और धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इंदेवर का लिखा, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, बट किया समझौता फिल्म का गीत। आइए सुनते हैं मुकेश और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में।

0: जी बिल्कुल जनाब, प्यार का तोहफा लाए हैं जिसमें बहुत ही प्यारे प्यारे से गीत हैं आप सभी सुनने वालों के लिए।
1: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
2: अरे भाई, खुशी तो होगी, अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
3: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: देखिए लिसनर्स, पुराने गीतों की बात ही कुछ और है। जितना सुनो उतना दिल के करीब लगते हैं। अगर ये गीत सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई हो तो समझ लीजिए ये गीत आपके दिल को छू गया। जी बिल्कुल, पराया धन फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार आर टी वर्मन।
1: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
2: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
1: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।

0: भाभी, चुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में छठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल तीसरे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
1: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के गाए आया सावन झूम के फिल्म के इसी गीत के साथ पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम में आज बस इतना ही। मस्ती मनोरंजन का ये हसीन और खूबसूरत सिलसिला यूं ही चलता रहेगा आप सभी लिसनर्स के साथ। आप यूं ही बने रहिए एफएम शिमला के साथ, सुनते रहिए और बस यूं ही मुस्कुराते रहिए।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। एफएम शिमला पर हम लेकर आए हैं आपके लिए पहाड़ी संगीत। जी हाँ, पहाड़ी लोकगीत।

गीतों का ये कार्यक्रम जहां गूंजेंगे हमारे पहाड़ों की मिट्टी की खुशबू से भरा सुर, लोक गीतों की मधुरतान और लोक संस्कृति की अनमोल विरासत। तो चलिए कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं जगदीश शर्मा के गाए इस लोक भजन के साथ।

जी हाँ लिसनर्स, जब ढोल नगाड़ों और लोक धुनें एक साथ बजती हैं तो पूरा माहौल उत्सव में बदल जाता है। यही तो हमारी लोक संस्कृति की असली पहचान है। आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 MHz पर और आनंद ले रहे हैं पहाड़ी लोकगीतों के कार्यक्रम पहाड़ी संगीत का। लहरू राम सांख्यान की आवाज़ में लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

प्रोमिला की आवाज में अभी आपने सुना ये लोकगीत। कार्यक्रम के अंत में लीजिए अब सुनिए पूरन चंद और नेकी राम की आवाजों में कार्यक्रम की ये अंतिम प्रस्तुति।

इसी लोकगीत के साथ पहाड़ी लोकगीतों के कार्यक्रम पहाड़ी संगीत में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए। शिमला। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि गैर पारंपरिक खतरे अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि नई तकनीक, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और साइबर खतरे तेजी से डिजिटल होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक में मुख्य रूप से गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। आकाशवाणी अपने विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी मिल रही है। ये कार्यक्रम आज 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की प्रतिबद्धता को समझा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष की नागरिकों की प्रतिबद्धता से उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते से भारतीय किसानों, मछुआरों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों को वैश्विक स्तर पर कारोबार करने में मदद मिलेगी। इससे रोजगार सृजन भी बढ़ेगा। एक अंग्रेजी दैनिक के लिए लिखे गए आलेख में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होने वाला ये समझौता ब्रिटेन में भारतीय सामानों की पहुंच बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 99% शुल्क तुरंत समाप्त हो जाएंगे और भारत से निर्यात बढ़ेगा। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय कथित शिक्षक भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 254 अंक गिरकर 76,840 पर, जबकि निफ्टी 90 अंक की गिरावट के साथ 24,013 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 254 अंक गिरकर 76,840 पर, जबकि निफ्टी 90 अंक की गिरावट के साथ 24,013 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: points to 76,840, while the Nifty dipped 90 points to 24,013 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 MHz पर। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12:10 हो गए हैं और FM शिमला पर अब हम और आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। केके की आवाज़ में आपको सुनवा रहे हैं जन्नत फिल्म का ये गीत।

0: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
1: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
0: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
1: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: वेल, इसी लवली सॉन्ग के साथ फिल्म संगीत में अभी बस इतना ही। 103.7 MHz पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 KHz और आकाशवाणी FM 103.7 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शिमला का प्रसारण। सुनते हैं महिला सम्मेलन कार्यक्रम।

0: लीजिए बहनों, हाजिर हैं हम आपका पसंदीदा कार्यक्रम महिला सम्मेलन लेकर। और आज के इस सफ़र में आपके रेडियो हमसफ़र, मैं वीना शर्मा
1: और मैं दीक्षा वर्मा, आप सभी को हमारा
0: नमस्कार।
1: वीना, देखो ना, जब हम अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं, जीते हैं, तो ऐसे में बहुत बार ऐसी स्थिति भी आ जाती है जब हमें महसूस होता है कि हम तो सही हैं, हमारी बातें भी सही हैं, लेकिन कई बार सामने वाला हमारी बातों को नहीं समझ पाता है।
0: जी बिल्कुल, और हम सभी ने कभी ना कभी ऐसा ज़रूर महसूस किया होगा दीक्षा, कि हम सही होते हैं, हमारी बात सही होती है और हम समझाते रहते हैं, कि तर्क देते रहते हैं, है ना।
1: हाँ, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं होता
0: जी
1: है, है ना।
0: बिल्कुल, और देखिए उदाहरण देते रहते हैं लेकिन सामने वाला सुनने को जो है तैयार नहीं होता है।
1: हाँ, और काफ़ी बार ऐसा हो जाता है और हम पूरी कोशिश के बाद भी सामने वाले के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में हमारे मन की शांति खत्म हो जाती है ना।
0: जी
1: चिड़चिड़ापन सा आ जाता है, हम खुद ही सोचते हैं कि अरे भाई, बात ही क्यों की हमने।
0: जी बिल्कुल, और देखो ये तो वही कहानी है दीक्षा, कि एक बंदर बारिश में जो है भीग रहा होता है और पेड़ के ऊपर एक चिड़िया घोंसले से जो है बंदर को समझाती है
1: जी
0: कि भाई अपने लिए कोई घर ढूंढ ले,
1: हाँ,
0: कोई जगह ढूंढ ले, पर बंदर उसका जो घोंसला भी तोड़
1: वो
0: देता
1: भी
0: है।
1: तोड़ देता है,
0: जी
1: बिल्कुल। और ऐसा हो जाता है कई बार कि हम खुद ही परेशान हो जाते हैं उल्टा। और सभी का, देखो, सोचने का तरीका भी अलग अलग होता है ना। सबका सीखने का तरीका अलग होता है, यहाँ तक कि सबका समझने का तरीका भी अलग अलग होता है। और हो सकता है कोई इंसान अनुभव से ही सीखता है और कोई सामने वाले को देखकर भी कई बार सीख जाता है। तो जब किसी का सही समय आता है सीखने का, तभी वो कुछ चीज़ समझता है ना, और सीख जाता है। तो और कोई कभी सीखना ही नहीं चाहता, ऐसे भी लोग होते हैं।
0: जी बिल्कुल, तो यहाँ बात ये सही है कि वो गलत वाली ही नहीं चाहता है, यानी कि
1: सही या गलत की बात बिल्कुल ठीक है ना, वो आती ही नहीं है।
0: जी बिल्कुल
1: कई बार ऐसा होता है कि सबका स्वभाव ही अपना अपना होता है। और अगर आपको कभी ऐसा लगता है बहनों, कि जिससे आप बात कर रहे हैं, जिसे आप समझा रहे हैं, उनका स्वभाव आपसे अलग है, तो भाई छोड़ दीजिए समझाना, हम तो यूं कहेंगे,
0: जी
1: क्यों।
0: बिल्कुल, ये तो ताले लगे दरवाजे को धक्का देने जैसा है दीक्षा,
1: हाँ,
0: और शोर बहुत पर
1: खुलेगा
0: आगे,
1: नहीं,
0: जी
1: रास्ता
0: बिल्कुल,
1: नहीं,
0: रास्ता नहीं
1: बिल्कुल।
0: मिलेगा। और ज़्यादा बुरा पता कब होता है दीक्षा, जब हम दूसरों को समझाने के चक्कर में धीरे धीरे खुद को ही खो देते हैं और हमारी ऊर्जा, समय और शांति जो है बहस में ही खर्च हो जाती है ना।
1: बिल्कुल।
0: और वही ऊर्जा अगर हम अपने सपनों के लिए लगाएं, अपने काम या परिवार पर लगाएं, तो जीवन जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा सुंदर हो जाता
1: जी
0: है।
1: जी बिल्कुल सही आपने कहा वीना। और समझदारी की असली पहचान भी तो यही है कि हम ये जान

0: कि किसे समझाना है और किसे कब समझाना है और कब बिल्कुल चुप रहना है,
1: जी
0: क्यों?
1: बिल्कुल। और क्योंकि हर लड़ाई जीतना ज़रूरी नहीं होता है
0: जी,
1: दीक्षा, लेकिन हर स्थिति में खुद को संभालना भी ज़रूरी होता है।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही वीना, और फिर से हम यही कहेंगे कि बात सही और गलत की नहीं होती। कई बार हमें ये मान लेना चाहिए कि चलो, सामने वाले का नज़रिया थोड़ा अलग है, वो गलत नहीं है ना?
1: जी
0: और जो लोग सच में आपको समझना चाहते हैं, उन्हें शब्दों की ज़रूरत वैसे भी नहीं होती, क्यों वीना?
1: जी बिल्कुल। और जिन्हें नहीं समझना है दीक्षा, उनको तो पूरी किताब भी कम
0: कम है,
1: पड़ती है।
0: बिल्कुल ठीक कहा।
1: और इसीलिए मतलब कि बहस समझना समझना समझाना बेहतर है कि चुप रहकर अपनी शांति को बनाए रखना और मुस्कुराकर आगे बढ़ना।
0: बिल्कुल, और ऐसा ही हम करते हैं अपने कार्यक्रम में भी, कि हम मुस्कुराकर बहनों को ले चलते हैं अपने कार्यक्रम में आगे और सुनवाते हैं पहला गीत।
1: जी

0: वीना देखो, कहते हैं ना जीवन चलने का नाम है ना,
1: जी
0: जो
1: बिल्कुल
0: ठहर गया वो जीवन नहीं है, वो ख़राब हो जाएगा।
1: जी
0: और ऐसे ही कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आ नहीं जाती हमारी ज़िंदगी में, जब हम खबरें भी सुनते हैं देश विदेश की, या कभी घर पर भी कुछ ऐसी परिस्थिति होती है कि हमारा जो जीवन है ना वो ठहर सा जाता है। कई बार हमारे स्वास्थ्य की वजह से भी हमारा जीवन ठहर जाता है।
1: जी
0: और हमारा, बहनों आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए, हमारे जीवन से जुड़ी हुई, वो हमारा स्वस्थ रहना है।
1: जी
0: हमारा
1: बिल्कुल
0: स्वस्थ शरीर, स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
1: जी बिल्कुल दीक्षा। और आज जो है हम इसी तरह से बात करने वाले हैं अपनी बहनों से, इसी विषय पर बात करने वाले हैं
0: जी
1: कि हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ी बातें हैं वो स्वस्थ नींद और उससे योग की भूमिका।
0: जी जो योग है बहनों, आप सभी जानते हैं, अभी हमने अपना योग दिवस भी मनाया है।
1: जी
0: और योग की जो महत्व की बात हम अगर करें तो बहुत ज़्यादा बातें कर सकते हैं इसके ऊपर। इसके महत्व हर चीज़ से, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बरकरार रखने के साथ साथ हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए भी अति आवश्यक है योग।
1: जी
0: हमारी दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि इतने तनाव वाली स्थितियों में आजकल जो भी चीज़ें हैं, हमारा दिमाग सही रहे उसके लिए ज़रूरी है योग, और साथ में एक अच्छी नींद। और अच्छी नींद को भी ना योग बहुत अच्छे से बेहतर कर सकता है ना,
1: जी
0: बढ़ाता है।
1: जी बिल्कुल दीक्षा। और कहा जाता है कि अच्छी नींद हमारे शरीर और मन को नई ऊर्जा देता है,
0: बिल्कुल जी
1: लेकिन जैसे कि हमने पहले भी कहा कि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी के में जो है वो तनाव, काम का दबाव, देर रात तक मोबाइल का इस्तेमाल करना और अनियमित जो दिनचर्या है वो बहुत से कारण हैं और इससे जो है लोगों की नींद प्रभावित हो रही है।
0: बिल्कुल, ये तो हम खुद भी देखते हैं, है ना, अपने जीवन में भी हम देखते
1: जी
0: हैं। बहनें भी सुन रही हैं और मुस्कुरा भी रही होंगी। कई बार जब हम फ़ोन के ऊपर एक बार नज़र डाल देते हैं ना, तो हम उसको छोड़ ही नहीं पाते हैं।
1: जी
0: और रात का समय तो ऐसा होता है कि हम सब पूरा काम करके थक के शाम को बस थोड़ी देर के लिए फ़ोन चलाने बैठ भी जाते हैं, क्योंकि भाई सारे दिन के बाद ही हमें समय मिलता है शायद कि हम शाम को थोड़ा सा फ़ोन चला पाएँ।
1: जी
0: तो लेकिन उस के चक्कर में हम अपनी नींद को कहीं ना कहीं जो है वो ख़त्म कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, और उसकी जो बेहतरी होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है।
1: जी बिल्कुल। और ऐसे में जो है दीक्षा, योग एक सरल और प्राकृतिक उपाय के रूप में हमारी मदद कर सकता है।
0: जी बहनों, योग हमारे शरीर को आराम देने के साथ साथ हमारे मन को भी शांत करने का काम करता है। जब हमारा मन शांत होता है तो शरीर भी जो है वो विश्राम की स्थिति में आने लगता है, और हमारी नींद उससे बेहतर हो जाती है।
1: जी बिल्कुल। और बहनों, अगर हम सोने से पहले कुछ आसन कर लें यानी योग अभ्यास करें तो
0: जी
1: दिन भर की जो थकान और तनाव को जो कम करने में सहायता मिल सकती है।
0: जी
1: और ये आसन है वज्रासन, श्वासासन, विपरीत और आसन करनी आसन जो है हल्के प्राणायाम, अनुलोम विलोम, गहरी श्वास के साथ जो है अभ्यास मन को स्थिर करने और उसको आराम महसूस कराने में मदद करता है।
0: जी बहनों, और एक ऐसा सरल माध्यम है योग, जो शरीर और मन के बीच का संतुलन बनाने में मदद करता है। नियमित योग अभ्यास से

0: आसन करनी, आसन जो है हल्के प्राणायाम, अनुलोम विलोम, गहरी श्वास के साथ जो है अभ्यास मन को स्थिर करने और उसको आराम महसूस कराने में मदद करता है।
1: जी बहनों, और एक ऐसा सरल माध्यम है योग, जो शरीर और मन के बीच का संतुलन बनाने में मदद करता है। नियमित योग अभ्यास से तनाव कम करने में मदद मिलती है, इसीलिए योग एक सरल और प्राकृतिक उपाय के रूप में हम इसको प्रचारित करते हैं कि ये एक प्राकृतिक उपाय है जो शरीर को स्वस्थ रखने में लाभकारी है। और बहनों, आप जानती भी हैं कि योग से मन को शांत किया जा सकता है, तनाव कम किया जा सकता है, साथ ही ये दिनचर्या को सही भी करता है। इसीलिए आप अपने दिनचर्या में योगाभ्यास को नियमित तौर पर उपयोग में लाएं, नियमित करें।
0: जी बिल्कुल, और जब ये सब ठीक होंगे ना दीक्षा, तो हमारी नींद में भी सुधार
1: जी
0: होगा,
1: बिल्कुल,
0: और जब नींद सही से आएगी तो हमारी एकाग्रता भी बढ़ेगी,
1: हाँ
0: मन काम करने भी मन लगेगा,
1: जी
0: मन शांत होता रहता है और शरीर जो है अगले दिन बेहतर तरीके से काम करता है। यानी कि नींद का सीधा सा संबंध जो है हमारे शरीर और मन को प्राकृतिक रूप से ऊर्जा देने का तरीका भी है।
1: बिल्कुल सही वीना। और जो बहनों फोकस है, एकाग्रता बढ़ती है, ये हम अपने बच्चों में भी इसीलिए योग अभ्यास को उनकी दिनचर्या में शामिल करने के लिए भी हमें कोशिश करते रहनी चाहिए। और वीना, आप भी जानती हैं, बच्चे तब करेंगे जब हम लोग उनके सामने ये अभ्यास करेंगे,
0: जी बिल्कुल,
1: क्योंकि सारे दिन में बच्चा भी इतना थका हुआ होता है, स्कूल की चिंता, जो होमवर्क है उसकी चिंता, और बहुत सारी आजकल इतने सारी और एक्टिविटीज़ में बच्चे होते हैं, तो शाम को जब वो घर आए, रात को सोने से पहले, खाना खाने के बाद, आराम से उन्हें भी 10-15 मिनट के लिए आप खुद भी बैठिए, उन्हें भी आप थोड़ी देर के लिए किसी योग मुद्रा में बिठाएं, ताकि, और फ़ोन और स्क्रीन बंद कर दें उससे पहले,
0: जी
1: ताकि
0: बिल्कुल,
1: नींद जो है वो बेहतर तरीके से आए। और जब जितनी अच्छी नींद होगी, उतना ही हमारा अगला दिन जो है उसकी तैयारी उतनी ही अच्छी होगी।
0: जी बिल्कुल दीक्षा। और योग का जो उद्देश्य है वो केवल शरीर को लचीला बनाना ही नहीं है,
1: जी
0: बल्कि हमें अपने शरीर और मन को समझने का भी अवसर मिलता है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन केवल योग करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि नींद के लिए अच्छी दिनचर्या भी आवश्यक है, जैसा कि हमने पहले भी कहा। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि रोज़ सोने और उठने का समय जो है निश्चित
1: जी
0: होना
1: निश्चित
0: चाहिए।
1: हो, बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी बात है कि आप रात को टाइम से सोइए, सुबह आप समय से उठिए, तो आपकी नींद उससे भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है, बेहतर हो जाती है। और आजकल की तो आप गर्मियों की सुबह की बात करें अगर वीना, तो इतनी खूबसूरत सुबह होती है
0: जी
1: आजकल, तो आप सुबह जल्दी उठिए तो खुद ही आपका शाम का सोने का समय एक तरीके से निश्चित सा हो जाता है ना।
0: जी
1: और बस सोने से पहले ज़्यादा स्क्रीन देखने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि जो भी आजकल हमारे रूटीन है, फ़ोन हमारी दिनचर्या का बहुत अहम हिस्सा बन चुका है, टीवी अहम हिस्सा बन चुका है, तो स्क्रीन देखने से बस बचना चाहिए। और रात का भोजन हल्का रखना और दिन में थोड़ी सी शारीरिक गतिविधि करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छी नींद के लिए।
0: जी बिल्कुल, और याद रखें कि छोटी छोटी आदतें मिलकर जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं।
1: बिल्कुल
0: और योग हमें सिखाता है कि स्वास्थ्य केवल शरीर का नहीं बल्कि मन की शांति का भी नाम है।
1: जी, और जब हम योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं बहनों, तो हम अपने जीवन में संतुलन, ऊर्जा और सकारात्मकता ला सकते हैं। तो बहनों, हम तो यही कहेंगे कि स्वस्थ तन, शांत मन और अच्छी नींद, ये तीनों मिलकर जीवन में ऊर्जा भर देते हैं।
0: जी
1: तो आइए योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं और स्वस्थ जीवन शैली की तरफ कदम बढ़ाते हैं, क्यों बिना।
0: जी
1: और हम भी अब अपना कदम एक और बढ़ाते हैं अगले गीत की तरफ।
0: जी और बहनों को सुनवाते हैं ये गीत।
1: गीत जी

0: ना, कई बार घर पर ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि किसी ऐसे व्यक्ति का साया हमारे सर से उठ जाता है जो परिवार को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, रोज़ी रोटी के लिए ज़रूरी है, शिक्षा के लिए ज़रूरी है।
1: जी
0: तो ऐसे मौक़ों पर बहनों, ऐसे परिवारों की सहायता के लिए सरकार भी समय समय पर कुछ ना कुछ योजनाएं चलाती रहती हैं। तो ऐसी ही एक योजना है जिसकी जानकारी हम आपको आज देने वाले हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार की इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना है।
1: जी इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिसंबर 2024 में शुरू हुई है और एक सामाजिक कल्याणकारी जो है योजना है,
0: जी
1: जिसका उद्देश्य विधवा, तलाकशुदा, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांग अभिभावकों के बच्चों को शिक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
0: जी बहनों, वित्तीय सहायता के साथ ही साथ इस योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा के लिए ट्यूशन और छात्रावास व्यय को कवर करके शिक्षा तक बच्चों की पहुंच को और ज़्यादा आसान बनाना भी है,
1: जी
0: और इसमें कमज़ोर परिवारों को वित्तीय सहायता देकर साथ में बाल शोषण को रोककर बाल संरक्षण प्रदान करना भी इसका उद्देश्य है।
1: जी और दीक्षा, ये योजना जो है विकलांग माता पिता जो परिवार है उनके बच्चों के सामने जो आने वाली शिक्षा से रिलेटेड जो
0: हाँ,
1: चुनौतियों
0: चुनौतियाँ
1: का
0: हैं।
1: सामना
0: जी
1: करने के लिए शुरू की गई है।
0: जी कई बार ऐसा होता है ना वीना, कि बहुत से परिवार जहाँ पर कोई कमाने वाला नहीं है तो वहाँ बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं आगे की, तो उन सब चीज़ों को ताकि वो रुक जाएं और बच्चे जो हैं वो अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर सकें, उसके लिए ये योजना बहुत ज़्यादा कारगर है बहनों। और अगर इसकी पात्रता की हम बात करें तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए जो परिवार हैं, पात्र परिवार हैं, उनका हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होने के साथ साथ वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
1: जी और साथ ही इस योजना का लाभ पात्र परिवारों के केवल 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे ही उठा सकते हैं और इस योजना के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी खर्चों के लिए भी 1,000 प्रति महीने जो है प्रदान की।
0: जी, और साथ ही सभी पात्र परिवारों के बच्चों के लिए सरकारी संस्थानों में जो डिग्री कर रहे हैं या फिर जो डिप्लोमा कर रहे हैं या व्यवसायिक किसी पाठ्यक्रम में जो बच्चे जुड़े हुए हैं, उन बच्चों को रहने के लिए जो पीजी आवास है या वो कहीं और रह रहे हैं, तो उसके लिए उनको प्रति माह 3,000 रुपये सहायता प्रदान करने की बात भी इस योजना के तहत कही गई है।
1: जी और अधिक जानकारी के लिए आप महिला एवं बाल विकास विभाग हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर
0: जी
1: भी देख सकते हैं और अपने जिला के संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं।
0: जी और हम तो यही कहेंगे बहनों कि इस योजना के बारे में आप भी ये जानकारी उन परिवारों तक पहुंचाइए जो आपकी नज़र में है, जहां पर ऐसी माताएं हैं, ऐसी बहनें हैं जो विधवा हैं, एकाकी हैं या फिर निराश्रित हैं, और कोई विकलांग परिवार आपके सामने है, विकलांग माता पिता वाले जो बच्चे हैं उन तक आप इस योजना के बारे में ज़रूर जानकारी पहुँचाइए।
1: या फिर दीक्षा, हमारी बहनें भी अगर पात्रता रखती हैं
0: जी,
1: तो वो भी इस
0: योजना
1: सुविधा का
0: का
1: जो है
0: बिल्कुल,
1: लाभ उठा सकती हैं।
0: जी बिल्कुल।

0: और इसमें अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व और मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्ति योजना बनाई गई है और साथ में उसको कार्यान्वित किया जाता है। इसी तरीके से मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से शैक्षिक अधोसंरचना को उन्नत करना भी इस योजना का एक लक्ष्य है
1: जी। और साथ ही गरीबों के लिए स्वरोजगार एवं मजदूरी रोजगार योजना है, जिसमें कि शहरी स्वरोजगार योजना आती है, शहरी मजदूर रोजगार कार्यक्रम है, और इन कार्यक्रम के अंतर्गत भौतिक और आर्थिक लक्ष्यों को कुछ प्रतिशत जो है अल्पसंख्यक समुदायों के गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए निर्धारित किया गया है।
0: जी, और तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल को बढ़ावा देना वो भी इस 15 सूत्रीय कार्यक्रम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसमें कि अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या वाले जो क्षेत्र हैं उनको तकनीकी कार्यों में संलग्न करवाना है, जैसे कि दस्तकारी में संलग्न करवाना है, ताकि वो अपनी उपजीविका को कमा सके। और ऐसे लोगों के लिए बहनों तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था कर दिए जाने से उनकी कौशल और उनकी जो आजीविका है उसको कमाने की क्षमता बढ़ जाएगी।
1: जी, और आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अभिवृद्धित जो ऋण सहायता है वो भी इस 15 सूत्री में कार्यक्रम में जो शामिल है। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम जो है 1994 में स्थापित किया गया था, और इसका यही उद्देश्य था कि अल्पसंख्यक समुदायों में आर्थिक विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देना था।
0: जी, और इसी के साथ स्वरोजगार योजना का निर्माण में और उसे बनाए रखने के लिए बैंक ऋण आवश्यक है, और प्राथमिकता वाले क्षेत्र ऋण के लिए कुल बैंक ऋण का 40% लक्ष्य घरेलू बैंकों के लिए निश्चित किया गया है, तो ये भी अल्पसंख्यक समुदायों के लिए बहुत हितकारी है।
1: जी, और देखिए साथ ही राज्य एवं केंद्रीय सेवाओं में भर्ती,
0: जी
1: जो राज्य सरकार को ये सलाह दी जाएगी कि पुलिस कर्मियों की भर्ती करते समय जो है अल्पसंख्यक समुदायों के अभ्यर्थियों पर विशेष रूप से विचार किया जाए, और इसके लिए चयन समितियों में जो है अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों की भी भागीदारी होनी चाहिए।
0: जी, और ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी, अल्पसंख्यक समुदाय वाली जो मलिन बस्तियां हैं, जो गंदी बस्तियां हैं, उनकी स्थिति में सुधार करना, सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम करना, ये सब भी इस 15 सूत्रीय कार्यक्रम का अहम हिस्सा है।
1: जी बिल्कुल, और सांप्रदायिक अपराधों के लिए अभियोजना, उन लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए जो सांप्रदायिक दंगे भड़काते हैं अथवा हिंसा करते हैं, और इसके लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए जाने चाहिए ताकि अपराधी को जो है शीघ्रता से सूचीबद्ध किया जा सके।
0: जी, और सांप्रदायिक दंगों के जो पीड़ित हैं उनके पुनर्निवास के लिए उपयुक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना भी इस योजना का हिस्सा है। तो अगर बहनों आपको इसकी और अधिक जानकारी चाहिए तो आप भारतीय सरकार की अल्पसंख्यक मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर सारी जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। और फिर से इस जानकारी से हम तो यही उम्मीद करते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप लाभ ले सकती हैं अथवा कोई आपने देखे हैं ऐसे लोग जो लाभ ले सकते हैं, तो उन तक इस जानकारी को आप ज़रूर पहुंचाइए।
1: जी बिल्कुल।

0: प्रकार से नेफिक्स डॉट इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड़ कल्याण, ये चार पहलों की शुरुआत तो वो क्रांतिकारी 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था। आज नाफेड़ ये सारी पहल कर 500
1: दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजित डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गैर पारंपरिक खतरे अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल गए हैं।
2: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
3: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
2: They all constitute an important threats for us.
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी अपने विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी मिल रही है। ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। बैठक में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों, सचिवों, जिला कलेक्टरों और अधिकारियों ने भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अयोध्या में राम मंदिर में प्राप्त दान के गबन के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट लखनऊ संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंपी। अधिकारियों ने बताया कि जांच अभी जारी है। अयोध्या राम मंदिर में प्राप्त दान के दुरुपयोग के आरोपों के सामने आने के बाद मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महीने की 13 तारीख को SIT का गठन किया था। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि यह कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमेरिका ने भारत की M777A2 अल्ट्रालाइट होविट्जर तोपों के रखरखाव के लिए $23 करोड़ के पैकेज की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी लगातार बढ़ रही है और वो प्रस्तावित बिक्री को अंतिम रूप देने के लिए तैयार है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक ने आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% की गिरावट आई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 525 अंक गिरकर 76,570 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at the second civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in 3 categories: Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. The President will confer 65 Padma Awards today. National Security Advisor Ajit Doval today stressed on the need to be cognizant of the new security threat.

आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। जी हाँ, आज के इस हसीन और खूबसूरत सफर में हम और आप हैं साथ साथ, जहाँ पर हम लेकर आ गए हैं आपका अपना फेवरेट लाइव फोन इन कार्यक्रम। नाम है जिसका हेलो शिमला। जी बिल्कुल, ये वही आपका अपना खास या फिर यूं कहें कि आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम है, जिसमें आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ अपनी फ़ोन कॉल्स के माध्यम से और सुन सकते हैं हमारी चुनिंदा फिल्मों में से अपनी पसंद के कुछ प्यारे प्यारे से गीत एकदम लाइव ओनली ऑन 103.7 मेगाहर्ट्ज। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं अपनी फ़ोन कॉल्स के माध्यम से। हमारे फ़ोन नंबर्स नोट डाउन कर लीजिए। हमारे स्टूडियोज़ के फ़ोन नंबर्स हैं 2808034, हमारा दूसरा नंबर है 2808152, हमारा एसटीडी कोड है 0177। तो चलिए आपको बता दें हमारी आज की कौन सी वो चुनिंदा फिल्में हैं जो हम चुनकर लाए हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आपके अपने लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो शिमला में। हमारी आज की फिल्मों में शामिल हैं दिल है तुम्हारा, आ अब लौट चलें, एक रिश्ता, सिर्फ तुम, डुप्लीकेट, कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है और धड़कन। फिल्मों के नाम एक बार फिर से सुन लीजिए। हमारी आज की फिल्में हैं धड़कन, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, डुप्लीकेट, सिर्फ तुम, एक रिश्ता, आ अब लौट चलें और दिल है तुम्हारा। इन फिल्मों में से अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल हमारे नंबर्स पर। हमारे फ़ोन नंबर्स एक बार फिर से सुन लीजिए। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 2808034, हमारा दूसरा नंबर है 2808152 और हमारा एसटीडी कोड 0177। तो जब तक आपकी फ़ोन कॉल्स हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, उससे पहले हमारी पसंद का एक बढ़िया सा गीत तो बनता है और उसके बाद सिलसिला शुरू होगा आपकी पसंद को एफएम शिमला पर पूरा कर देने का आपके अपने लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो शिमला में।

0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
1: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
0: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: वेल डियर लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर और आनंद ले रहे हैं अपने फेवरेट लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो शिमला का। इसी

0: बीच हमारे साथ हमारे कार्यक्रम के पहले कॉलर भी जुड़ चुके हैं। चलिए चलते हैं सीधे उनके पास और जानते हैं उनसे उनकी फरमाइश। हेलो।
1: हेलो मैडम, नमस्ते जी।
0: नमस्कार जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना परिचय दे दीजिए।
1: शुक्रिया मैम, थैंक यू। सुखवीर सिंह बात कर रहा हूँ आपसे।
0: जी सुखवीर जी, तो बताइए कैसे हैं आप और घर परिवार में सभी कैसे हैं आपके?
1: मैम घर परिवार में सब अच्छे हैं। मेरी वाइफ ना मैके गई हुई है छुट्टियों के कारण।
0: जी
1: मेरी वाइफ मैके गई है जी, अपने 1 तारीख को गई थी, आज 23 तारीख हो गई जी।
0: अच्छा जी, तो बताइए सुखवीर जी आप काम क्या करते हैं?
1: काम करते हैं जी, गांव में काम करते हैं, शहरों में जी वो पत्थर लगता है ना घरों में, बोल रहते हैं जी मिस्त्रियों के साथ चले जाए।
0: अच्छा, वो घरों में टाइल्स लगाने का काम मतलब?
1: हाँ जी हाँ हाँ। अच्छा। वो काम अच्छा है जी, गर्मी में पक्का लगा देते हैं जी।
0: चलिए अच्छी बात है,
1: काम करते रहते हैं जी।
0: और अभी आपका काम गांव में है या अभी शहरों में आप काम कर रहे हैं?
1: ना गांव में करते हैं जी, शहर में भी चल रहा है जी काम।
0: अच्छा जी, तो मौसम का हाल बता दीजिए, आपने बताया कि गर्मी।
1: अच्छा मैंने मौसम तो ये है ना, गर्मी बहुत पड़ रही है, धूप निकली है बहुत कड़ाकेदार अभी।
0: अच्छा जी, गर्मी का मौसम एंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ एफएम शिमला का आनंद भी लिया जा रहा है ना?
1: हाँ जी, आप तो ठंडे में रहते हो ना शिमला में, आपको तो गर्मी का एहसास नहीं होगा।
0: जी बिल्कुल, हम तो हिमाचल की हसीन और खूबसूरत वादियों में रहते हैं। और आइए आप भी कभी, आपका भी स्वागत है हमारी शिमला में।
1: हाँ जी, मेरी वाइफ आई थी एक बार घूमने
0: जी। चलिए बहुत अच्छी
1: लगी कि नहीं शिमला, बहुत अच्छा है, बहुत ठंडक महसूस होती है नहीं गाँव से।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, तो हम गीतों के माध्यम से भी इस ठंडक का एहसास आपको जरूर करवाना चाहते हैं। सुखबीर जी अपनी फरमाइश हमें बता दीजिए, कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: मैम गाना सुना दीजिएगा, आप लौट चलेंगे, मैं हूँ परदेसी नौजवान
0: जी। आ अब लौट चलेंगे का एक बहुत ही प्यारा सा एक गीत है, ये कैसी मुलाकात है ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। कॉल करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।
1: थैंक यू मैम। थैंक यू।

0: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
1: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
0: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
1: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
0: जानकारी लें, अधिकार जाने।
1: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो शिमला के अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए जानते हैं कौन है वो। हेलो,
3: नमस्कार।
2: नमस्कार जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कौन बोल रहे हैं और कहां से?
3: मैं गुजरात से बात कर रहा हूं, धीरज जबारी, आपका नियमित श्रोता।
2: जी, आप हमारे नियमित श्रोता हैं। आपने हमें बताया तो बताएं धीरज जी, कैसे हैं आप और क्या काम करते हैं?
3: मैं अच्छा हूँ और मैं एक खानगी कंपनी में नौकरी करता हूँ और समय में आकाशवाणी शिमला में जुड़ता हूँ। जो शिमला में जुड़ने के लिए अभी मेरे को प्रेरित किया हमारे भगवान दास जी परमार ने, और मैं पहले से भी शिमला में जुड़ता हूँ, लेकिन नौकरी में काम की वजह से फोन पर फोन नहीं कर सकता था। दीदी माफ करना।
2: तो आप अपनी जॉब के साथ साथ एफएम शिमला को कितना समय दे पाते हैं? कौन कौन से कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं हमारे एफएम शिमला के?
3: दीदी देखा जाए तो फरमाइश भी कार्यक्रम सुनते हैं, लेकिन हम मेरे को तो ज्यादा फोन इन कार्यक्रम पसंद है, क्योंकि फोन इन कार्यक्रम में भारत भर के श्रोता जुड़ते हैं।
2: जी बिल्कुल।
3: और जो जो जिस जिस प्रदेश है, यानी महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, वो प्रदेशों की श्रोता जो जानकारी देते हैं उसमें हमें बहुत अच्छा लगता है, और जानकारी से कि हमें कभी कभार वहाँ जाना तो वो जानकारी हमें बहुत काम में लगती है। दीदी
2: जी, बहुत अच्छी बात आपने कही, आप गुजरात से बात कर रहे हैं, तो चलिए हम थोड़ा सा आपके माध्यम से गुजरात घूमना चाहेंगे। बताएं कौन कौन सी कुछ खास जगह हैं गुजरात की जो देखने लायक है?
3: भारत में गुजरात एक धार्मिक स्थलों है, ऐतिहासिक नगरों का राज्य है, तो यहाँ कोई ऐसा जिला नहीं जहाँ आप घूमने ना जाओ। ऐसे सब जिले हैं, देखा जाए तो मेरा पाटन ऐतिहासिक नगर भी है
2: जी।
3: और अभी भी यानी कई जगह से वो प्रचलित यानी शहर है। उसमें देखा जाए तो रानी की वाव है
2: जी।
3: और वहाँ पाटन एक पटोले के लिए प्रख्यात है, अगर सुना हो तो हमारे गुजराती में उसके गाने भी कई बने हैं
2: जी। बिल्कुल,
3: पाटन फिर पटोला लावजो, यानी बहनों के लिए
2: जी जी।
3: और देखा जाए तो यहाँ डाकोर रणछोड़ राय का मंदिर है द्वारकाधीश में।

0: असल द्वारकाधीश और जो समुद्र में जो द्वारकाधीश का मंदिर है वहाँ जाने के लिए एक सेतु बनाया है, ब्रिज बनाया है
1: जी
0: सुदर्शन सेतु। और पावागढ़ है जो माँ काली का मंदिर, वो पर्वत पर है, जो गिरनार है जो
1: जी जी
0: 10,000 पगाचे में एक पगाचिया कम है, वहाँ भी कई यात्रालु आते हैं, धार्मिक लोग वहाँ चढ़ते हैं उतरते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और जो उसकी परिक्रमा होती है साल में एक ही बार होती है, 4 दिन के लिए 11 से पूनम तक कार्तिक महीने में, तो वही समय पर प्रकृति का हम जो भी वहाँ जो करते हैं यानी परिक्रमा, वो बहुत प्रकृति का पालन, नियम का पालन करते हैं। और वही समय कोई भी जीव जंतु वहाँ नहीं आता, क्योंकि भगवान की जय ने एक वानर आते हैं, बाकी कोई जीव जंतु नहीं आता, आराम से लोग परिक्रमा करते हैं, ये भगवान की देन। ऐसे तो कई ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है, अभी गुजरात में कभी आओ तो अहमदाबाद में आओ तो साबरमती के दोनों तट पर रिवर फ्रंट है
1: जी,
0: वहाँ भी घूमने लायक है, बच्चों के साथ हम गार्डन बगीचा सब कुछ है।
1: अच्छा जी, बहुत अच्छी आपने हमें बातें बताई गुजरात की। और अब हम आते हैं वहाँ के व्यंजनों की ओर, खाने पीने का भी वहाँ जो हमने सुना है गुजरात बहुत फेमस है।
0: खमर है, ढोकरा है, जलेबी है, गाठिया है, देखा जाए देवड़ा है, चीरा है, बहुत चीजें है दिखी है, लेकिन यहाँ हमारे में क्या है जो आप उसको हम मीठा बोलते हैं, यानी वो ज्यादा मीठा रहता है, यानी हम लोग मीठा खाने में और मसालेदार खाने में गुजराती बहुत अग्रेसर है।
1: फाफड़ा भी हमने सुना है, क्या मैं सही कह रही हूँ?
0: फाफड़ा वो दशहरा के दिन बहुत बिकता है और बहुत लोग खाते हैं, यहाँ खाने में लोग बिल्कुल कंजूसी नहीं करते।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है, ये सारी व्यंजन सुनकर मुंह में पानी आ गया। फिलहाल आपकी फरमाइश की ओर आते हैं और जानते हैं आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप।
0: सिर्फ तुमका गाना सुनना है दीदी, और हमारा आकाशवाणी फोन इन एकता ग्रुप में उसमें बहुत सारे सदस्य गण है भारत भर के, तो उन सबको डेलीगेट रहेगा और आप भी मेरे हमारे साथ ही गाना सुनोगी।
1: जी बिल्कुल धीरज जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का सिर्फ तुम फिल्म का ये प्यारा सा गीत।
0: धन्यवाद।

0: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थान में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
2: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
3: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: वेल डियर लिसनर्स, लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो शिमला, इस समय आप सुन रहे हैं हमारे साथ FM शिमला पर और आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं हमारे साथ और सुन सकते हैं हमारी चुनिंदा फिल्मों में से अपनी पसंद के कुछ प्यारे प्यारे से गीत। हमारी चुनिंदा फिल्मों में से आज की हमारी फिल्में हैं दिल है तुम्हारा, एक रिश्ता, डुप्लीकेट, कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है और धड़कन। इन फिल्मों में से अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए हमें आप कॉल कीजिए हमारे फ़ोन नंबर्स पर। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 2808034 और हमारा दूसरा नंबर है 2808152। हमारा STD कोड है 0177। इसी बीच हमारे कार्यक्रम के नेक्स्ट कॉलर भी लाइन पर हैं, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो
5: हेलो दीदी को राधे राधे।
4: आपको भी राधे राधे जी। कौन बोल रहे हैं और कहां से?
5: केसरी सिंह राजपूत बोल रहा हूं दीदी, बैरसिया जिला भोपाल मध्य प्रदेश से।
4: केसर सिंह राजपूत जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है और बताइए कैसे हैं आप और आपके घर परिवार में सभी कैसे हैं?
5: दीदी सकुशल बहुत बढ़िया है, घर परिवार के भी हैं, हम भी बढ़िया हैं और आशा करते हैं कि आप भी सकुशल होंगी।
4: जी हम भी एकदम सकुशल हैं और जब आप जैसे लिसनर से बात हो जाती है तो हम भी एकदम कुशल मंगल हो जाते हैं।
5: जी जी जी,
4: तो बताइए आप क्या करते हैं केसर सिंह जी?
5: दीदी मैं आर्टिस्ट हूँ, पेंटर, बाल पेंटिंग का काम करता हूँ, दीवार लेखन हुआ, चित्रकारी हुई।
4: जी चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा काम है आपका। तो ये जो आप वॉल पेंटिंग की बात कर रहे हैं तो ये लिखावट के सभी काम जैसे स्कूलों में होता है या कहीं कुछ ये पेंटिंग का काम रहता है, किस तरह से आप थोड़ा सा बताएंगे हमें?
5: वो दीदी ऐसा होता है जैसे अपने पास कॉल आई
4: जी
5: ग्राहक की, तो उसने बताया अपने को हमारा ये काम होना है।
4: जी जी,
5: तो उसमें दो तरह के काम होते हैं, एक तो ऑयल पेंट से भी होता है और एक प्लास्टिक पेंट से।
4: जी
5: तो उसी हिसाब से काम करना पड़ता है दीदी। हमारे इधर ट्रावलियों पर भी पेंटिंग होती है और

0: लोडिंग गाड़ियाँ होती हैं, ट्रक वगैरह इन पर होती है, तो उन पर आयरन पेंट से काम होता है और बाकी दीवारों पर प्लास्टिक पेंट यूज करते हैं।
1: अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आप FM शिमला भी सुनते रहते हैं अपने काम के साथ साथ, है ना?
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल दीदी, सुनते रहते हैं।
1: देखिए, आपने हमें भोपाल मध्य प्रदेश से कॉल किया है, तो आप इस समय हमें कहाँ कैसे सुन रहे हैं, रेडियो पर या मोबाइल ऐप के माध्यम से?
0: मोबाइल ऐप के माध्यम से सुन रहे हैं दीदी, न्यूज ऑन AIR ऐप के द्वारा।
1: जी, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। और अब आपकी फरमाइश की ओर आते हैं, बताएं कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं?
0: मूवी का नाम है दिल है तुम्हारा और गाने के बोल हैं, दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, ऐसा करके है दी।
1: जी, तो आपकी पसंद का ये बढ़िया सा गीत हम भेज रहे हैं आपके लिए। और केसर
0: जी
1: सिंह जी
0: दीदी
1: कॉल,
0: आप सुनेंगे, आपके लिए है दीदी, और हमारे मित्र भगवान सिंह परमार जी, प्रेम सिंह सिसोदिया जी और लोकेन वर्मा जी, सबके लिए रहेगा।
1: चलिए, कॉल करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और ये रहा आपके लिए दिल है तुम्हारा फिल्म का गीत।

0: अरे पता है, हिमाचल प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक चल रहा है।
1: अच्छा, इसमें क्या होगा?
0: इसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं। इसमें मकानों से जुड़ी जानकारी ली जाएगी।
1: अच्छा, तो क्या घर के दस्तावेज, बैंक की जानकारी या कोई ओटीपी देना होगा?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं। जनगणना में किसी भी प्रकार के दस्तावेज, बैंक विवरण, पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगा जाता।
1: अच्छा,
0: केवल अधिकृत 33 प्रश्नों की जानकारी दीजिए। सही जानकारी देकर हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए।
2: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
3: लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो शिमला के हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं। चलिए चलते हैं सीधे उनके पास और जानते हैं उनसे उनकी फरमाइश। हेलो,
4: हेलो, नमस्कार जी।
3: नमस्कार जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कौन बोल रहे हैं और कहाँ से?
4: जिधर राकेश कुमार बलेर कोटला पंजाब से बात कर रही
3: हूँ। स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद जी, आपका भी स्वागत है
3: जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद
4: जी।
3: तो बताइए, क्या करते हैं आप और क्या कुछ खास चल रहा है आपके वहाँ?
4: जी, फैक्ट्री में काम करते हैं, एक से दो लंच है।
3: अच्छा जी,
4: लंच का जैसे आपका प्रोग्राम सुना तो आपने कॉल लगा लिया।
3: चलिए बहुत अच्छी बात है, और आपने कॉल करने के लिए मेहनत की और आपकी मेहनत रंग ले आई है ना?
4: जी जी जी।
3: तो बताइए, कारखाने में किस तरह का काम रहता है आपका?
4: जी, बीच में लोहे का काम भी है, बीच में प्लास्टिक का भी है।
3: अच्छा जी,
4: दोनों काम चलते हैं, प्लास्टिक का भी लोहे का भी।
3: चलिए बहुत अच्छी बात है, और अब आपकी फरमाइश की ओर आते हैं। बताइए, आज कार्यक्रम में कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
4: दिल दिल तो पागल है का टाइटल सॉन्ग।
3: अच्छा जी, दिल तो पागल है फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं
4: जी। जी जी।
3: एफएम शिमला के कार्यक्रम कैसे लगते हैं और आपके?
4: बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया।
3: अच्छा जी,
4: बहुत अच्छे लगते हैं। मैं तो 1975 से सुन पा रहा हूँ आपका प्रोग्राम।
3: चलिए, फिर तो आप हमारे बहुत ही पुराने नियमित श्रोता हैं।
4: जी जी जी।
3: बहुत अच्छी बात है एफएम शिमला को इतना प्यार देने के लिए। फिलहाल आपकी फरमाइश को हम पूरा कर रहे हैं और आपके लिए हम भेज रहे हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में दिल तो पागल है फिल्म का ये गीत।

0: जी हाँ डियर लिसनर्स, आपसे बातें करते करते कब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव तक पहुंच गए भाई, हमें तो पता ही नहीं चला। और हमारे साथ हमारे कार्यक्रम के लास्ट कॉलर भी लाइन पर हैं, चलिए जान लेते हैं कौन है वो। हेलो,
1: हेलो मैडम जी, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से?
1: मैडम जी, मैं पॉल बोल रहा हूँ, जलंधर पंजाब से।
0: अच्छा जी, तो बताइए कैसे हैं आप और पंजाब का मिजाज कैसा है, गर्मी कैसी है
1: पंजाब का
0: वहाँ?
1: मिजाज अभी बहुत गर्म हो गया, पहले तो ठंडा था, 2-3 दिन ठंडा रहा, अभी तो
0: जी
1: बहुत गर्म हो गया अभी आज ज्यादा।
0: अच्छा जी, तो गर्मी का मौसम है, क्या कुछ खास एहतियात बरतते हैं आप गर्मी से
1: गर्मी
0: बचने
1: के
0: के
1: मौसम
0: लिए?
1: में ऐसा है ना, सुबह सुबह सुबह शाम चले जाते हैं, कहीं काम पर जरूरी हो जाना हो तो,
0: जी,
1: नहीं तो बाकी तो फिर घर में रहते हैं, या अगर जाना भी पड़े तो पानी की बोतल और साथ में कपड़ा गीला करके रखते हैं या टोपी लगा के रखते हैं।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए गर्मी का मौसम है और हर मौसम का आनंद लेना चाहिए, है ना?
1: बिल्कुल जी, पूरा आनंद लेना चाहिए, जो जो कुछ भी परमात्मा ने जितने रुतें दिए हैं, जितने मौसम दिए हैं, सबका पूरा आनंद लेना चाहिए।
0: जी बिल्कुल, और साथ में एफएम शिमला का आनंद लेना भी।
1: बिल्कुल जी, एफएम शिमला तो हम 1970 से लेकर सुनते आ रहे हैं और सुनते रहेंगे।
0: जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। समय थोड़ा सा कम है, आपकी फरमाइश की ओर आते हैं, बताएं आज कौन सी
1: और
0: फिल्म
1: धड़कन
0: का?
1: फिल्म का सुना दीजिए, धड़कन धड़कन।
0: अच्छा जी, धड़कन फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: हाँ जी, लास्ट डब्बा पकड़ा है बड़ी जो दौड़ दौड़ के।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, और पकड़ तो ली आखिरकार आपने,
1: हाँ
0: और अब
1: बिल्कुल,
0: गीत
1: पकड़ लिया
0: भी।
1: जी, दौड़ दौड़ के पकड़ा अभी।
0: जी बिल्कुल, तो चलिए अब आपकी फरमाइश को भी पूरा कर देते हैं इसी बीच। कॉल
1: मेहरबानी,
0: करने के
1: शुक्रिया
0: लिए
1: आपका, बहुत
0: शुक्रिया।
1: बहुत धन्यवाद,
0: जी,
1: धन्यवाद।

वेल डियर लिसनर्स, इसी लवली सॉन्ग के साथ लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो शिमला में आज बस इतना ही। बहुत अच्छा लगा आप सभी लिसनर्स के साथ बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करके। आपने अपना कीमती समय निकालकर हमें फ़ोन कॉल्स किए, हमारे इस कार्यक्रम को इतना खूबसूरत इतना शानदार बनाया, तो हम करते हैं इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के ठीक 2 बज चुके हैं और एफएम शिमला पर ये समय है सबरंग कार्यक्रम का।

आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर और आनंद ले रहे हैं सबरंग कार्यक्रम का। सुनते रहिए और बस यूं ही मुस्कुराते रहिए।

वेल डियर लिसनर्स, अब रंग कार्यक्रम में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। इस समय दोपहर के 2:15 होने को हैं। अब आप सुनेंगे दोपहर हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, हुरमुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। अर्जेंटीना की टीम नॉकआउट में पहुंची। और लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग के शुरुआती मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूति, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
2: मैं रैप का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरोड़ी का ही होता है। तो मरोड़ी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
3: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी दस्ते को फिर से उजागर करने को बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
0: ये कार्यक्रम आज FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। श्री शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया।

0: उन्होंने कहा कि डॉ मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का साथ, और मूट जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
0: नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
1: कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
0: इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
1: आने वाले दो सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से ना आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है, और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
0: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा यह संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
1: नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स .in, दृष्टि, ERP और नाफेड कल्याण, ये चार पहलों की शुरुआत की। तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल की सहायता से किसानों को 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान प्राप्त हो जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। श्री डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
2: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
3: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं, और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
2: They all constitute an important threats for us.
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रिर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि वे भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका

0: मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमेरिका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस बीच फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों के एक संयुक्त दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: घटना स्थल का मुआयना करने के बाद एसआईटी के सदस्य और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने कहा कि उनकी टीम सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और हर विभाग की जिम्मेदारियों का विस्तार से आकलन करेगी। दूसरी ओर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 6 सदस्यीय टीम ने आग लगने के कारणों का पता लगाने और घटनाक्रम स्थापित करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अनाधिकृत निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। राज्य सरकार ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग की जांच के लिए इस उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया था। एसआईटी के सदस्यों ने पिछले सप्ताह कई संदिग्धों और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुंबई और आसपास के उपनगरों में आज लगातार 3rd दिन भी बारिश हो रही है।
2: मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों और मध्य व पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। आज पुणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के घाट इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बड़ी प्रतीक्षा के बाद आई इस बारिश से नागरिकों को राहत मिली है। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में बारिश होने से किसान बुआई का काम शुरू कर सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों को जरूरी मात्रा में बारिश होने तक बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में आज गरज के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी नेता, प्रख्यात शिक्षाविद और देशभक्त डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि डॉ मुखर्जी ने निडर होकर देश की एकता और अखंडता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि

0: दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी होगा। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रहे जॉर्डन को 2-1 से मात दे दी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में अर्जेंटीना ने कल रात ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, होर्मुज जलडमरु मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 MHz पर। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30 हुए हैं और FM शिमला पर यह समय है ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम का।

0: श्रोताओं नमस्कार, ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम के साथ एक बार फिर हाजिर है आपकी रेडियो दोस्त सरोज ठाकुर। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि आजकल की जिंदगी बेहद भागदौड़ भरी है। इसमें सभी कार्यों को समय पर पूरा करने का दबाव हम सभी पर बना रहता है और ऐसे में भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक थकान का हम सभी शिकार हो जाते हैं। लेकिन सभी कार्यों को समय पर पूरा करने और स्वस्थ रहने के लिए जरूरी होता है हम सभी का स्वस्थ होना, और ये संभव होता है योग और व्यायाम से। योग सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने की एक विधि नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की एक पूरी पद्धति है। हजारों सालों से भारत में योग का अभ्यास किया जा रहा है और कई शोधों के माध्यम से ये सिद्ध हो चुका है कि योग शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तनावपूर्ण जीवन शैली, बढ़ता मानसिक दबाव और अनेक स्वास्थ्य समस्याओं के बीच योग एक प्रभावी समाधान बनकर उभरा है, और यही कारण है कि आज योग का महत्व सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है। योग क्या है, ये हमारे लिए कितना उपयोगी है, इसी विषय पर हम आपको सुनवाते हैं वार्ता विज्ञान की कसौटी पर योग, और वार्ताकार हैं उर्मिल शर्मा।
1: सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। योग प्राचीन काल से ही भारत का जीवन दर्शन रहा है। वर्तमान में योग विश्व मानव के लिए भारत की एक महानतम उद्भावना एवं उद्घोषणा है। भारतीय संस्कृति, सभ्यता, संस्कार एवं योग एक दूसरे के पूरक है। प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धतियाँ, वो चाहे योग, प्राणायाम, आसन या तमाम कोई भी चिकित्सा विद्याएं, किसी भी प्रमाण की मोहताज नहीं है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों के वर्षों वर्षों के तप से सर्वे संतु निरामया का ध्येय लेकर दुनिया को निरोग जीवन, सुख एवं आनंद पहुंचाने के लिए स्वयं को योग अग्नि, ज्ञान अग्नि में तपाकर सब तरह के द्वंद्वों को सहन किया है। लेकिन आज विज्ञान का युग है, विज्ञान ने हर क्षेत्र में तरक्की की है, इस बात को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। इसके साथ ही इस बात को भी स्वीकार करना होगा कि वही ऋषि मुनियों द्वारा दिया गया ज्ञान, ध्यान, योग, वर्तमान में योग भी विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरा है। इसे भी विश्व पटल पर स्वीकृत किया गया है, इसीलिए तो 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के नाम से जाना जाता है। जीवन में किसी भी बात को आत्मसात करना एक बहुत बड़ी चुनौती भरा काम होता है। किसी भी देश की विद्या, ज्ञान, संस्कृति, सभ्यता को बिना किसी प्रमाण के

जीवन शैली में आत्मसात करना एक सामान्य बात नहीं है। सदियों के पुरुषार्थ, अध्ययन, शोध, अनुसंधान व अनेकानेक प्रयोगों के बाद ही व्यापक जनमानस किसी भी परंपरा को स्वीकृति देता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का सत्य क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल पर आधारित है। वैज्ञानिक तौर पर बहुत सी बातों से प्रमाणित हो चुका है कि मनुष्य योग, प्राणायाम, आसन, व्यायाम, मुद्राएं आदि क्रियाओं द्वारा अपने जीवन को बदल सकता है। आज हमारे बहुत सारे योगाचार्यों द्वारा जटिल से जटिल व्याधियों पर यौगिक क्रियाओं द्वारा वैज्ञानिक प्रमाणिकता के साथ सकारात्मक प्रभाव को सिद्ध किया जा चुका है। यदि सकारात्मक परिणाम न मिले होते तो योग हमारी हजारों वर्ष पुरानी संतुलित जीवन शैली लुप्त हो जाती। आज भारत ही नहीं बल्कि विश्व का प्रत्येक बुद्धिजीवी योग की वैज्ञानिकता को स्वीकारते हुए इसे एक संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान और जीवन दर्शन की तरह देखने लगा है। महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग

ऐसी बातों से प्रमाणित हो चुका है कि मनुष्य योग, प्राणायाम, आसन, व्यायाम, मुद्राएं आदि क्रियाओं द्वारा अपने जीवन को बदल सकता है। आज हमारे बहुत सारे योगाचार्यों द्वारा जटिल से जटिल व्याधियों पर यौगिक क्रियाओं द्वारा वैज्ञानिक प्रमाणिकता के साथ सकारात्मक प्रभाव को सिद्ध किया जा चुका है। यदि सकारात्मक परिणाम न मिले होते तो योग हमारी हजारों वर्ष पुरानी संतुलित जीवन शैली लुप्त हो जाती। आज भारत ही नहीं बल्कि विश्व का प्रत्येक बुद्धिजीवी योग की वैज्ञानिकता को स्वीकारते हुए इसे एक संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान और जीवन दर्शन की तरह देखने लगा है। महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग चिकित्सा वैज्ञानियों के लिए आज वरदान से कम नहीं है। विश्व भर में असंख्य लोगों की जुबान पर योग का सत्य प्रकट हुआ है। वैज्ञानिक प्रमाणिकता के आधार पर ही वर्तमान में चल रही योग क्रांति से पुनः अतीत की पुनरावृत्ति हुई है। सृष्टि के आदिकाल से भारत के असंख्य मनुष्यों का योग इस क्षेत्र में योगदान रहा। उन्हीं की परंपरा से यह विद्या हम तक पहुंची और आज पूरे विश्व में शीर्ष पर प्रतिष्ठित है, जिससे हम भारतीयों में प्राचीन ऋषि परंपरा के प्रति गौरव व स्वाभिमान बढ़ता जा रहा है। भारत ही नहीं बल्कि विश्व के करोड़ों लोग योग को अपने जीवन में अपनाकर दूसरों को योग मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। योग केवल मात्र एक सुनने का विषय, ज्ञान व विद्या नहीं बल्कि स्वयं के आचरण का विषय है। यह शारीरिक व्यायाम नहीं एक संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान है, क्योंकि हमारी शारीरिक संरचना बड़ी वैज्ञानिक है। योग के द्वारा औषधीय शक्ति हमारे प्राण तत्व के भीतर से प्रकट होती है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे की वैदिक संस्कृति इसी निष्कर्ष पर हमें ले जाती है कि समाधान बाहर नहीं भीतर है। योग में असाध्य रोगों का समाधान है। यह पूर्ण आध्यात्मिक विद्या एवं गंभीर दार्शनिक चिंतन तथा सहज सरल संतुलित जीवन शैली व निःशुल्क चिकित्सा पद्धति है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में मनुष्य अपना स्वास्थ्य, मानसिक शांति, सुख चैन सब खो रहा है, तनाव भरी जिंदगी जी रहा है। लेकिन एक लक्ष्य हमेशा साथ लेकर चलता है कि उसे सुख और शांति कैसे मिलेगी। व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरा विश्व भी इस बात पर सहमत है कि विश्व में शांति स्थापित होनी चाहिए। दुनिया के खूनी संघर्ष को यदि किसी उपाय से रोका जा सकता है तो वह अष्टांग योग ही है। एक स्वस्थ सुखी जीवन, विकसित समाज के निर्माण के लिए योग, आयुर्वेद तथा सभी वैदिक परंपराओं को हमें समग्रता एवं सार्वभौमिकता के साथ समझने की आवश्यकता है। योग अज्ञान से ज्ञान, जड़ से चेतन, जीव से ब्रह्म, रोग से निरोग एवं शांति प्राप्ति की शाश्वत ऋषि परंपरा है, क्योंकि जीवन परमात्मा की सबसे बड़ी सौगात और मनुष्य जन्म भगवान का सबसे बड़ा उपहार है। महर्षि पतंजलि ने योग को अष्टांग योग के रूप में अनुशासनबद्ध करके पतंजलि सूत्र के माध्यम से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये योग के 8 अंग है। इनका पालन किए बिना कोई योगी नहीं हो सकता। अष्टांग योग से व्यक्ति स्वयं में बहुत बदलाव महसूस करता है। सामाजिक समरसता, शारीरिक स्वास्थ्य, वैदिक जागरण, मानसिक शांति, आत्मिक आनंद की अनुभूति इसी से हो सकती है। जो व्यक्ति स्वयं को और प्राणी मात्र को सुखी देखना चाहता है उसके लिए अष्टांग योग का पालन अति अनिवार्य है। यह सत्य है कि योग बहुत विराट है, लेकिन उससे भी बड़ा सत्य यह है कि आज का मनुष्य व्यस्तता भरा जीवन जी रहा है। अष्टांग योग के सभी अंगों का पालन करना सभी के लिए असंभव है। वर्तमान में गुरुओं की कृपा से योगाचार्यों द्वारा योग की संपूर्ण क्रियाओं को विशिष्ट वैज्ञानिक रीति व आध्यात्मिक विधि से सर्वसाधारण जन मानस के लिए कम से कम समय में दैनिक योग अभ्यास क्रम 7 प्रक्रियाओं में क्रमबद्ध व समयबद्ध किया गया है। प्राणायाम को विशेष महत्व दिया गया है। प्राणायाम के अभ्यास से होने वाले लाभों का थोड़ा संक्षेप में वर्णन करना चाहूंगी। मुख्य रूप से रोगों का कारण हमारे शरीर में 3 दोष वात, पित्त, कफ जब असंतुलित होते हैं तो तरह तरह के रोग शरीर में बढ़ते हैं। प्राणायाम से इन सब दोषों का शमन होता है। पाचन तंत्र पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। प्राणायाम से रोग प्रतिरोधक क्षमता अत्यधिक विकसित हो जाती है। मस्तिष्क, फेफड़े, हृदय संबंधित सभी रोग दूर हो जाते हैं, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। मोटापा, मधुमेह,

0: में कोलेस्ट्रॉल उच्च एवं निम्न रक्तचाप, एलर्जी, माइग्रेन, किडनी रोग, यौन रोग से लेकर असाध्य से असाध्य कैंसर जैसे रोग दूर होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से सब प्रमाणित हो चुका है। योग प्राणायाम से मुख पर ओज, तेज, आभा, इसमें भी जरा संदेह नहीं है। मन शांत, प्रसन्न तथा उत्साहित रहता है। काम, क्रोध, मोह, अहंकार सब दोष नष्ट हो जाते हैं। शारीरिक विकार, विजात्य तत्व जिन्हें टॉक्सिन्स कहते हैं, नष्ट हो जाते हैं। नियमित प्राणायाम करने वाला व्यक्ति सदा सकारात्मक चिंतन, विचार व उत्साह से भरा होता है। नकारात्मक विचार समाप्त हो जाते हैं। सुखी जीवन जीने की यह विद्या बहुत ही सरल है। प्राणायाम में भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, नाड़ी शोधन आदि प्राणायाम रोगों उपचार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे प्राणायाम जैसे सूर्यभेदी, चंद्रभेदी, उच्चयाई, शीतली, शीतकारी, प्रत्येक का अपना अपना महत्व है। एक बात जरूर कहूंगी कि प्राणायाम का अभ्यास अपनी क्षमता व सामर्थ्य के साथ ही किसी योगाचार्य की या योग शिक्षक के सानिध्य में ही प्रारंभ करें। जहां लाभ है वहां हानियां भी है। प्राणायाम करते समय गति का विशेष ध्यान रखना अति अनिवार्य है। यह शारीरिक व्याधियों पर निर्भर करता है। शरीर को चुस्त व लचीला रखने के लिए प्राणायाम के साथ साथ व्यायाम व आसन भी जरूरी है। व्यायाम शरीर की संधियों तथा स्नायु मंडल को शक्ति, स्फूर्ति एवं आरोग्यता प्रदान करने वाली क्रियाएं हैं। योग की भाषा में इसे सूक्ष्म व्यायाम के नाम से जाना जाता है। जैसे हाथ पैर की उंगलियां, पैर के पंजे, घुटनों, पेट, कमर, पीठ और आजकल प्रचलित सर्वाइकल स्पॉन्डेलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर आदि के लिए सूक्ष्म व्यायाम किए जाए तो बहुत ही लाभ मिलता है। आज विज्ञान का युग है, हमारा जीवन यंत्रों पर निर्भर हो गया है। मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, ना जाने कितने यंत्र आज हमारी जीवन शैली में आए हैं। जीवन शैली व आज की जीवन शैली व पहले की जीवन शैली में बहुत अंतर है। पहले सभी व्यायाम हमारी दिनचर्या में सम्मिलित थे। मनुष्य प्रकृति के साथ जीता था। पैदल चलना, अधिकांश कार्य स्वयं और अपने हाथों से किए जाते थे। आज का समय बिल्कुल विपरीत है। यह जरूरी हो गया है कि थोड़ा व्यायाम अवश्य किया जाए। आसन भी योग का ही एक अंग है। आरोग्य प्राप्ति एवं स्वास्थ्य रक्षा में योग आसनों का अभ्यास भी एक महत्वपूर्ण घटक है। आसनों से शरीर में लचीलापन आता है। शरीर में रक्त संचार सुचारू रूप से होता है। मांसपेशियों से प्रसार संकुचन की प्रक्रिया तीव्र होती है। शरीर में त्रिदोषों का संतुलन बना रहता है, जिससे रोगों के निवारण में सहायता मिलती है। योग आसन के अभ्यास से शरीर में हल्कापन, कार्य करने की शक्ति, शरीर में बढ़े हुए मेद पर नियंत्रण और शरीर की मंद अग्नि को उद्दीप्त किया जा सकता है। प्राणायाम, आसन, व्यायाम, मुद्राएं, इन सभी को विधि रूप से यदि जीवन में सम्मिलित किया जाए तो जीवन उत्सव बन जाएगा और मानव महामानव बन जाएगा। एक बार फिर से दोहराना चाहूंगी कि योग की प्रारंभिक शिक्षा अनुभवी गुरु से ही लेनी चाहिए, क्योंकि अनुभवी गुरु योग के पाठ्यक्रम को विधिवत और समयबद्ध रूप से शिक्षा देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कौन सा प्राणायाम, आसन, व्यायाम श्वास प्रश्वास की गति से किया जाए, समय का भी ध्यान रखना पड़ता है। शिक्षक विद्यार्थी की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षमता को देखते हुए उसी हिसाब से योग अभ्यास की शिक्षा देता है। फिर भी यदि कोई जिज्ञासु साधक किसी को देखकर कोशिश करता है तो उसे लाभ हानि का जिम्मेदार वह स्वयं होता है। योग की मर्यादा का सोच समझकर पालन करे व पूर्ण रूप से स्वस्थ जीवन जिए। अपने जीवन को सार्थक बनाएं। कोटि कोटि जन्म जन्मांतरों के पुण्य से मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है। ज्यादा नहीं तो सिर्फ 15-20 मिनट का समय नियमित रूप से योग अभ्यास के लिए अवश्य निकालें। आप स्वयं ही नतीजा देखेंगे। करो योग, रहो निरोग। धन्यवाद
1: श्रोताओं, ये तो सुनी आपने वार्ता और जाना कि योग सिर्फ एक प्राचीन परंपरा नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी एक प्रभावी और उपयोगी जीवन शैली है। नियमित योगाभ्यास और शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक शांति और बेहतर जीवन गुणवत्ता प्रदान कर सकता है। तो आइए हम भी अपने दैनिक जीवन में योग को अपनाने का संकल्प लें और

संतुलित और सकारात्मक जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। याद रखिए, योग शरीर को शक्ति, मन को शांति और जीवन को नई दिशा देता है। और अब हम भी बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि पर्यावरण क्या है और इसका मानव जीवन में क्या महत्व है। पर्यावरण सिर्फ पेड़ पौधों, नदियों, पहाड़ों और जंगलों का नाम नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण प्राकृतिक व्यवस्था है जो हमें जीवन प्रदान करती है। शुद्ध हवा, स्वच्छ जल, उपजाऊ भूमि और जैव विविधता, ये सभी पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक हैं। लेकिन बढ़ती जनसंख्या, औद्योगीकरण और वनों की कटाई, प्रदूषण के कारण आज पर्यावरण में गंभीर संकट उत्पन्न हो रहा है। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, अनियमित वर्षा और प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती घटनाएं हमें चेतावनी दे रही हैं कि अब समय आ गया है कि हम पर्यावरण संरक्षण को अपनी प्राथमिकता बनाएं। पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है और पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतु और वनस्पतियां पर्यावरण पर निर्भर करती हैं। अगर पर्यावरण संतुलित रहेगा तो जीवन भी सुरक्षित और स्वस्थ रहेगा। आज मानव गतिविधियों के कारण वायु, जल और भूमि प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। कारखानों से निकलने वाला धुआं, वाहनों का उत्सर्जन, प्लास्टिक कचरा और रासायनिक पदार्थ पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप अनेक बीमारियां बढ़ रही हैं और प्राकृतिक संसाधनों का क्षय हो रहा है। वन पर्यावरण के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। लेकिन तेजी से हो रही वनों की कटाई के कारण जैव विविधता को खतरा उत्पन्न हो रहा है और जलवायु परिवर्तन की समस्या और तेज हो रही है। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है चारों ओर से घिरा हुआ। पर्यावरण वो है जो प्रत्येक जीव के साथ जुड़ा हुआ है और हमारे चारों तरफ हमेशा व्याप्त होता है। पर्यावरण का व्यक्ति के व्यवहार और बुद्धि पर गहरा प्रभाव पड़ता है। किसी भी सजीव इकाई के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाला कोई भी परिवर्तन उसके आसपास के परिवेश में होने वाले परिवर्तन से संबंधित होता है। पर्यावरण दो प्रकार का होता है, भौगोलिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। भौगोलिक पर्यावरण की अगर हम बात करें तो इसमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त सभी घटक शामिल होते हैं, इसलिए इसे प्राकृतिक वातावरण कहा जा सकता है। इसे भौतिक वातावरण भी कहते हैं क्योंकि ये जीवन की भौतिक जरूरतों से संबंधित होता है। ये भौतिक या भौगोलिक परिस्थितियां मनुष्य के अस्तित्व पर निर्भर करती हैं। कभी कभी मनुष्य का पर्यावरण की भौतिक परिस्थितियों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसमें प्राकृतिक संसाधन, पृथ्वी की सतह, पहाड़, मैदान, भूमि, जल, रेगिस्तान, तूफान, चक्रवात, ज्वालामुखी, महासागर, जलवायु कारक शामिल होते हैं। इसका प्रयोग पौधों और जानवरों से जुड़ी जटिलताओं जैसे जैविक स्थितियों को संदर्भित करने में भी किया जाता है। वहीं अगर मानव निर्मित पर्यावरण की बात की जाए तो इस वातावरण से तात्पर्य मनुष्य द्वारा निर्मित उस वातावरण से है जिसका उपयोग कुछ पर्यावरणीय स्थितियों को विनियमित और निगरानी करने के लिए किया जाता है। कुछ लोग इसे सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण भी कहते हैं और इसे दो भागों में और विभाजित किया जाता है। एक रहता है आंतरिक वातावरण और दूसरा रहता है बाह्य वातावरण। आंतरिक वातावरण एक सामाजिक वातावरण है। ये किसी विशेष समाज के अस्तित्व तक बना रहता है। इसमें नियम, परंपराएं, संगठन और संस्थाएं शामिल होती हैं। इसमें वो रीति रिवाज और लोक परंपराएं शामिल होती हैं जो प्रत्येक मानव समूह में विद्यमान हैं। इसे अभौतिक संस्कृति, सामाजिक विरासत नामों से जाना जाता है। ये विरासत मानव के सामाजिक जीवन के फलने फूलने के लिए जरूरी होती है और इसका व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। आर्थिक और भौगोलिक वातावरण का परिवर्तन रूप कृत्रिम वातावरण मानव निर्मित वातावरण के दो अलग अलग पहलू माने जाते हैं। वहीं बाह्य वातावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति के माध्यम से मनुष्य ने अपने भौतिक वातावरण की स्थितियों को बदलने का प्रयास किया है। ये

हमारे वातावरण इन्हीं परिवर्तनों का परिणाम है, जिसमें शहरों में आधुनिक बुनियादी ढांचा, हमारे घर और उनसे जुड़ी सुविधाएं, संचार और परिवहन के साधन, आराम और विलासिता के प्रति हमारा आकर्षण, विलासितापूर्ण वस्तुओं का निर्माण करने वाले कई प्रकार के उद्योग, विद्युत उपकरण शामिल हैं, जिनका लक्ष्य सभ्यता और शहरीकरण है। पर्यावरण वो सब कुछ है जो हमारे चारों ओर मौजूद है। इसमें प्राकृतिक, सजीव, निर्जीव और कृत्रिम वस्तुएं शामिल होती हैं। पर्यावरण को हमारे आसपास के वातावरण के रूप में बताया जाता है, जिसमें वायु, जल, मिट्टी, पेड़ पौधे और जीव जंतु सहित सभी सजीव और निर्जीव वस्तुएं शामिल होती हैं। पर्यावरण के विनाश के लिए मनुष्य मुख्य रूप से जिम्मेदार है। पर्यावरण पर मानवीय गतिविधियों का प्रभाव हमारे पूर्वजों के समय से दिखाई देता है। तब से हम सभी अपनी सुविधा के अनुसार पर्यावरण में परिवर्तन करते आ रहे हैं और आज हम उन सभी बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों को खो रहे हैं जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इन सभी कारकों के कारण अम्लीय वर्षा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि, झीलों का अम्लीकरण, ओजोन परत का क्षरण, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापक्रम वृद्धि, प्रजातियों का विलुप्त होना, इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पर्यावरण को सामान्यतः उस परिवेश या परिस्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें कोई व्यक्ति, पशु या पौधा जीवित रहता है या कार्य करता है। इससे जीवन चक्र में इसके महत्व को समझना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। हमारा पर्यावरण लगातार बदल रहा है और जैसे जैसे ये बदलता है, वैसे वैसे इन परिवर्तनों के कारणों के बारे में जागरूक होने की जरूरत भी बढ़ती जा रही है। प्राकृतिक आपदाओं में भारी वृद्धि, तापमान में उतार चढ़ाव और मौसम के विभिन्न रूपों में बदलाव के साथ लोगों को अपने जीवन जीने के तरीके को लेकर अधिक सतर्क रहने की जरूरत है, खासकर उन पर्यावरणीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जिनका सामना हम कर रहे हैं। अगर बात की जाए पर्यावरण के मुद्दों की, तो पर्यावरणीय मुद्दे मानव गतिविधियों के पर्यावरण पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों को दिखाते हैं। इसमें प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि, अपशिष्ट निपटान, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव शामिल होते हैं। मानव और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से व्यक्तिगत, संगठनात्मक और सरकारी स्तर पर कई पर्यावरणीय संरक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन की अगर बात की जाए तो आज के समय में जलवायु परिवर्तन एक गंभीर चिंता का विषय है। ये समस्या पिछले कुछ दशकों से उभर कर सामने आई है। ग्रीन हाउस गैसें जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है। पर्यावरणीय परिवर्तनों के कई विनाशकारी प्रभाव हैं, जैसे ग्लेशियरों का पिघलना, ऋतुओं में परिवर्तन और महामारियां होना। ग्लोबल वार्मिंग में जीवाश्म ईंधन जलाने, वाहनों से निकलने वाले धुएं और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिससे पर्यावरणीय परिवर्तन हो रहे हैं। विश्व भर में तापमान में इस प्रकार की वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। ओजोन परत के क्षरण की अगर बात की जाए तो ओजोन परत सघन ओजोन गैस की एक परत है। ये हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। उद्योगों और रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले एरोसोल कैन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ये अत्यंत महत्वपूर्ण परत नष्ट हो रही है। इन यौगिकों में मौजूद क्लोरीन ओजोन परत को नष्ट कर देता है। ओजोन परत में छेद होने से मनुष्य और वन्य जीव हानिकारक पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कैंसर सहित कई त्वचा रोग हो जाते हैं। जल प्रदूषण के कारण नदियां, महासागर, झील और तालाबों में हानिकारक पदार्थों का प्रवेश होता है, जिससे जल की भौतिक, रासायनिक या जैविक स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। ये जल प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषित जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है
और इसलिए जी

जीव मर जाते हैं। जल जीवन का मुख्य स्रोत है और इसलिए इसे किसी भी प्रकार के प्रदूषण से बचाना हमारा सबसे पहला कर्तव्य बन जाता है। वायु प्रदूषण उद्योगों, वाहनों और जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग से होने वाले उत्सर्जन का परिणाम होता है। इन गैसीय उत्सर्जनों के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और इतना ही नहीं, इससे लोगों में बीमारियों का खतरा भी बढ़ता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को ठोस अपशिष्ट के उत्पादन, भंडारण, संग्रह, स्थानांतरण और परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान से संबंधित अनुशासन के रूप में परिभाषित किया जाता है, ताकि इसका पर्यावरण पर कोई हानिकारक प्रभाव ना पड़े। राजमार्ग से गुजरते समय हमें सड़कों के किनारे कूड़े के ढेर दिखाई देते हैं। भारत में कचरा निपटान का सबसे आम तरीका खुले में कूड़ा फेंकना है। कूड़े के ढेर आमतौर पर खुले वातावरण और मौसम के प्रभावों के संपर्क में रहते हैं और इन पर शायद ही कभी घास फूस की परत होती है, जो अक्सर कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करती है। कभी कभी इन कचरा स्थलों को खुले में जलाया जाता है, जिससे जहरीली गैसें और धुआं निकलता है। कई बार उचित परामर्श के बिना कचरे को अवैध रूप से नदियों और नहरों में बहा दिया जाता है या भूमि के गड्ढों को भरने के लिए उपयोग किया जाता है। इन प्रथाओं से दीर्घकाल में कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इनमें मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट से लेकर भूमिगत जल स्रोतों में विषाक्त रसायनों का रिसाव तक शामिल होता है। इसलिए ऐसी स्थितियों को रोकने के लिए कचरे के निपटान के उचित तरीकों को अपनाया जाना चाहिए। जहां पहले कचरा जमा होना कोई चिंता का विषय नहीं था, आज वैश्वीकरण और औद्योगिकरण के कारण कचरा निपटान के अधिक कुशल तरीकों की जरूरत महसूस हो रही है। आज जिन तरीकों का उपयोग किया जाता है, उनमें लैंडफिल, भस्मीकरण, अपशिष्ट संघनन, बायोगैस उत्पाद, खाद और कृमि खाद शामिल हैं। लैंडफिल की प्रक्रिया में जो कचरा पुनः उपयोग या पुनर्चक्रण योग्य नहीं होता, उसे अलग करके शहर के निचले इलाकों में एक पतली परत के रूप में फैला दिया जाता है। कचरे की प्रत्येक परत के बाद मिट्टी की एक परत डाली जाती है। हालांकि ये प्रक्रिया पूरे होने के बाद उस क्षेत्र को अगले 20 वर्षों तक भवन निर्माण के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया जाता है। इसके स्थान पर इसका उपयोग सिर्फ खेल के मैदान या पार्क के रूप में किया जा सकता है। भस्मीकरण कचरे को नियंत्रित तरीके से जलाने की प्रक्रिया है, जिसमें वो राख और अपशिष्ट गैस जैसे अज्वलनशील पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया से निकलने वाली गैसें विषैली हो सकती हैं, इसलिए इन्हें पर्यावरण में छोड़ने से पहले उपचारित किया जाता है। ये प्रक्रिया कचरे की मात्रा को 90% तक कम कर देती है और इसे कचरा निपटान के सबसे स्वच्छ तरीके में एक माना जाता है। कुछ मामलों में उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग बिजली उत्पाद के लिए किया जाता है। अपशिष्ट संघनन में कैन और प्लास्टिक की बोतलें जैसे अपशिष्ट पदार्थों को ब्लॉकों में संपीड़ित करके पुनर्चक्रण के लिए भेजा जाता है। ये प्रक्रिया धातुओं के ऑक्सीकरण को रोकती है और वायु स्थान की आवश्यकता को कम करती है, जिससे परिवहन और भंडारण आसान हो जाता है। तो श्रोताओं, ये तो हमने जाना कि पर्यावरण क्या है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, और इसी के साथ घड़ी की सुइयां भी इशारा कर रही हैं कि कार्यक्रम का समय भी हो चला है। तो इस वादे के साथ कि कार्यक्रम के अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: शुभ वाणी, लाभ वाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी पर आप अपने जिले की अपनी बोली में अपने व्यवसाय कारोबार के बारे में विज्ञापनों के माध्यम से सस्ते दामों पर प्रचार प्रसार करवा सकते हैं।
1: जी हाँ, आकाशवाणी शिमला पर शाम 4:20 से 7:05

0: तक प्रसारित होने वाले विभिन्न बोलियों के कार्यक्रमों में विज्ञापनों के प्रसारण हेतु आकाशवाणी शिमला से संपर्क करें।
1: नियम और शर्तें लागू।
2: आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शिमला का प्रसारण। 3 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आकाशवाणी एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के साथ साथ DTH सेवा पर भी उपलब्ध हैं।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 के लिए 5 पद्म विभूषण सहित 131 पद्म अलंकरणों की घोषणा की थी। पद्म अलंकरण देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये पुरस्कार कला, साहित्य और शिक्षा, समाज सेवा, विज्ञान व अभियांत्रिकी, व्यापार व उद्योग, औषधि और खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज शिमला शहर में ऑकलैंड सुरंग के समीप बहुमंजिला कार पार्किंग का लोकार्पण किया। करीब 7 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से निर्मित इस परिसर में 145 वाहनों के लिए पार्किंग सुविधा उपलब्ध रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सुनियोजित शहरी विकास और नागरिकों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि शिमला शहर में वाहनों की संख्या में तेजी से हुई वृद्धि के कारण यातायात नियंत्रण और पार्किंग प्रबंधन गंभीर चुनौती के रूप में उभरा है। इस दौरान लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। राज्य पथ परिवहन निगम की चालक परिचालक यूनियन और प्रदेश सरकार के बीच आज हुई वार्ता विफल रही है। यूनियन ने आज शिमला में परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ वित्तीय देनदारियों सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन इन पर सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में चालक परिचालक यूनियन ने कल 24 जून को रात 12 बजे से प्रदेशव्यापी चक्का जाम का ऐलान किया है। यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने बताया कि वित्तीय दारियों को लेकर लिखित आदेश न मिलने पर सरकार से कोई वार्ता नहीं होगी।
5: मैं प्रदेश की जनता से भी गुहार लगाना चाहूंगा कि अब वक्त आ गया है, क्योंकि मेरे को लगता है कि इन्होंने हमें हल्के में हमें ले रहे हैं। हमें कल 12 बजे से बाद बंद करना पड़ेगा। प्रदेश की जनता कहीं बुकिंग ना कराए और बसों का इंतजार ना करे, क्योंकि ये अब हमारी मजबूरी है।
4: सिरमौर जिला परिषद के अध्यक्ष पद के लिए भाजपा समर्थित शिवानी और उपाध्यक्ष पद के लिए बलदेव भंडारी को चुना गया है। भाजपा नेताओं ने इसे कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता का जनादेश बताया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार की नीतियों को जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के 3.5 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश आर्थिक संकट, बढ़ते कर्ज, बेरोजगारी, विकास कार्यों की धीमी गति और प्रशासनिक अव्यवस्था से जूझ रहा है। वहीं सांसद सुरेश कश्यप ने भी जिला परिषद चुनाव परिणामों को भाजपा के लिए बड़ी सफलता बताया है। आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला से ओलंपिक मैराथन को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री आवास ओकओवर से शुरू हुई ये मैराथन CTU मार्ग से होते हुए इंदिरा गांधी खेल परिसर में संपन्न हुई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में खेलो इंडिया प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
6: हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे खेलों में अपना नाम कमाएं, धीरे धीरे खेल को अपने जीवन में अपनाएं। और हमने अभी पिछले दिनों स्पोर्ट्स में बहुत कुछ खर्च करने का निर्णय लिया है, जिसमें हमारा सेंटर ऑफ एक्सलेंस जो मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में नदौन में बन रहा है, इंडोर स्टेडियम बन रहा है, उसमें तकरीबन 150 करोड़ की लागत से अभी अक्टूबर में बनकर पूरा हो जाएगा।

0: मुख्यमंत्री ने युवाओं से राज्य सरकार के नशा विरोधी अभियान का समर्थन करने और नशा मुक्त व स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान भी किया। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को उनकी जयंती पर आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शिमला के रिज मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता व मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार और पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह समेत अन्य नेता मौजूद रहे। श्रद्धांजलि समारोह के दौरान प्रदेश के विकास में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के योगदान को याद किया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचारों के बाद प्रस्तुत है कांगड़ा जिला की चिट्ठी, जिसके लेखक हैं विपिन शर्मा, वाचक स्वर राजकुमारी चंदेल का।
0: जून माह में कांगड़ा जिला लोकतांत्रिक गतिविधियों का केंद्र बना रहा। धर्मशाला के दाड़ी मेला मैदान में आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जिले की 846 पंचायतों के नवनिर्वाचित प्रधानों और उप प्रधानों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों को लोकतंत्र की नींव बताते हुए ग्रामीण विकास और जन कल्याण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने जन प्रतिनिधियों से पारदर्शिता, निष्पक्षता और जनसेवा की भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चिट्टे और अन्य नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की सफलता का उल्लेख करते हुए कहा कि हिमाचल सरकार की रणनीति को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिल रही है। चंडीगढ़ नारकोटिक्स ब्यूरो ने हिमाचल के मॉडल को अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय बताया है। सरकार, प्रशासन, मीडिया और समाज के संयुक्त प्रयासों से नशा तस्करों पर प्रभावी कार्रवाई हुई है और लोगों में जागरूकता बढ़ी है। मुख्यमंत्री ने धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा पुनर्विकसित फवारा चौक और 11.90 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ई बस चार्जिंग डिपो व अनुरक्षण केंद्र का लोकार्पण किया। साथ ही धर्मशाला में 3 नए इंट्रासिटी ई बस मार्गों को मंजूरी दी गई। फवारा चौक के पुनर्विकास से यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखते हुए इसे आधुनिक सार्वजनिक स्थल के रूप में विकसित किया गया है। धर्मगिरी पठियार स्थित महाराणा प्रताप इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने इंडोर स्टेडियम निर्माण के लिए भी 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने महाराणा प्रताप को त्याग, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बताते हुए युवाओं से उनके आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के कुठंडल स्थित सर्वधर्म पीठ तपोस्थान गुरुद्वारा श्री नानक ज्योति साहिब में श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज के 420वें शहीदी दिवस पर 5 दिवसीय धार्मिक समागम का शुभारंभ राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने किया। उन्होंने नवनिर्मित दरबार साहिब भवन का उद्घाटन कर प्रदेश व देश के सुख समृद्धि की कामना की और गुरु साहिब की शिक्षाओं को आज के समाज के लिए प्रासंगिक बताया। राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने ढगवार में निर्माणाधीन अत्याधुनिक मिल्क प्लांट का दौरा किया। लगभग 225 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा ये संयंत्र सितंबर तक शुरू होने की संभावना है। यहां फ्लेवर्ड मिल्क, दही, लस्सी, पनीर, मोजरेला चीज, योगर्ट और खोआ जैसे उत्पाद तैयार किए जाएंगे। डेयरी सहकारी समितियों की संख्या 44 से बढ़कर 352 हो चुकी है और दूध संग्रहण 6,200 लीटर प्रतिदिन से बढ़कर 24,000 लीटर प्रतिदिन पहुंच गया है। धर्मशाला में आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला व सुधार उत्सव में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने न्याय प्रबोध अवेकनिंग टू जस्टिस अभियान का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि टेली लॉ और कॉमन सर्विस सेंटर जैसी पहलें दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करा रही हैं। कार्यक्रम में न्यायिक सुधारों और विधिक जागरूकता पर विशेष चर्चा हुई। उपायुक्त हेमराज बैरवा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में आगामी मॉनसून सीजन के लिए तैयारियों की समीक्षा की गई। संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, जल निकासी व्यवस्था, जेसीबी मशीनों की उपलब्धता, खाद्यान्न भंडारण तथा आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। प्रशासन ने किसी भी आपदा की स्थिति से निपटने के लिए सभी विभागों को सतर्क रहने को कहा। कांगड़ा जिले के 7

0: उपमंडलों में राज्यव्यापी मेगा मॉक ड्रिल आयोजित की गई। भूकंप, बाढ़, भूस्खलन और धार्मिक स्थलों पर आपदा जैसे विभिन्न परिदृश्यों के माध्यम से प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियों की तत्परता व समन्वय क्षमता का परीक्षण किया गया। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय ने भारतीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2026 में सरकारी विश्वविद्यालयों की श्रेणी में देश भर में 9वां स्थान प्राप्त कर इतिहास रच दिया। विश्वविद्यालय को शैक्षणिक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में देश में 4था स्थान मिला है। कुलपति प्रोफेसर सत प्रकाश बंसल ने इसे विश्वविद्यालय परिवार के सामूहिक प्रयासों का परिणाम बताया। धर्मशाला में आयोजित विशाल विधिक साक्षरता शिविर में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश विक्रमनाथ सहित देश के कई प्रमुख न्यायविदों ने भाग लिया। कार्यक्रम में संविधान, नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों पर विस्तृत चर्चा हुई तथा समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने के संकल्प को दोहराया गया। इसी के साथ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई। नमस्कार।
1: कांगड़ा जिला की चिट्ठी अभी आपने सुनी। लेखक थे विपन शर्मा, वाचन स्वर राजकुमारी चंदेल का था। इसे आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आकाशवाणी एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर भी सुना गया। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज FM शिमला। जी हाँ, 3:11 हो चुके हैं और FM शिमला पर लीजिए, अब आनंद लीजिए हमारे साथ ओल्ड हिट्स फिल्म संगीत का।

मन्ना डे की आवाज़ में आपको सुनवा रहे हैं किस्मत फिल्म का ये गीत। तो बनी रहिए एफएम शिमला के साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

हेमंत कुमार की आवाज़ में अभी आपने सुना 16 साल फिल्म का गीत। आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर और आनंद ले रहे हैं ओल्ड हिट्स फिल्म संगीत का। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में मनमौजी फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ों में अभी आपने सुना बसंत बहार फिल्म का गीत। कार्यक्रम के अंत में लीजिए अब सुनिए मुकेश की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत।

मुकेश के गाए मधुमती फिल्म के इसी गीत के साथ होल्ड इट्स फिल्म संगीत में आज बस इतना ही। आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3:30 हो गए हैं और आप जानते हैं एफएम शिमला पर ये समय रहता है युवा साथियों के अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी का।

नमस्कार दोस्तों, मैं रजत ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले कुछ ही दिनों में मानसून यानी कि बरसातें हिमाचल प्रदेश में दस्तक देने वाली हैं। और हम ये भी जानते हैं कि बीते पिछले कुछ वर्षों से मानसून सामान्य से अधिक बरसा है और भारी बारिश के कारण पूरे प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने के लिए मिला। और सच कहूँ तो अब ये बरसातें या मानसून का नाम सुनते ही मन में डर लगना शुरू हो जाता है। पर सच ये भी है कि ना हम बरसातों को रोक सकते हैं, ना हम मानसून को रोक सकते हैं। पर एक चीज़ है जिसे हम ज़रूर रोक सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम मानसून से होने वाले नुकसान को रोक या कम कर सकते हैं। क्यों ना आज के कार्यक्रम में हम बात करें कि कैसे हम हिमाचल प्रदेश में मानसून से होने वाले नुकसान के कारण व बचाव को जानने का प्रयास करें। दोस्तों, हमारी बातें यूं ही चलती रहेगी, पर उससे पहले सुनते हैं हम एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों, मानसून से होने वाले नुकसान के कारण और बचाव को जानने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि आखिर ये मानसून औसत से ज़्यादा क्यों हो रहा है। दोस्तों, मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इसके पीछे कई कारण माने जा रहे हैं। सबसे पहला और प्रमुख कारण माना जा रहा है जलवायु परिवर्तन और बढ़ता तापमान। वैश्विक तापमान बढ़ने से समुद्र का तापमान भी बढ़ रहा है, इससे अधिक जलवाष्प बनती है और भारी वर्षा का कारण बनता है। साथ ही हिमालय विश्व के अन्य क्षेत्रों की तुलना से तेज़ी से गर्म हो रहा है और इससे मौसम चक्र में बदलाव आ रहा है और ये भारी बारिश की घटनाओं के कारण भी बढ़ती जा रही है। दूसरा प्रमुख कारण माना जा रहा है मानसून और पश्चिमी विक्षोभ का एक साथ सक्रिय होना। मौसमी हवाएँ और पश्चिमी विक्षोभ जब एक साथ मिलते हैं तो अत्यधिक वर्षा होती है और पहले हिमाचल में मुख्यतः बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी का प्रभाव पड़ता था, पर अब अरब सागर की से अधिक नमी पहुंचने से भी ज़्यादा वर्षा का कारण और तीव्रता से जो वर्षा है वो बढ़ती जा रही। तीसरा और सबसे प्रमुख और आखिरी कारण माना जा रहा है स्थानीय पर्यावरण में बदलाव। वनों और पहाड़ों की कटाई और साथ ही ज़रूरत से ज़्यादा मानव निर्मित निर्माण स्थानीय जलवायु का प्रभावित कर रहा है और वर्षा के पैटर्न को बदलता जा रहा है।

दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अधिक मानसून के कारण होने वाले नुकसानों की। सबसे पहले हम बात करते हैं भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड की। लगातार बारिश के कारण पहाड़ों की मिट्टी

ढीली हो जाती हैं, जिससे भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड की जो घटनाएं हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो नुकसान हिमाचल प्रदेश को मानसून के कारण देखने के लिए मिलता है वो है बाढ़ और फ्लैश फ्लड जैसी घटनाएं। नदियों और नालों में अचानक से जल स्तर बढ़ने के कारण बाढ़ आ जाती है, जिससे लोगों की जान माल का नुकसान देखने के लिए मिलता है। तीसरा सबसे बड़ा जो नुकसान बारिश का हिमाचल प्रदेश को देखने के लिए मिलता है वो है सड़क और पुलों को नुकसान। भारी वर्षा के कारण कई सड़कें टूट जाती हैं और कई बार पुल बह जाते हैं, जिससे यातायात और आपूर्ति जो व्यवस्था है वो प्रभावित होती है। चौथा जो सबसे बड़ा नुकसान मानसून का हिमाचल प्रदेश को देखने के लिए मिलता है वो है कृषि और बागवानी को नुकसान। दोस्तों, हम ये अच्छे से जानते ही हैं कि हिमाचल प्रदेश की ज़्यादातर जो आबादी है वो कृषि पर निर्भर करती है, और भारी बारिश के कारण कृषि का असर हमें हमारी अर्थव्यवस्था पर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारी जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर करती है, तो जाहिर तौर पर इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर भी देखने के लिए मिलता है। पांचों और सबसे आखिरी जो नुकसान हमें हिमाचल प्रदेश में वो देखने के लिए मिलता है वो है पर्यटन पर प्रभाव। हम अच्छे से जानते ही हैं कि हिमाचल प्रदेश अपने पर्यटक स्थलों के लिए जाना जाता है, पर अक्सर बरसातों के कारण कई पर्यटक भारी बारिश के कारण एक जगह फंस जाते हैं, जिससे पर्यटकों में डर का माहौल हो जाता है और धीरे धीरे जो पर्यटक है हिमाचल में आना कम हो जाते हैं।

दोस्तों, अभी तक हमने बात की कि मानसून से होने वाले नुकसान के कारणों की। चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर मानसून से होने वाले नुकसान से कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले दोस्तों, हमें मौसम विभाग द्वारा जो चेतावनी दी जा रही है उसे समय समय पर सुनते रहना चाहिए, और साथ ही जो अनावश्यक जो यात्रा है उसे बचे। दूसरा कार्य हम जो कर सकते हैं वो है भूस्खलन संबंधित क्षेत्रों से दूरी बनाए रखें, और साथ ही अपने आसपास का जो क्षेत्र है उसका समय समय पर निरीक्षण करते रहे ताकि भूस्खलन के आने का खतरा आपको पहले से ही पता चल सके। तीसरा अहम कार्य आप कर सकते हैं कि आप अपने घरों व भवनों का निर्माण मजबूत और सुरक्षित तरीके से करें, और साथ ही भवनों का निर्माण वैज्ञानिक विधि से करें ताकि पहाड़ों की जो अनावश्यक कटाई है उसे भी आपको बचे रहना है। चौथा जो आप ज़रूरी कार्य कर सकते हैं वो है वृक्षारोपण को बढ़ावा दें, अधिक पेड़ लगाएं ताकि पेड़ लगने से जो मिट्टी का कटाव है कम हो सके और जो भूस्खलन का जो खतरा है उसे भी इसके माध्यम से कम किया जा सकता है। पांचवा जो अहम कार्य आप कर सकते हैं वो है जल निकासी व्यवस्था को बेहतर करें, और साथ ही नदियों और खड्डों से दूरी बनाए रखें। आखिरी जो सबसे अहम कार्य आप कर सकते हैं वो है आपदा प्रबंधन की तैयारी पहले से ही करके रखें, जैसे कि आप टॉर्च, प्राथमिक उपचार की किट, आवश्यक दवाइयाँ और जो ज़रूरी दस्तावेज है उसको आप पहले से तैयार करें ताकि इमरजेंसी के समय आप अपने आप को तुरंत तैयार कर सकें।

दोस्तों, अभी तक हमने बात की कि आखिर बचाव कैसे किया जा सकता है, पर अब हम बात करेंगे कि बादल फटने या लैंडस्लाइड जैसी आपातकालीन स्थिति पर हमें क्या कुछ करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें मुख्य जो आपातकालीन नंबर है, जैसे कि 112 व 1070 पर कॉल करें, ताकि पुलिस व स्टेट डिजास्टर जो मैनेजमेंट सेल है उसे हम समय पर मदद मांग सकें। साथ ही अगर बादल फटने या अचानक से बाढ़ आने वाली परिस्थिति में सबसे पहले हमें ये करना होगा कि हमें नदियों व नालों से तुरंत दूर हट जाए और ऊंची और सुरक्षित स्थानों पर चले जाए। साथ ही बहते पानी को पार करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें और बिजली के खंभों व तारों से दूरी बनाए रखें। भूस्खलन आने की परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, अब हम ये जानते हैं कि पहाड़ी ढलानों और चट्टानों के मलबे वाले क्षेत्र से दूर हट जाए। यदि वाहन में हो तो सुरक्षित स्थान पर अपने वाहन को खड़े करें और उससे दूर चले जाएँ। गिरते पत्थरों की आवाज़ या ज़मीन में दरारें दिखे तो तुरंत क्षेत्र को खाली करें। ढलानों के नीचे बिल्कुल बिना खड़े रहे और खुले और सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। प्रशासन द्वारा जो सड़कें बंद की गई उस पर यात्रा बिल्कुल भी ना करें।

तो दोस्तों, हम अपने कार्यक्रम के अंत में आ चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और आप सभी भी मानसून से होने वाले नुकसान से बचने के लिए अपने स्तर पर प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों से मैं आपसे विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा।

सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।

मस्त चुनो मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए FM शिमला।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में अभी आपने सुना मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म का गीत। आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 MHz पर और आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। जी बिल्कुल, अब हम आपको सुनवा रहे हैं बलमा फिल्म का गीत जिसे गाया है आशा भोसले और

विनोद राठौर के गाए बाजीगर फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत में आज बस इतना ही। अब अपनी रेडियो हमसफर बबीता शर्मा को दीजिए इजाज़त। इसी उम्मीद के साथ बहुत जल्द होगी आपसे मुलाकात। आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बस यूं ही सुनते रहिए हमारे साथ FM शिमला। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और आकाशवाणी एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। प्रस्तुत है हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम आइए सबसे पहले सुनते हैं सिरमौरी कार्यक्रम। हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DTS सेवा पर भी उपलब्ध हैं।

सिरमौरी कार्यक्रम दा तुं सो भी सुनने वाले का स्वागत ओसो। गीत और बातों का हमारा ऐजा बैगे बठिया कार्यक्रम तुहें मीडियम वेव साथी ही एफएम बैंड 106.7 मेगाहर्ट्ज़ का शी भी सुनी सको। एतलो के कार्यक्रम दे हमारे बात लाने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का शी। इन्हें के साथ सिरमौरी बोली दी देशो दुनिया की खबरसार सुनबे और सहकारिता के माध्यम से कश्मत का में विकास कर सको। इन्हें का शी भी थोड़े घणे चर्चा लाऊंबे और गेरे कुछ लोक गीत और नाटी के शटराले भी सुनबे। पर गाया गया साई कार्यक्रम के शुरुआत करने हमारे सुरेखा बरसांटा की गायों दियों बहुत बढ़िया लोक गीतों साथी सुनबे जो गीत।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, खास करियो हमारे समाज के जो अनुसूचित जाति बहुल गाँव सो तिनके विकास तई चलाए थे। इनका उद्देश्य ओसो जे जेथे हरिजन समुदाय के लोग, अनुसूचित जाति के लोग जियो गाँव दे ज़्यादा संख्या दे रो, तिंदे का विकास करना, ताकि से अपने गांव छोड़ियो शहरों की डोबे पलायन न करो और बदी बाती के विकास की जो सुविधाएं ऐसे तिनके गांव गोड़ो दी पूजी इच्छे। यो योजना के द्वारा गांव दी बुनियादी ढांचा का विकास करना, जैसे जिनको गौर न थी तिनके गौरव बनाने के इमदाद देना, गांव की गली पक्की करनी, गांव की गलियों दी बिजली लाने, पानी के नलके पहुँचाने और पुराने जो पीने के पानी के स्रोत सो जैसे कुएँ, कुफरियों सो, बावड़ियों सो, तिनका भी नए तरीके से तिनका भी रख रखाव करना, तिनकी बनावट बढ़िया ढंग से करना। इनके अलावा हरिजन बस्ती तोड़ी, हरिजन गाँव तोड़ी सड़के की सुविधा पहुँचाना, जिंदी पक्की सड़की हो चाहिए और पढ़ने तीन हंडी एक है स्कूल, आंगनवाड़ी और इनके साथ हो कई जितोड़ी भी बुनियादी सुविधाएं सो एक ही गांव दी जो एक सामान्य जीवन गाणी जीने के चाहिए से हरिजन बहुल गांव दी भी पहुँचाली। ये सरकार के प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत एक शुरुआत सो पहलो सो इसी बद्दी सुविधाएं जब भेटली तो हरिजन गांव भी आदर्श गांव बने जाला। 2011 की जनगणना के अनुसार ऐसे गांव जिनकी जनसंख्या 500 से ज़्यादा ओसो या जियो गांव दे अनुसूचित जाति के लोग आधे से ज़्यादा रहो, यानी कि 50% से जे क्यों भी गांव दे अनुसूचित जाति समाज के लोगों की संख्या ज़्यादा ओसो तो सजा गाँव प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आओ। इन्हें का लक्ष्य भाई यजा योसो जे गाँव दे शिक्षा की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा, साफ पीने को पानी, जब औरत पेट बारी और तो टीकाकरण की सुविधा, नवजात नन्हड़ी एक है टीकाकरण और पोषण की व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा।

और डोई कमाई के रोजगार के थोड़ा दाजवे से विकास करना इंदा शामिल ओस। केंद्र सरकार द्वारा प्रति गांव जो ऐसे विकास करने के जिन देखा मैं गैप फिलिंग बोलो तिंदे तई जो ही जो ऐसे धन भी पैसे भी जो ऐसे दिए जाओ इंदे के सुविधा जी सो जे जो जा सामान्य बजट पंचायतों के द्वारा गांव के विकास के भेटो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत ज्यो पंचायत दा आदर्श गांव वाला जो योजना के तहत चुनित हुआ तिंदा प्रत्येक गांव के 20 लाख रुपये अतिरिक्त भेटले ज्यादा भेटले। ये भी की स्थिति अजय सोच भाई 2021-22 थी ऐसे जो योजनाएं से आगोड़े प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के नाव से जाने जाओ थे जो अब प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना दे बुलाए जाओ थे। पहले पीएम अजय थे और अब पीएम AGYS। आदर्श ग्राम का टक्कर रूप था जो ऐसे गांव का विकास करना ताकि एक समरसता का जो वातावरण है माहौल है से हमारे चौड़ब के समाजदार होला। सरकार की कोशिश ऐसी ओसो जे जातिगत भेदभाव आधारित हमारे जो अनुसूचित जाति समाज के लोगों सो से क्यों भी बातों से विकास की प्यास से पछू ने रोए चाहिए। और इधर की सरकार शुरुआत जो ऐसी सरकार है यो योजना साथी कर रहे थे ऐसी तो कि भी कई योजनाएं सो अनुसूचित जाति आयोग सो पर तब भी जिन से गांव के दूर पारों के ठोड़ सो तेंदे पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा ही अतिरिक्त बजट दियो आदर्श प्रधानमंत्री आदर्श गांव बनायो तिनका जो विकास है श्यामे पंचायत के माध्यम से कर सको। जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा भी प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना इंदे भी चलाए थे। हाँ जी बात ध्यान देने योग्य ओसो जे इन्हीं ऐसे चुने दे गांव के 20 लाख रुपया अतिरिक्त भेटो और से जे 20 लाख इन्हीं गांव दे खर्च भी करे जाने चाहिए। तो सब जोने ऐसी बात ध्यान दौरनी चाहिए जे जैथे ज्यो गांव दे अनुसूचित जाति समाज के लोगों की संख्या या तो 500 से ज़्यादा ओसो या गांव के जो जनसंख्या है तीन दे 50% से ज़्यादा तीन की संख्या ओसो तो से प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत चिन्हित होने ते अपनी अर्जी दे सको और यो भारत सरकार की योजना का लाभ ले सको। सुन बे जो गीत

भारत गांव का देश असो, और गांव के जीवन गाने अप मुझी एक जोई ठाण बाण थो। गांव के संस्कृति, गांव के रीति रिवाज, गांव के बाण बर्तान और गांव का रोना सोना शहरों के भीड़ भाड़ और शोर शराबे सा कितनी दूर अपने पन शबर आंदास। जथे सौ के दोगे कि एक दूजे दर्द लागो, जे सही मायने तो कुसी के अपने जीवन गाणी जीने का आनंद लोना, तो डेरा कि थी गांव दा जोना चे, बसेरा गांव गोड़ो दा करना चे। गांव के लोगों की भावनाएं सजे ही समझ सको, जिनका बचपन जवानी और बुढ़ापा गांव दा बीते रहा। सुन बे खबर सार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एतलो फिरे राष्ट्रपति भवन दे आने वाले दूजे नागरिक अलंकरण समारोह दे पद्म पुरस्कार देंदी। यो समारोह दे पद्म विभूषण, दो पद्म विभूषण, सात पद्म भूषण और 56 पद्मश्री, साथी कुल 65 पद्म अलंकरण जो ऐसे देशवासियों के दिए जाते। हिमाचल प्रदेश राज्य पथ परिवहन निगम के चालक और परिचालक यानी कि ड्राइवर और कंडक्टर यूनियन और प्रदेश सरकार के बीच एतलो

योगी तो साथी एतलो कैसर मोरी कार्यक्रम का वक्त हो चला। मुखे दियो इजाज़त, तू सो भी सुनने वालों के राम राम।

गोरिये भोली मत जांदी मेरा प्यार, बहुत ही प्यारा लोकगीत। और लोकगीत गाने वाले थे हुकम शर्मा और साथी। ए ब्यासा गलबात करनी संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस और बारे दे। तो जी आज संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस है। इया हर साल जो है ये सप्ताह रूपों दे भी मनाया जावा, जो कि 21 अप्रैल को है मनाया जावा। इसी दिन ने 1947 दे सरदार पटेले जो है सिविल सेवकों के भारतोरी जो एक स्टील फ्रेम देते के बोलो है। दिल्लिया दे जो है प्रधानमंत्री ये जो है सिविल सेवकों के अच्छे कामों रितई अवार्ड दिलाए थे। और इतरा जो है एक जनसेवा नवाचार, मतलब सेवा वितरण दे को कैसी भी किस्म जो थी ना काम करना बढ़िया आला सेवा वितरण दे तेते दे नवाचार रहते ही और लोक सेवा दे एक नई पहल शुरू की थी। पूरे देश भरो दे जड़े मारे IAS IPS IFS मतलब ऑफिसर दिल्लियों दे से सब कट्ठे होए। और ये जो मतलब कट्ठे होने रहा जो इन्हें ये कार्यक्रम था ये 2019 के बाद करना शुरू किया गया और 3 दिन तक जो है ये कार्यक्रम चलता रहा। जेते दे जो है अलग अलग दिन अलग अलग किस्म रे जो है यो कार्यक्रम राखी रखो है। जेते दे कई आखे जो है इनाम बांटने तेती जो है हमारे राष्ट्रपति भी आओ है।

ना, और प्रधानमंत्री भी आओ है तो जिन्हें भी पूरे सालों दे बड़े अच्छे काम करी रखो है, बड़े अच्छे के थी तीने कोई मेडल लीते, तो तीना खे एते इस दिन है जो एते ती पद्म विभूषण या पद्म भूषण या पद्मश्री, मतलब अलंकार दीते जाओ है जो जो भी के तेरे जो है मतलब लायक हो मानू देते दे, है ना। तो जी आज भी यहाँ बहुत जगह ते संबंधित कार्यक्रम रखे गए थे, और जेडे जो है मतलब एक जब कार्यक्रम रखा जावा तो तेती क्या हुआ भाई, संकल्प दोहराया जावा जो हमारे सिविल सेवक है ना, तीन तीन दिन जो भी ये कार्यक्रम रहना तेते दे नागरिकों री सेवा रा जो एक संकल्प लिया जावा। सरदार पटेल 1947 दे जो है मेटकॉफ हाउस ऑफ द पहली बार ए गल दसी थी, जो ये सेमिनार हुआ तेते दे गवर्नेंस जो हमारी कोई भी काम है सिर्फ तेते दे क्या होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, कोई एड़ा नहीं भाई किसी के समझ नहीं आओ ये काम किया करना किया, तो एकदम साफ सुथरा काम पारदर्शिता है ना। और जो भी आसारे आज आगे समय बढ़ने लगी रहा टेक्नोलॉजी बोलो जीते है तो जियाँ जियाँ ऐसे आगे बढ़ने लगी रहे तो तेते पांदे भी इतने दे खुली के गल बात करी जाओ समझाया जावा। यहाँ हर साल अलग अलग किस्म की थीम हो जड़े पिछली बार आ रही थीम हमारी गल करिए तो पिछली बार जो थीम थी तो उसे विकसित भारत और बारे दी थी, और जो भी हमारे जीते दे जिले या हमारे कोई विभाग है उगे और कोई हमारा प्रोजेक्ट होगा तो उसे इतने दे इस जड़े स्वस्थ आयुष्मान भारत है ना, या डिजिटल मिशन है या ई संजीवनी है, तो ये सब जो है ना मतलब इतने साथ ही जुड़े दे इन्हें सभी दे जो जो जो भी बढ़िया अच्छे ते काम करो हमारे देश और नाव करो, तो इन्हें सभी के जो इतने दिन है जो है ये इनाम देते जाओ है। अब जड़े मारे महिला सशक्तिकरण है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, महिला ई होट इतने से संबंधित ई मतलब जो भी ई शासन होते संबंधित हमारे रूपरेखा रोई इतने दे सब जोड़े जाओ है। और जो सिविल सेवा सप्ताह हुआ ना से अप्रैलो दे 16 तरीका तो लेके 1 अप्रैलो तक चलो जो सप्ताह मनाया जावा, और सभी युवा साथे खुली के चर्चा करी जाओ इस दिन ने, और एक प्रेरणा है कि सरदार पटेल ने बोला था कि जो हमारी जनता है ना पर जो बोलो है कि जनता री सेवा करना काम है, जो भी नो मतलब कोई सरकारी नौकरी करवा कुछ भी करो तो से सरकारा रा नौकर नहीं ऐसे किसरा नौकरा से जनता रा नौकरा, मतलब मालिक का रा नौकर नहीं जनता रा नौकरा, जनता रे तई से रखा था और जनता रे तई दिना काम करना, तो एक प्रेरणा दीती थी तेस टाइम में सरदार पटेल ने ए गल बोली के। और जियाँ कि दस्या कि शपथ हर बार जब जो ये मनाया जावा दिवस तो तेस दिन दूजी बार शपथ लीती जावी, और दिल्ली और सारे ऑफिसर मिली के भ्रष्टाचार मुक्त सेवा रा जो एक वादा करो है इस दिन मिली के कि अपने देशों के आगे बढ़ाऊंगे किसी किस्म का भ्रष्टाचार नहीं रखना एकदम मतलब जो है कामों दे जो हमारे पारदर्शिता रहनी और अपने देशों रा हर जगह जो है ना आगे बढ़ाना, तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा बारे दिया से की गल बात ये भी सुनो तुसे एक लोकगीत।

जी तो तुसे तो पराए पराई हो गए। तो गाने वाले लोकगीत थे अर्जुन गोपाल। ए भी ऐसा गल बात करनी स्टार्टअप इंडिया रे बारे दे। तो जी स्टार्टअप इंडिया जिते के नव प्रवर्तन उद्यम योजना या मतलब बोलिया जाओ है, जो भी मतलब कोई हमारी नई कंपनी कोई काम शुरू करो, कोई मतलब काम शुरू करने की योजना बनाओ कि माँ एड़ा काम शुरू करना था, तो एड़े काम आ रहे तई जो है सरकारें ए स्टार्टअप इंडिया जो है योजना चलाई रखी। अच्छा तो क्या हुआ कि सरकार अरी ए योजना जो है नए कमाई करने रे तरीके माणुआ खे तेते दे टैक्स औरी छूट और फंड भी दे हुई, और जो एक रजिस्ट्रेशन जो है तेरा तू सा पंजीकरण करवाना ते तेरा जो है एक आसानी जा मतलब तरीका रख रखा। एड़े कोई बड़ा भारी है ते दे एड़ा काम नहीं दे दे रखी, समझ ही ना हो कि क्या करना क्या ते दे मलबा सा दस्तावेज देने है ना। तो इतना जो एक मकसद उद्देश्य था से क्या था कि महाराज जो है मेक इन इंडिया बनाना कि हाँ जो हमारे युवा पीढ़ी है युवा है तिना खे नौकरी देना, इतना तेरा उद्देश्य नहीं था कि नौकरी देना युवाओं के तेरा उद्देश्य था।

बल्कि तेरा उद्देश्य था नौकरी बनाने वाला बनाओ। मान लो आऊँ है तो मां एक एड़ा काम शुरू करना जिते दे आऊँ आपू साथे 10 माणुआ के और काम दे सकूँ। तो आऊँ क्या हुई मतलब माखे एड़ा काम में शुरू किया जिते दे सरकार मेरी सहायता की थी जिते दे जरिए मैं 10 और माणुआ के रोजगार दिता। तो ये तेरा मकसद है ना कि ऐसे और इखे भी रोजगार दे सकूँ। तो जड़े मारे मान लो सुन ली दे जे शिमले दे गल करिए तो इति भी स्टार्टअप रजिस्टर है पंजीकरण है तेरा जिते दे कई माणू सेब से बारे जो है एक इन्हें से प्रोसेसिंग वाला काम चलाया दा है ना। तो तेते दे जो है भी जब सेब हो है तो ते भी तीन आखे सुकवाई के आगे तीनारा बेचने करने रहा जियाँ भी मतलब कंपनियां थ्रू या जड़े अजकल फोन दे ही कर दे नी भी फोन दे ही लग रहा ऐसे ना करने कोई चीज़ चाहिए जड़े भी मीशो ते लगी करने कोई अमेजोन ते तो एड़े ही इतने तुसे अपना खाता खोली के अपना जो भी तुसे चीज़ बेचनी से बेची सको है ना। और अच्छा ये शुरू कदी हुआ था ये हुआ था शुरू 16 जनवरी 2016 के प्रधानमंत्री मारे जो नरेंद्र मोदी है इन्हें जो है तेरा उद्घाटन किया था। और जो तेरा एक मकसद था ये तेरा था सबसे बड़ी गल की सरलीकरण कि 80 ते ज़्यादा सरकारी नियमों जो एक छूटी एक दिनों दे आरामों दे तुसे अपना कंपनी रजिस्ट्रेशन करी सको है ना पंजीकरण करी सको है बोलने की गल पंजीकरण तुसे अपना करी सको है। और जो इतने के एक पैसा देने की गली तो 10,000 करोड़ रा जो है बैंकों ते लोन भी मिलो आप पर गरंटिया साथ है ठीक है। और सहयोग भी करो ये IPR जड़े फास्ट ट्रैक टैक्स हो दे 3 साल तक छूट मिलनी है ना 80% तक। तो कौन ले सको आ जड़े कोई कंपनी है और 10 साल ते कम पुरानी हो से कंपनी तीन आखे जो है ये मतलब इतना जो है बैंक और जो फंडिंग है से मिल सको ही। और टर्नओवर जो है से 100 करोड़ ते जो है सालों ते कम हो। और सभी तो बड़ी गल है कि भाई सभी तो पहले तो अपना सारा जज्बा होना चाहिए काम करने रहा सरकार तो बहुत कुछ असर तई करने लगी थी एड़ा कोई कमी सरकार ऐसा खे राखी नहीं राखी बड़ी भारी योजना आशा सभी रे तई चलाई रखी आ जिते दे आसे अपना रोजगार तो खोली सकूँ है साथ रोजगार साथ साथ आसे 10 माणुओं के और भी रोजगार दे सकूँ है। पर आएगी भी सही गल कि तन मन धनों ते काम करना पड़ो आ और कोई गलत मकसद आसारा नहीं होना चाहिए काम करने रहा। तो आसे जो चीज़ लोंगे तो ते तक ऐसा वापस भी करना जे आसे कहता तो लोन कोई कार्य करने थे सरकार ऐसा लोन देने लगी थी तो सी चीज़ ऐसा वापस भी तो करनी तो ये सोची समझी के ही ऐसा के कोई भी कार्य अपने कोई भी कंपनी चलानी या कोई भी रोजगार शुरू करना तो हमेशा ये सोची के कि ऐसा सरकार आरा से लेन देन वापस भी करना है ना। तो जो भी काम करो लगनों साथे करना चाहिए है ना। तो सुनो तुसे एक लोकगीत।

हाँ जी, तो जी लोक गीत सुने तुसें एबू आशा कंवरोरी आवाजा दे। अच्छा जी देखो, अजकल है जेड़ा कि सभी के पता है कि भाई गर्मी भी लगी रही हुने और एकदम हुई जाओ बरखा बिन बोले बरसात, और एकदम जियां बरखा होनी तो एड़ा लगवा जानी है जे जनवरी महीना चली पड़ा। तो थोड़ा बहुता एड़ा ध्यान रखो अपने बाल बच्चे रा भी और अपना भी और साथे बुजुर्गा रा भी, क्योंकि ऐसे लोग क्या करूँ जी गर्मी हुई थी आई जो है अपने गर्म टाले रख दूँगा बंद करी के, और एकदम बरखा होने के बाद ठंड एड़ी हो जाए कि मतलब ते वैसे माणू बीमार हो जावे, एकदम जुखाम खांसी लगी रही होने। तो कोशिश करो कि भाई एक आधा अड़े गर्म सूट बच्चा के स्वेटर स्वेटर सामने रखो बड़े बुजुर्गारिया, और मौसमों दे बची करो जेबे एड़ा लगो कि भाई बारे मौसम खराब है तो जरूरी नहीं है बरखा पानी के बारे निकलना, अपने घरों भीतरे रहो है ना, और छोटे छोटे बच्चा के थोड़ा भाई गर्म जे कपड़े पहनाए के स्कूले भेजो, अबे स्कूले तो भेजने ही पड़ने बच्चे है ना, और अपना भी ध्यान रखो क्योंकि अभी जे आपू ठीक रहने तो उसे जो भी करे युवा पीढ़ी है तो तेबे तीना ही छोटे बच्चे भी संभाल लें और तीना ही जो है अपने जो भी हमारे बुजुर्ग है सियो भी संभाल लें। तो ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले ध्यान तुसा रखना अपना, क्योंकि एड़ा हुआ ना ऐसे घरोरिया जिम्मेवारी निभांदे निभांदे अपना ध्यान रखना भूली जाऊँ है, और जी एकदम मतलब रात दिन लगे दे काम होते लगे दे काम होते भ्यागा उठ जाना है ना, ते वे लगे रोटियां बनाने ते वे बच्चे तैयार करो जी स्कूले भेजो ते वे बुजुर्गारी सेवा करो डांगरा पशुवारी करो डोरुवारी करो है ना। तो कोशिश एड़ी करनी चाहिए कि सारा काम करो पर साथे साथे अपना भी ध्यान रखो। तो जी देखो एवे मारे चलने रहा भी लगी रहा थोड़ा वक्त उन्हें है ना, और मारे जो महासु कार्यक्रम और प्रस्तुत करता था इसे थे दीपक कुमार भारती ठाकुर आ रही सभी के राम राम।

महाश्वी कार्यक्रम अभी आपने सुना, ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। प्रस्तुत है स्पीति कार्यक्रम। हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DTS सेवा पर भी उपलब्ध हैं।

rozgar mehlang yala minang meti yakpu chue phila tang tinya chi nu ba ngan sho la arthik swatantra ta se na yang konji mul ki khao ting an mi second chore mul ki khao me ta ni pa te chi wa atmishwas mang du chue pa ma yala yang phitaran do na khonje chu se na mi ya ki saran puje ya ki saran ne gu me ta khonje ra atmishwas khonje ra oti chai sumbate jime te yala mul ki mangdu yang parivar mul gushon na chi gushon na yate te cha phila yang ji pa tobla yang yar ke mangdu samman oy thop cha phila ane yala dika diki liha chi kinu yang khakchin mote dang ting sarkar su ane yala yar ke phila yojna ka mangbu go suwa oti nang do ane yala parikshran yani rin ki liha chi afsaro notia thop cha phila अतुक सुख सिंह रंग रंग सा मीना मेते ओयल खाऊ योंगजे मेते फीला ये की ओय ये लापचा ये चुक सी लापचे ने ओय यहाँ मदद तोंगजे फीला आने याला ये सिल चुकचा संसार दोनों ला न्यून तांगजे मेता यहाँ ओय तोप की समलो इनो दी अवसर याला ओय न्यून तांगजे मेता ओय तोप ला हा खो गुशा की दी ते ओय यरकेत की फीला इनो ओय आने याला यरके तोंगजे फीला यहाँ दी याला ओय तोले ला मदद तोंगजे फीला मीना मेती खाक छिन मुला हा इनो सरकार की यहाँ ओय मी याला जागरूक है चांदी आने याला ओय टू आने याला चुन चन ओय फमो याला गे गा लप चाय योन देन लप चाय ये लप तो तंग जा यहाँ चिकपा छोरे पहचा दे सूची ओगा से ना आने या टनते मी यहाँ खोजे आत्मनिर्भर जिमेत गंगबूला योन देन ते गा थे ना अति सुई लप चा गा यहाँ आने फिताल रोना अति की लप चा तेने मी याला यहाँ निर्भर निगुमेता फमो या अति सो ऐ ग्याकर की मीनांग में थी यहाँ यर्गे अति सो ऐ ग्याकर लाए मीनांग में थी यर्गेत का योगा चिला से ना नारी शक्ति का सम्मान से ना जिससे कहो से ना आने याला यहाँ आया तोले इज्जत ते चा ऑन थे ने दी थे आया ला यहाँ मीनांग में थी यर्गे की लहा रंग यर्गे की यमला डो चुका आया आने याला चिला से ना आने चिकते ऐ यहाँ समाज गंगबूला यहाँ ऐ ग्याकर ला यर्गे की लामला चुका अति सु दी ऐ आने आते मीना मिती ऐ ग्याकला मतलब ऐ ग्याकला मीना मिती खोजे भूमिका ते मीना मिती ओका चिल से ना आने योंदेन लापचा नी ऐ जिमेत गंगबूला योंदेन ये लापचा रंग अति ओगा दी ते था यंग यंग महिलाओं की भूमिका कोला छिंगी सुम शुवाइन था इंगाबला आने टशी सोमो की लुनियन बुजी यंदाजा

नीलम गंधर्व की आवाज़ में अभी आपने सुना ये लोकगीत। आकाशवाणी शिमला से आप सुन रहे हैं लोकगीत। अगला लोकगीत आइए सुनते हैं दोतराम पहाड़िया की आवाज़ में।

0: दोतरा पहाड़ी की गाई सी लोकगीत के साथ लोकगीत अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। 6 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुरा धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आकाशवाणी एफएम शिमला पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DTS सेवा पर भी उपलब्ध है।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवो भव की भावना पर बल देते हुए अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त IAS 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर भारत की यात्रा का नेतृत्व करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सार्थक और स्थायी परिणाम प्राप्त करने के लिए विभागों में प्रभावी तालमेल जरूरी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। शिमला में जनजातीय विकास व बागवानी विभागों की बैठक में उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार रसायन मुक्त कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान कर रही है। बागवानी विभाग की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विभाग को हर संभव सहयोग प्रदान करेगी और रिक्त पदों को भी भरा जाएगा।

0: उन्होंने अधिकारियों को जनजातीय विकास विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। राज्य पथ परिवहन निगम की चालक परिचालक यूनियन और प्रदेश सरकार के बीच आज हुई वार्ता विफल रही है। यूनियन ने शिमला में परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ वित्तीय देनदारियों सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन इन पर सहमति नहीं बनी है। ऐसे में चालक परिचालक यूनियन ने कल 24 जून को रात 12 बजे से प्रदेशव्यापी चक्का जाम का ऐलान किया है। यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने बताया कि वित्तीय देनदारियों को लेकर लिखित आदेश न मिलने तक सरकार से कोई वार्ता नहीं होगी।
1: प्रदेश की जनता से भी गुहार लगाना चाहूंगा कि अब वक्त आ गया है, क्योंकि मेरे को लगता है कि इन्होंने हमें हल्के ये हमें ले रहे हैं। हमें कल 12 बजे से बात बंद करना पड़ेगा। प्रदेश की जनता कहीं बुकिंग ना कराए और बसों का इंतजार ना करे, क्योंकि ये अब हमारी मजबूरी है।
0: इस बीच राज्य सरकार ने परिवहन निगम कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 माह के लिए रोक लगा दी है। इस संबंध में परिवहन विभाग में अधिसूचना जारी कर हिमाचल प्रदेश आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम 1972 यानी एस्मा के प्रावधान लागू किए हैं। अधिसूचना के अनुसार सार्वजनिक परिवहन सेवाएं, जनता की आवाजाही, आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई, कानून व्यवस्था और जनहित के लिए अत्यंत आवश्यक है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि HRTC प्रदेश की लाइफलाइन है और चक्का जाम किसी भी समस्या का समाधान नहीं है।
2: चक्का जाम करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमने हिमाचल प्रदेश में आज से एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट एस्मा लगा दिया है। बसें चलाना जो है उतनी ही जरूरी है जितना जो है कुछ सर्विसेज और जरूरी हैं, क्योंकि ये प्रदेश को सेवा देती हैं। कर्मचारियों ने जाना है, स्टूडेंट्स ने जाना है, लोगों ने कहीं जाना है। बसेज चलाने के लिए जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे वो कदम हम उठा रहे हैं। हमारा कर्मचारियों से ये आग्रह है कि वो कोई ऐसा कदम ना उठाएं और नो रिटर्न पॉइंट पे ना पहुंचे। जो फैसले वो ले रहे हैं, सरकार को भी अपने हिसाब से कदम उठाने पड़ेंगे।
0: सिरमौर जिला परिषद के अध्यक्ष पद के लिए भाजपा समर्थित शिवानी और उपाध्यक्ष पद के लिए बलदेव भंडारी को चुना गया है। भाजपा ने इसे कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता का जनादेश बताया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस की नीतियों को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है।
3: ये पहला अवसर है सिरमौर जिला के इतिहास में जब 17 में से 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। आज सिरमौर जिला की जनता ने कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया। सड़कों, पुलों, पानी की योजनाओं, अस्पतालों को बंद करने वाली सरकार, ताला लगाने वाली सरकार, बिजली पानी को महंगा करने वाली सरकार को सिरमौर की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है।
0: वहीं सांसद सुरेश कश्यप ने भी जिला परिषद चुनाव परिणामों को भाजपा के लिए बड़ी सफलता बताया है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा अगले वर्ष विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। प्रदेश में आगामी 28 जून को पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी ने आज शिमला में इस अभियान की तैयारियों की समीक्षा की और इसे सफल बनाने के लिए विभिन्न विभागों से सक्रिय सहयोग का आह्वान किया। विभाग के अनुसार अभियान के लिए आवश्यक पोलियो वैक्सीन की प्रदेश के सभी जिलों में आपूर्ति कर दी गई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और आकाशवाणी FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं कांगड़ी कार्यक्रम। हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DTS सेवा पर भी उपलब्ध हैं।

आकाशवाणी दे शिमला केंद्र है। टाइम होया है 6:06, कने समा है कांगड़ी कार्यक्रम दा। कांगड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सारे श्रोतियों दीपिका दी राम राम। श्रोतियों कार्यक्रम च अज हां गलबात लैनी है सकारात्मक सोच अपनी जिंदगी च अहां कियां करी आने सकते हैं इस पर। इसके अलावा जानकारी अपने श्रोतियों देनी है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना बारे। हमेशा सही मनोरंजन होना है, लोग गीत सुनाए ना श्रोतियों का, तो जिन्हें कलाकारां दे लोग गीत सुन सकते हैं सर हमने वंदना सूद, सुनील कुमार राणा, कने सुदर्शना। श्रोते अज है 3 जून, अज अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिहाड़ा मनाया गया। इसी मनाने का मुख मकसद जड़ा है स लोगों खेलों प्रति स्वस्थ जिंदड़ी जीने प्रति प्रेरित करना है। कने ये दिहाड़ा जड़ा है स खेल स्वास्थ्य शांति वैश्विक एकता का एक बड़ा उत्सव है। इस दिहाड़े का संदेश मित्रता सम्मान उत्कृष्टता दे ओलंपिक मूल्यों बढ़ावा देना है। इस मौके स्कूलों कॉलेजों भी जड़े हैं सर खेल प्रतियोगिता के आयोजन किए जाते हैं ताकि जोड़े बच्चे हैं नौजवान अहम नौजवान हैं तिनाओं खेल प्रति जड़ा है स प्रेरित किए जा सके। कने शारीरिक गतिविधियां ने स जे अहम नौजवान हैं बच्चे हैं स जुड़ी सकन। श्रोते हुण गलबात करते हैं कि अपनी जिंदगी अहम सकारात्मक सोच जी है स कियां करे हाँ आने सकते हैं। देखा जिंदगी तो किसी की भी आसान नहीं है, सारे की जिंदगी कुछ ना कुछ परेशानियां जड़ियां हैं सह हमेशा ही रहिंदियां हैं। अहां सारे दिए जो अपनी जिंदगी सुख दुख खरा बुरा सफलता असफलता आशा निराशा का सारे ही सामना करना पौंदा है। जिस अहां दी जिहड़ी सोच है तिसदी बड़ी वड्डी हिस्सेदारी हुंदी है। अगर अहां खरा सोचते हैं सीधा सोचते हैं तो बड़ी तो बड़ी जड़ी मुश्किल हैं तिनाओं भी बहादुरी ने आत्मविश्वास ने झेली सकते। सकारात्मक सोच जड़ी है सह माणुओं निराशा ते बाहर कड्डी सफलता दे रस्ते पर चलने च मददगार भी साबित हुंदी है। देखा अगर अहाँ गलबात ही करते हैं ना मतलब कि कोई भी काम जी अहाँ करना है तो अगर अहाँ पहले ही सोचना लग पे कि यह काम तो होना ही नहीं है या अगर अहाँ बच्चों की गल कर न्याण की गल कर कि नहीं मेरे नंबर तो इतने होने ही नहीं हैं, अगर पहले तो नकारात्मक सोच के तो फिर ही पढ़ाई भी मन नहीं लगता। जी अहाँ सोचते ना सहते अहाँ का बर्ताव भी हों किंदड़ी प्रति अहाँ की सोच भी सहदे ही होनी। सकारात्मक सोच जिंदड़ी वो खुशहाल सफल बनाती है। ऐसी अगर अहाँ सोच रखते हैं तो कोई भी अहाँ की जिंदगी कैसे भी हालात का अहाँ जो सामना करना पवे तिना जो अहाँ एक मौके के तौर पर दिखते कने अगे बदने ताएं हमेशा जड़ा हन सह लगातार कोशिश करते रहते हैं। अहाँ की खरी सोच सकारात्मक सोच बनी रहे इस ताएं अहो अपने बर्ताव पर अपने व्यवहार पर अपने विचारों पर जड़ा है सह ध्यान देने की जरूरत है। हर एक दिहाड़े की शुरुआत ब्यागा जालू उड़ते हैं तो खरी सोच नहीं करन अपना मकसद जड़ा है सह अहें पता होना चाहिए तिसियो हासिल करने ताएं तिसियो हासिल करने खातर खूब मेहनत करन। जिहड़े भी नकारात्मक लोग हैं या कोई ऐसी सोच वाले लोग जिहड़े हैं तिन्हां दी संगत भी हाँ जो नहीं करना चाहिए क्योंकि बोलते हैं ना कि जिहदे संगत सहदे रंगत जिहदे लोगों विच रहेंगे सहदे ही अहां दे अहां दा भी बर्ताव हो जाता है अहां दी सोच भी सहदे ही हो जाती है। इस करी जिहड़ी है संगत भी अपनी खरी रखना चाहिए। इसके अलावा खरियां जिहड़ियां हैं प्रेरणादायक किताबां जिहड़ियां हैं सह भी पढ़ने की आदत बनाउण। देखा अजकल दे टाइम तो सारे की जिंदगी जी है तनाव ने भरी हो है वो कने तनाव के अलावा होर भी कई समस्या की वजह से जोड़े हैं लोग अजकल निराश हो जाते हैं उदास हो जाते हैं तो ऐसे मौक़ों पर सकारात्मक सोच आयो धैर्य आत्मविश्वास ने अगे बढ़ने तय दिशा दिंदी है। अहम सोच खारी रह सकारात्मक हाँ सोच तो इस तय जोड़ा है स योग जरूर रोजाना करना चाहिदा

ध्यान लगाना चाहिदा। रोजाना कसरत भी मने जो अगर करते हैं, रोजाना कसरत करते हैं तो से भी मने शांत सकारात्मक बनाए रखने च जैसे मददगार साबित होंगी है। इस दे अलावा अगर दिखा अगर बच्चों की गल कर न्याण की गल कर न्याणे मेहनत करते पढ़ते हैं पर जरूरी नहीं होंगे कि तिना मने मुताबक तिना जो सफलता मिले। तो अगर कुछ असफलता भी का भी सामना करना पवा है जिंद कोई असफल हुआ दे हैं तो तिसते भी सीख लेना चाहिए। कने ये नहीं है कि मतलब उदास हो इन्हें बही है या अजकल तो दिखा अगर हाँ अजकल की गल कर न्याणियों मतलब इतनी ज़्यादा तनाव हो गई है कि अगर मन मुताबक नंबर नहीं होते हैं, मन मुताबक सफलता नहीं मिलती है, मन मुताबक कोई नौकरी नहीं मिलती है तो बच्चे तो अपनी जान तक दे दिया दे हैं। तो ऐसा कदम बिल्कुल नहीं चुकना चाहिए। कने हमेशा जड़ा है अपनी मतलब असफलता ते सीख लेने वो ज़्यादा मेहनत करना चाहिए कने अगे बढ़ना चाहिए। छोटिया छोटिया जड़िया सफलता हैं खुशियां हैं अहाँ जो मिलती हैं रोजाना की जिंदगी तिना जो दिखते हुए अहाँ जो खुश रहना चाहिए कने अगे बढ़ना चाहिए। अगर हाँ खरा सोचते हैं ना तो इस तरह का दिखा माणुए की सेहता दे सेहता पर तो फर्क पौंदा ही है इसका खुशहाल अगर रहते हैं तो पर इस दे अलावा दिमागे पर भी इसका असर पौंदा है। इस दे फिकर फाका सोच विचार घटन नहीं होंगे कि जो कुछ हुआ था सब कुछ बढ़िया हुआ था कने अगे भी बढ़िया ही होना। अगर ऐसी सोच रखते हैं ना तो कोई बीमारी नहीं लगनी कने कोई फिकर फाका नहीं होना कोई सोच विचार नहीं होना कने मन भी जड़ा है सै खुश रहना। इसके अलावा इसते खुश रहते हैं तो सेहतमंद रहने कने कम भी ज़्यादा कर सकते फिर कम करने की क्षमता भी बढ़नी मेहनत करने की भी क्षमता बढ़नी पढ़ाई च भी ज़्यादा ध्यान जड़ा है सह लगना। खरी सोच आला माणू जड़ा है सह समाज ताएं भी एक बढ़िया उदाहरण बनता है सह अपने रिश्तियों भी खरी करी निभांदा है। ते आज दे समय च तनाव चिंता निराशा जड़ी है सह आम समस्या बनी हुई है। कोई अगर हाँ चार लोगों बहने कोई गलबात करते हैं तो ऐसा कोई माणू नहीं होंगे कि जड़ा बोलता हुआ कि हाँ जी मैं बड़ा खुश है सारे जो कोई ना कोई परेशानी जड़ी है घेरी बैठी हैं। ऐसे सकारात्मक सोच माणू दिमागी तौर पर शांति दिंदी है जिंदड़ी प्रति अहाँ सारे जो ही आशावादी बने रहना चाहिए जिससे माणुए की सेहत भी जड़ी है से ठीक रहती। अहाँ अगर नकारात्मक सोचने के बजाय खरी सोच रखते हैं तो इस ताए अहाँ खरिया आदत अपनाने की भी जरूरत है। खरिया किताबा साहित्य जड़ा है सै खरा पढ़ने की आदत बनाना चाहिए पर अजकल जड़ा है सै दिखा किताबा तो अजकल कोई पढ़ता ही नहीं है सिर्फ जड़ा सिलेबस दी किताबा होनी हैं सह ही बच्चे पढ़ते हैं बाकी तो कोई अखबार घट लोग पढ़ना शुरू करते क्योंकि सारिया खबर जड़ियाँ हूँ उससे सोशल मीडिया पर मिली आदि हैं कने इस दे अलावा मनोरंजन भी सारा सोशल मीडिया पर हो तो किताबा पढ़ने का तो हूँ रिवाज जड़ा है सा घट ही हुई है। तो ये आदत एक अहाँ जो बनाना चाहिए कि खरा साहित्य खरिया किताबा जड़ियाँ सह पढ़न अहाँ खरे सुलझे खरी संगत जड़ी है सह करन कने अगर चार लोगों बैठे हन ता बोलने दे बजाय ज़्यादा बोलने दे बजाय खरिया गल्लां सुनने दी आदत अहाँ जो होना चाहिए। दिखा बोलना तो हाँ सही है जड़ा है आंदा है पर अगर हाँ सामने आले सुनते हैं तो हाँ कुछ खरिया गल्लां खरिया चीज़ां जड़ियाँ हैं सै तिना ते सीखी सकते हैं। दूयां दी मदद करना समाज प्रति सकारात्मक तरीके ने दिखना भी सकारात्मक सोच जो बढ़ावा दिंदा है। जिहड़ी भी अहाँ जो जिंदड़ी च छोटी छोटिया सुख सहूलत खुशियाँ जड़ियाँ मिलदियाँ हैं तिना जो अहाँ सारे अमानत समझी ईश्वर का धन्यवादी होना चाहिए। बोलते हैं कि अगर कुछ नहीं भी मिला था तो तिस ताएं कोशिश जारी रखा पर जड़ा है तिस ताएं अहाँ जो ईश्वर का धन्यवाद जरूर करना चाहिए। बोलते हैं कि जवाना पर जड़ा है सह सरस्वती का वास हुंदा है तो हमेशा खरा बोलन कुसी जो बुरा नहीं बोलना कने मतलब सकारात्मक गल करनी है हमेशा क्योंकि जे कुछ भी हम बोलते हैं सह पूरा जरूर हो जाता है। तो इस करे खरा ही बोलन खरी सोच रखने वाले टबरे च दोस्तों च समाज च भी खुशी का माहौल बनाई न रखते सकारात्मक

सोच सफलता सुख संतोषी जिंदड़ी का आधार है। अगर अहाँ हर हालात च आशावादी सोच अपनान तो जिंदड़ी अहाँ की जड़ी है से आसान खुशहाल बन सकती है। सकारात्मक सोच जिंदड़ी की सारिया तो बड़ी शक्तियाँ चिक है। ये अहो मुश्किल हालात ने लड़ने सफलता हासिल करने खुशहाल जिंदड़ी जीने का रस्ता दसती है। तो श्रोते ये थी कुछ गलबात कि अहाँ अपनी जिंदगी सकारात्मक सोच जो कि करी अपना सकते हैं। हम चलते हैं मनोरंजन पासे। पेश है वंदना सूद दगाया ए लोक गीत।

श्रोतियों कुछ खास खास खबरें लगा दें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू होर ने अज शिमला च ऑकलैंड सुरंगा दे बखे बहुमंजिला कार पार्किंग का उद्घाटन किया। लगभग 7,60,00,000 रुपये की लागत ने बनी इस पार्किंग 145 गड्डियां तहें पार्किंग की सहूलियत मिलनी। मुख्यमंत्री होर ने बोलिया कि सरकार सुनियोजित शहरी विकास करने नागरिकों आधुनिक सहूलत मुहैया कराने तय प्रतिबद्ध है। तिना बोलिया कि शिमला शहर च गड्डियां बदने ते यातायात नियंत्रण पार्किंग प्रबंधन एक भयानक चुनौती के रूप च सामने आया है। अज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिहाड़ा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू होर ने शिमला च ओलंपिक मैराथन जो हरी झंडी दसी। मुख्यमंत्री आवास ओकओवर से शुरू हुई यह मैराथन सीटीओ रस्ते ते हुंदे होए इंदिरा गांधी खेल परिसर च खत्म हुई। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दुए चरण के तहत मुल्क के अलग अलग हिस्सों से चुने नौजवान अजकल लाहौल स्पीति जिले के अखे बखे के ग्रां च घूमना पुजे। इस कार्यक्रम का मकसद मुल्के दे सीमावर्ती इलाके की तरक्की पक्का करने के अलावा नौजवानों राष्ट्र निर्माण ने जोड़ना है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत बिलासपुर जिले के 22 चुने ग्रां च विकास के कामों तहें 20,00,000 रुपये मुहैया कराए जाने। उपायुक्त राहुल कुमार होरां ने अज एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित महकमों बोलिया कि ग्रां विकास योजना के निर्माण क्रियान्वयन च पंचायतों की पूरी मदद की जाए ताकि विकास के कम जड़े हैं से दिते गए टैमे च पूरे किए जा सकन। श्रोतियों ये थी कुछ खास खबर। कार्यक्रम के आखिर च हुण पेश है सुदर्शना की आवाज़ च ये लोक गीत।

उजिरा सादे ओलंपिक मूल्य दु प्रचार लेल शु तात छन तरिंग जुड़ हजार निजो त्रुईरिल दिखास ध्याड़ा खेलो भावना रसादे एकता उजावा रसादे मनासाई बिलेगी तो ते सादिरे दि खेल इच प्रयोगिता हैं हूँ हैं जगह पराधन मा कंपटीशन तो इच प्रतियोगिता तो दिशु भी रसादे दुनिया आऊँ शद शद देश दु मीरे इच सादे जोड़े ट्रिम लहेंज दी इच माध्यम मानेच दनी दि खेला दु दलते इच योजाई अनुशासन रसादे मेहनत ले सीखेचा तो ते ईमानदारी गुण रसा दे भत्ते दसा दे आदरो भावना तजिम छो गुणरल सीखे भी मुक्का दो भी खोसा।

जी गुरे किंजरेश तनी मूरण शुकी कूला शुकी पाणी नाए टीपू जियो। रूपी राणियों बलिदानों गाथा केंजी घुरे उजरियाई ने अदनी रेश तनी त हिंदू संगलो बारे गलगप्पा शैजलेक तो दोग हिंदू संस्कृति आऊँ शादे शादे रू पर तो दुर दुर कंजी जरूर जुंज दग ते सादिरे हिंदू स्वंगला छन हिंदू ए बौद्ध धर्मो झुल्लो असर खंड जी खोसा तो बत्ते जी सदी नी चले ग्यन जी रीति रिवाज दू परंपरा दू पालन लजा तो दुर त हर त्योहार रालिग मिलेग हिंद जी राज बाजे रसा दे मनाचा तो दोनी ध्यान रि नेस लसी गप्पा कि भाई भाईचारा ल बणिक ब्रवा त एक आऊ हिंदू कुर्मा रालिग मिलेग बणे पिमि एकता भावना ल आई फूल मजबूत छुआ ते सादे रे स्वंगलो हे नरमीद आऊ खमेश तो वेशभूषा गप्पा तो द्यू एनो इत शद पहचान तो स्वंगलो खमेश स्वंगलो भाते मीद थलजी आईने खास छु आईने प्यारे छु स्वंगलो मेज मिद पहनावा आऊँ हेंज पहनावा गप्पल हदन हेंजी छना कदर बास्कट शुआ छीरा रसा दे हेंज लेज दानी धीरा सा दे गौ ताड़का नंग नूर लेजा साजे पी हेंद स्वंगलो मेजमीर स्वंगलो हर क्वाज मोड़े फंक्शन आदि ब्याह रो शुई या दुरा उइल तीज ते हर शुईर स्वंगलो मीद देरती की आऊँ पारंपरिक खमेश तो वेशभूषा तो दुहेंजी ले जा तो दोनी ध्या छो तेया आऊँ तीज त्यौहार अर तो दुर ब्या रो रो तो दुर दुरती घेनर आऊँ हिंद स्वंगलो मीर तो दोनी गंग मीर तो दुर मेज मीर तो दुर भत्ते जी स्वंगलो पहनावा रसा दे टोबू झोलू उजल जरूर ले जा तो दोनी दी हिंदू संस्कृति पहचान शु कुन की आऊँ मस्सोयू ध्याड़ा शुआ तो दोता हिंद जी पोगो खामजल ले जा तो दोन तुई की वक्त है पुराना वक्त है तो आईने मस हिंद जी पोगो खामज लेस तो पोगो कदर लेस तो पोगो सुना लेस तो पर इर्तो की वक्त रि बेशक ही फो ढाशु जा ध्यान छो पोगो खाम लेज पर ताले हिंद जी कौन की भाई दी हिंदू पोगो खामज लेज मी आऊँ हिंदू तुई की रीति रिवाज आ तोई दू आईने रूठे तोई छरिकु जी दू पोगो खामज आऊँ हेनर स्वंगलो मीर तो दोनी हेंज बातेज हिंदू गुट्री चंपन जी चुम जी रंजी ते छक्कन लजा तो दोनी कुछ मना तो की वक्त ल पोगो आऊँ पोगो छुआ दू हेंजी स्वंगलो मीजी जरूर बनाचा तो दोनी चंपन जी रंजी ते छक्कन जरूर लजा तो दोनी तांत दी हिंदू गुट्री रानी बनेगी पोगो खमज चोरे शु भी रसा दे हिंदू संस्कृति पहचान ल शु आऊँ हेंजी पुराना वक्त रिबे कम लजा तो दोनी दू हे नर तो की वक्त ल पेशा मतोनी त छान स्वंगलो संस्कृति उते या रूप अदबारे केंद सादे गल का पशाज लेख तो दुख त स्वंगलो गीत घुरेर हिंदू बोली तो आऊँ हिंदू स्वंगलो गर्फी तो दीर बाते हिंदू संस्कृति अहम हिस्सा शुरू

ब्या रोशुई यादुरा तीज त्यौहार यादुरा उइले छा रूठे मुक्का ढोले बेंजो तालरी गर्फी घीत कुड़ी घुरेर छूंजी दी जिले हिंदू परंपरा दुबारे कंडरा तो दूर ते सादिरी छरिकुजी गीत घुरेरी स्वंगलो संस्कृति उ झलक ताफा घुरे उजरिया हिंदू धरोहर अदपाटी हेंजी नेजी तर्सदनी त दोरती गे दी गीत घुरे दी स्वंगलो मीदु जिंदगी उ सच्चाई ताफा त हेंदी लोक जीवन बारेल नेजिरी खोसा दोर चाना हिंद स्वंगलो गपाला दन देरती की तीज त्योहार अजल हिंदू संस्कृति उ विविधता दर्शाचा तो कंडरा तो चाहे बौद्ध धर्म र जुड़ेगी उत्सव शुर या दोरा हिंदू परंपरा रसादे जुड़ेगी उत्सव बत्ते जी रलेग मिलेगी बणेगी ताणेगी ईद उद साथ रसादे आईने गज गुमे राज बाजे रसादे ध्याछो तीज त्योहार शुई या दोरा उत्सव शुई मनाचा तो दोनी ध्याछो रूठे मुकारित भत्ते जी बणेग ताणेगी हिंदू छिये रीति रिवाजार तो दुर परंपरा तो दुर दो दु वहन लजी दुर मनागिते कुजमा आऊँ हैं जी दिगा पाल हदन की भत्ते जी आईने आनंद लेपचा तो दोनी त नगा पाल हदन हैं जी हिंदू स्वांगलो जस्तुंगो त हिंदू स्वांगलो लुआ रोड़ी तो आड़ू छमिक शुई या दोरा मारतू ख्वालक शुई दुए मार शुई या दोरा शुनाली तो गोक्तु छादी शुई या दोरा मन ने मार तो छगुचा ध्याचो उइलो पाठी पाठी जे मी तुमी मी आऊँ चीजर तो दुर हिंदुस्थानी आऊँ व्यंजनर तो दुर दीर आईने रूठे स्वादी शुभी रसादे आईने पौष्टिकल शुभी दीरा सादे स्वंगलो हिंदू आऊँ लोक गाथार तुदुर गोम्पर तुदुर सदमादु डेर हर तुदुर दीर भत्ते हिंदू सांस्कृतिक धरोहरो हिस्सा शुर छरिकुजी दी द्वेत दलते हेनर हिंदू इतिहास रसादे जुड़ेगी ब्राउदनी हिंदू रीति रिवाजा दसादे परंपरा दसादे मूल्य दसादे हेनर जुड़ेगी ब्राउदनी हिंदू दिए सांस्कृतिक धरोहर जी हेनर हिंदू परंपरा दसादे मूल्य दसादे हिंदू जड़ा दसा दे हैनर जोड़ेक तजा तो सादरे ना दी विश्व टोय गल गप्पा लतर थलमो करी गीत दिए कुछ तरफो की भई स्वंगलो संस्कृति विविधता परंपराए कुदरत रसा दे तालमेलो इच आईन ने रूठे मिसाल छू खर को जमाना दी दोर अरल देरती की मीजी एना दू सांस्कृतिक पहचान बनागी बचागी तस्ता दुर संजोगी तस्ता दुर आऊ अंजा पीढ़ियों थाजिल प्रेरणा रनरा गपाशु चेरिको जी स्वंगलो मीदु तुईजी तेया कुदरती चुनौतीरल शू जातो त दोजी खरी बर्दो सामना लजिल एना दु सांस्कृतिक विरासत बचागी तस्ता दुर तांत खर कोई पीढ़ी उल फर्ज बनेपा कि स्वंगलो संस्कृति स्वंगलो हिंदू भाषा शुई बोली तो हिंदू परंपरा तो दुर दो दुबारे नेजी रसा दे संजोगी तजमी बचागी तजमी कोशिश हिंदी लही जू शू कुछ मना दी ध्याड़ो बे ध्याड़ा लेजी लेगी खर कोई वक्त रसा दे तू खनी बढ़ेगी ल हिंदी हिंदू सांस्कृतिक पहचान पेशी जूश मश्त तुग हिंदी हिंदू विरासतो आदर लज्जे अंजा पीढ़ीर तचे दी दीये रूपरी दीये रूठे रूपरी पिपिले तरची गप्पा दिए कि भई हिंदू संस्कृति हिंदू पहचान छू हिंदू आऊँ कुमा जड़ा नी हिंदी अबिल शादे शु भी जूश मश्त तो आऊँ अंजा पीढ़ी तो दो थल जिले हिंदी हिंदू संस्कृति बचागी तज जू शू छेरी कुछ हिंदू स्वंगलो संस्कृति आईने समृद्ध तो रूठे तो आई चुई गीत सुशीलाए सादिदू सक्सी।

जी, गीत के जरिए तनी गो तू भी चंग यू देश या होला हो ग्यू से मलेती स्वंगलंग हो। इमी ना खास खास खबर अर्केंद थल जी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इतो योगले राष्ट्रपति भवना दूसरा नागरिक अलंकरण समारोह री पद्म पुरस्कार रमदो। दिरी जुड़ पद्म विभूषण निज पद्म भूषण निंजो सत्रुई पद्म श्री रसादे कुल शुम निजो ना पद्म अलंकरण राशा योदो। त गणतंत्र दिवस पूर्व संध्यारी केंद्र सरकारे साल जुड़ हजार निजो त्रुयु थाजी ना पद्म विभूषण रसादे राउटोई निजो सेदी पद्म अलंकरण दू घोषणा लते। पद्म अलंकरण देशो सर्वोच्च नागरिक सम्मान छु। तांदुर्तिगे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जयंती री तोग दोबी श्रद्धांजलि राशाइलजा। शिमला रिज मैदान शुजी कार्यक्रम री राज्यपाल कविंदर गुप्ता है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखुई श्रद्धा उर दोबी चढ़ाक दोगु। तदिमुकारी विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार, पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह अरसादे उई नेतारल दोरती मौजूद तो इर। त श्रद्धांजलि समारोह री प्रदेश तरक्की री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह योगदान हिद लसाइल जा। तांधुरा दोरती ये खबर तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखुई तो शिमला शहरा ओकलैंड सुरुंगो कचरे तेया पूर्यू आऊं।

कार पार्किंग तो दो लोकार्पण लतो फोमे निज करोड़ शुम निज लाख टांगो लागत रनी बनेगी दी परिसरा राउटोई निंजो गा गाडी थालजी पार्किंग हो सुविधा राशयो दो मुख्यमंत्री को तो की शिमला शहरा गाडी तो तादाद आयने तेजी रसादे बेस पेपर मा यातायात नियंत्रण रसादे पार्किंग प्रबंधन गंभीर चुनौती बनेगी जी तो छाना अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस शु दिमुखारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखुई शिमला नी ओलंपिक मैराथन अभी हरी झंडी कंज दे तो मुख्यमंत्री आवास ओकोबर एंड सुसदी मैराथन सीटीओ अमजी शुजी इंदिरा गांधी खेल परिसरा पूरे दी शुजी जे त ना इफो गलगप्पा आयुष्मान भारत योजना पाठी त दी भारत सरकारो इच अहम स्वास्थ्य योजना शु छो मकसद गरीब टबरा दी रूठे स्वास्थ्य सुविधा रंजिशु दी योजना साल जुड़ हजार सारे ऋतु शिशु दी योजना तहत पात्र परिवार तो दो दी टेदिर सहित अस्पताल भर्ती शुभ परमा इलाज थलजी स्वास्थ्य बीमा सुविधा और सुविधा तो दू राशयुआ साल जुड़ हजार निजो पीऊ थल दिरी शुम निजो सा साले दी बेजिल मास उम्रो भत्ते सेना मेरल दिरी शामिल लसाइल जा दी आयुष्मान वे वंदना कार्डो माध्यमे लागू शुजा त दी योजना अहम भाग शु आऊँ गपाला दिन भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दी आयुष्मान भारत योजनाओं अहम भाग शु योजना चलाची मकसद तो कि भाई गरीब मी दू टोई महंगे इलाज वजह से पड़े चा आर्थिक आऊँ भार तो दू ढा ले भत्ते मीर तचे रूठे स्वास्थ्य सेवार भी फिले अस्पताल दू इलाज और सुविधा योजले दी योजना खासियत तो गपाला निन सहित आऊँ पात्र परिवार तो दूर दो दी ते सीमा तचे स्वास्थ्य उपचारों सुविधा खोसी दिरी तेया मदम गंभीर टेकू दू इलाज शामिल लस्तो आऊँ लाभार्थी तो दूर दोजी आऊँ ते लसी सरकारी निजी अस्पताल तो दूर एना दू इलाज दौरती कराची तरसी दी योजनाएं देशो कमजोर वर्ग थलजी स्वास्थ्य सुरक्षा रनरा छन आयुष्मान भारत योजनाएं देशो तेया गरीब परिवार दि वक्त टोई इलाज खोजरी मदद रनरा दी योजना मकसद स्वस्थ भारत निर्माण री साथ रन रिशु दी योजना भारत स्वास्थ्य सेवा आईफोल हिंदू देशा यो जे मजबूत बना चिम दिशा री इच हैं जी अहम कदम मानेस तनी दी योजना फायदा लेप चिम थल जी आऊँ लाभार्थी तो दोर दो दी सूची रे एना दो मीन खंड्री में जो लेप दो थल दोर पात्रता जान चेगीते दो दी एना दो आऊँ पा दे तो दोर दोर रंड लेप दो छाना आधार कार्ड तो मोबाइल नंबर तो राशन कार्ड तो उइल पहचान आ रसा दे जुड़ेगी दस्तावेजर दो दी छक्कन लेप दो थल कचरे की आऊँ आयुष्मान आरा जुड़ेगी अस्पताल आली इलजी दोस कार्ड बनाची तरसी या दुरा सी एस सी केंद्र इलजी तेल तो जी बनाच तरसी दी योजना थल जी पा तर शुभे परमा ई के वाई सी पूरे लाजी थल कार्ड जारी लसा यो दो ध्यारी इलाज थल जी आयुष्मान कार्ड रेंजा केनर योजना रा जुड़ेगी अस्पताल ई भी तरफ होनी अस्पताल तो सी आयुष्मान मित्रेल केंद्र दी प्रक्रिया री मदद ले कार्ड अस्पताल इलाज दोतल पहचाने योजना फायदा लेप चिम थल जी शुभी इलाजो खर्चो गपालन से पात्र लाभार्थी दी इलाजो खर्च योजना नियम मुताबिक अस्पताल कैशलेस तरीका ही खुशी तरसी तो गप्पा दिए कि भाई पात्र लाभार्थी परिवार अभी गा लखटंग तचेव स्वास्थ्य बीमा कवर दी योजना तहत राशयुआ धीरा सादे थलमु करें रेजोनी सुखता सुसक्सी दी गीत

चली। जी गीत केन्द्रेष्टनी राजा घेपन सिंगा मालाणा चलिए छप्पन गुड़ लौनी हैं जी राजा घेवावी धीरा सादे तो की सोंगलो प्रोग्राम उल वक्त यो सैलजा ले पुगी जाजत राम राम जुले।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान श्रोताओं को हमारा
1: नमस्कार।
0: इस अंक में मैं हूँ राजेंद्र।
1: और मैं हूँ अशोक। राजेंद्र जी कैसे हैं आप?
0: अशोक जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और हम आशा करते हैं कि हमारे किसान और बागवान श्रोता भी ठीक ठाक होंगे। इस समय हमारा कार्यक्रम ध्यान से सुन रहे होंगे क्योंकि अशोक जी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हर रोज एक महत्वपूर्ण विषय कृषि बागवानी और पशुधन से संबंधित लेकर आते हैं।
1: बिल्कुल जी, सभी तरह की जानकारी जो है इस कार्यक्रम में हम किसानों को देते हैं, साथ ही साथ उनका मनोरंजन भी इस कार्यक्रम में हम करवाते हैं। और थोड़ा सा किसान में हम आपको यही बताना चाहेंगे कि इन दिनों देखो गर्मियों का मौसम चला है।
0: जी बिल्कुल।
1: तो गर्मियों के मौसम में किसान भाई हम आपसे निवेदन यही करना चाहेंगे कि देखो दिन के समय धूप ज्यादा होती है, सुबह शाम जो अपने काम काज को निपटाएं, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, अपने पशुधन का भी ध्यान रखें, उनके लिए अच्छे इन दिनों जो है घास मिश्रण का प्रयोग अगर आप करते हैं तो अच्छा दुग्ध उत्पादन वो आपको दे पाते हैं। साथ ही साथ इन दिनों जो हमारे किसानों के खेतों में सब्जियां लगी होती है उनमें जो है किसानों से हम यही निवेदन करना चाहेंगे, क्योंकि तापमान काफी ज्यादा बढ़ जाता है तो उसमें जो है इन दिनों आप सिंचाई का अच्छा प्रबंधन करें, उसमें मल्चिंग बिछाएं ताकि आपकी सिंचाई जो है पानी जो है काफी लंबे समय तक इन पौधों को जो है जीवित रख सके। तो इन सब बातों का जो है किसान आप ध्यान रखें। राजेंद्र जी जहां तक बात है कार्यक्रम की, तो कार्यक्रम में क्या कुछ जानकारी हम किसानों को इस कार्यक्रम में देंगे?
0: जी, काम की बातों में बात करेंगे, दुधारू पशु का समुचित प्रबंधन के बारे में करवाएंगे, मनोरंजन पहाड़ी लोकगीतों से, और जानकारीपूर्ण बातचीत का विषय रहेगा स्ट्रॉबेरी की उन्नत खेती।
1: जी, तो राजेंद्र जी कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहेंगे काम की बातों से, और काम की बातों के अंतर्गत जैसा कि आपने बताया कि दुधारू पशुओं का समुचित प्रबंधन जो है हमारा किसान किस तरह से कर सकता है। दुधारू पशु आपके लिए काफी ज्यादा जो है फायदेमंद साबित हो सकते हैं

0: अगर आप उनका जो है समुचित अच्छे तरीके से प्रबंधन करते हैं। किन किन खास बातों का इसमें आप ध्यान रखें और कौन कौन सी व्यवस्था जो है मुख्य तौर पर आपको करनी होती है। थोड़ा सा पहला हम आपको यही बताना चाहेंगे कि डेयरी एवं पशुपालन प्राचीन काल से ही हमारे देश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के अभिन्न अंग रहे हैं। ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में डेयरी और पशुपालन को सभी दर्जे के कृषकों के द्वारा निरंतर अपनाया जा रहा है और ये व्यवस्था पशुपालन बेरोजगारी उद्योग में विस्तार की असीम संभावना भी रखती है।
1: जी हाँ अशोक जी, देश में दूध उत्पादन बढ़ाने और कृषकों को डेयरी व्यवसाय से आमदनी बढ़ाने के लिए ये जरूरी है कि डेयरी पशुपालन का प्रबंधन वैज्ञानिक तरीकों से अपनाएं और प्रति पशु दुग्ध उत्पादन और उत्पादन क्षमता पर भी ध्यान दिया जाए। दूध उत्पादन व्यवसाय के अशोक जी चार आधार स्तंभ है
0: जी।
1: समुचित नस्ल का चुनाव करना, प्रजनन प्रबंध करना, समुचित आहार प्रबंधन, समुचित स्वास्थ्य प्रबंधन और समुचित रखरखाव और उचित आवास प्रबंधन। अशोक जी, पशु प्रबंधन के प्रजनन प्रबंध का विशेष महत्व है। अधिक उत्पादन लेने के लिए उन्नत नस्ल की गाय या भैंस रखने के साथ साथ अन्य मानदंड जैसे गर्भधारण का समय, प्रथम ब्यांत का समय, ब्याहने के बाद दोबारा गर्भधारण काल का समय, दो ब्यांतों के बीच का अंतराल कुल उत्पाद, उम्र भर के कुल ब्यांतों की संख्या, असमय गर्भ का गिरना, मदहीनता की स्थिति, जेर का रुकना, इस पर पैनी नजर रखनी जरूरी रहती है।
0: बिल्कुल जी सर, थोड़ा सा हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि प्रजनन संबंधी कुछ एक आवश्यक मापदंड भी आते हैं। मापदंडों की अगर बात करें तो गर्भधारण योग्य उम्र की अगर बात करें तो संकर किस्मों में 18 से 21 माह इसके लिए अच्छी रहती है। देसी गाय में 27 से 30 माह और भैंस में 30 से 33 माह इसके लिए उपयुक्त रहती है। प्रथम व्यांत के उपरांत के समय उम्र की अगर बात करें तो संकर किस्मों में 27 से 30 माह, देसी गाय में 36 से 39 माह, भैंस में 40 से 43 माह उपयुक्त रहती है। व्यांत उपरांत गर्भधारण काल की अगर बात करें तो 60 से 90 दिन संकर गाय की किस्मों में, देसी गाय में 90 से 150 दिन, भैंसों में 90 से 150 दिन ये रहेगी। साथ ही साथ दो व्यांतों के बीच के अंतराल की अगर बात करें तो 13 से 14 माह संकर किस्मों के लिए, 15 से 18 माह देसी गाय के लिए और 15 से 18 माह ही भैंस के लिए रहता है। गर्भ के गिरने की अगर बात करें तो संकर किस्मों में 1% ये संभावना रहती है, देसी गाय में 1% और भैंस में 1% ये रहती है।
1: जी हाँ अशोक जी, अगर बात करें आहार प्रबंधन की तो दुधारू पशुओं का आहार प्रबंधन डेयरी व्यवसाय की धुरी है। पशुपालन व्यवसाय का 60-70% खर्चा पशु के खाने पीने पर होता है। समुचित उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए पशुओं को समुचित मात्रा में संतुलित आहार देना जरूरी रहता है और ये भी अति आवश्यक है कि पशु को उसकी ज़रूरत के अनुसार ऊर्जा युक्त, प्रोटीन युक्त, मिनरल लवण, आवश्यक विटामिन युक्त संतुलित आहार समुचित मात्रा में दिया जाए। समुचित वृद्धि दर सुनिश्चित करने के लिए बछड़ियों के आहार में हरे चारे के साथ 1 किलो दाना और 20 से 25 ग्राम मिनरल लवण उपलब्ध करवाए जाने चाहिए।
0: साथ ही साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि दूध उत्पादन का सबसे सस्ता विकल्प पर्याप्त मात्रा में हरे चारे की उपलब्धता करना होता है और पर्याप्त मात्रा में हरे चारे को शरीर की आवश्यकताओं के अतिरिक्त 6 से 7 किलो तक दूध पैदा किया जा सकता है। पर्याप्त मात्रा में हरा चारा उपलब्ध न होने की दिशा में सूखे चारे के साथ दाने का समुचित समावेश किया जाना आवश्यक रहता है। अधिक उत्पादन पशुओं को शारीरिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त उनके आहार के 2.5 किलो दुग्ध उत्पादन पर 1 किलो दाने का समावेश आपको करना होता है। साथ ही साथ किसानों, ये भी हम आपको बताना चाहेंगे कि 20 किलो प्रतिदिन के अधिक दूध देने वाले पशुओं में अच्छे चारे और दाने के अतिरिक्त 200 से 250 ग्राम प्रतिदिन तेल की भी सिफारिश की जाती है। ऐसे पशुओं में 60 से 70 ग्राम उच्च कोटि का मिनरल लवण मिश्रण प्रतिदिन दिया जाना भी आवश्यक रहता है।
1: जी हाँ अशोक जी, ब्याहने के 1.5 महीने पहले से और 1.5 महीने बाद पशु का विशेष ध्यान रखना जरूरी रहता है। यदि इस अवस्था में पशु बीमार हो और उसका पालन पोषण उचित नहीं है तो पूरी ब्यांत पर इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। ब्यांत की अंतिम अवस्था में पशुओं को उसकी शारीरिक जरूरत के अनुसार 1 से 1.5 किलो अतिरिक्त दाना प्रतिदिन देना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ऐसा करने से ब्यांत के बाद उपाचय जन्म समस्याओं की संभावना कम हो जाती है।
0: जैक्सन, थोड़ा सा हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि स्वास्थ्य प्रबंधन की जब बात आती है तो ब्याहने के दौरान पशुओं का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।

0: सामान्य रूप से पशु के दर्द शुरू होने से 2 से 2.5 घंटे में ब्याह जाते हैं। ब्याहने के दौरान पशु पर दूर से नजर रखनी चाहिए और उनको अनावश्यक परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आवश्यक देर 4 से 5 घंटे से अधिक हो या समय लग रहा हो तो योग्य पशु चिकित्सक की देखरेख में बच्चे को निकालना चाहिए। ब्याहने के 4 से 6 घंटे में पशु जेर गिरा देता है, लेकिन अगर पशु ने 8 से 10 घंटे तक जेर ना निकाली हो तो उसे पशु चिकित्सक की देखरेख में निकलवाएं। खीस 5 दिन तक एवं दूध पिलाते रहें और 1 माह के बच्चे को धीरे धीरे हरा पत्तीदार चारा एवं खाने की आदत डालनी चाहिए।
1: बच्चे को 3 माह तक दूध पिलाना चाहिए और जब बच्चा दाना और चारा पर्याप्त मात्रा में खाने लगे तो उसे दूध से हटा देना चाहिए। बच्चे की वृद्धि दर 400 से 500 ग्राम प्रतिदिन सुनिश्चित करनी चाहिए और बच्चे को पेट के कीड़े और बाह्य परजीवियों की उचित अंतराल पर दवा देते रहनी चाहिए। दुधारू पशु में थनेला भी एक प्रमुख बीमारी है और इस रोग की वजह से पशुपालकों को भारी नुकसान सहना पड़ता है। थनेला रोग के प्रबंधन के लिए पशुशाला के फर्श आपको साफ रखने हैं। दोहन के बाद थनों को आयोडीन और क्लोरीन युक्त रोगाणुनाशक घोल में डुबोना चाहिए। पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए उनका समय समय पर टीकाकरण, आंतरिक और बाह्य परजीवियों से बचाव के लिए उत्तम आहार प्रबंधन के अतिरिक्त डेयरी फार्म की नियमित सफाई, गोबर और गौमूत्र की निकासी और पशुओं के आसपास के संक्रमण और बाहर से बीमारियों के संक्रमण को आने से रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए।
0: बिल्कुल जी खान, थोड़ा सा हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि बीमारियों से बचाव हेतु पशुओं में वर्ष में 2 बार खुरपका मुंहपका का टीकाकरण मार्च अप्रैल और सितंबर अक्टूबर में करवाएं। बरसात शुरू होने से पहले पशुओं को गलघोंटू, लंगड़ा बुखार, एंथ्रेक्स का टीकाकरण भी अवश्य ही करवा लें। दुधारू पशुओं में साल में 2 बार जुलाई से अगस्त और जनवरी से फरवरी में पेट के कीड़ों की खुराक भी जो है आप अवश्य ही दे लें। तो किसान भाई और बहनों, ये तो थी कुछ एक जानकारी दुधारू पशुओं के समुचित प्रबंधन आप किस तरह से कर सकते हैं और किस तरह से इसमें जो है आपको देखरेख रखनी होती है। राजेंद्र जी, अब कार्यक्रम में समय हो चला है किसानों को एक लोकगीत सुनाने का। तो किसान भाई आइए सुनते हैं कृष्णलाल सहगल की आवाज में ये लोकगीत।

0: अभी आपने सुना ये प्यारा सा लोकगीत। अब कार्यक्रम में समय हो चला है जानकारीपूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण सुनने का, जिसका विषय है स्ट्रॉबेरी की उन्नत खेती। डॉक्टर कल्लोल कुमार प्रमाणिक से बातचीत कर रहे हैं हरी सिंह चंदेल।
1: किसान श्रोताओं नमस्कार। किसान भाइयों, समय समय पर हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बातचीत करते हैं विषय विशेषज्ञ से। आज का हमारा विषय है स्ट्रॉबेरी की उन्नत खेती। इस विषय पे हमें ज्या जानकारी देंगे डॉक्टर कल्लोल कुमार प्रमाणिक जी। तो डॉक्टर कल्लोल कुमार प्रमाणिक जी, आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए हम आपका स्वागत करते हैं।
2: नमस्कार।
1: किसान भाइयों, आज का हमारा विषय है स्ट्रॉबेरी की उन्नत खेती कैसे करें। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आजकल स्ट्रॉबेरी जो है बाजार में काफी देखने को मिल रही है, तो मैं हिमाचल की अगर बात करूं तो स्ट्रॉबेरी की खेती की हिमाचल में क्या संभावनाएं हैं?
2: देखिए, बहुत अच्छा सवाल आप जो पूछा। ये आजकल जो पर्यटक जो शिमला में भरा हो चुका है, स्ट्रॉबेरी आपको खाने के लिए मिल रहा है। स्ट्रॉबेरी ऐसे एक फल है जो देखने से खाने का सबका ही मन करेगा, खाली
1: जी
2: बड़ा का नहीं है, छोटा छोटा बच्चा जो स्ट्रॉबेरी देखने के बाद इसको खाने के लिए दिल करता है। जो आप सवाल पूछा, देखिए, स्ट्रॉबेरी ऐसे एक पौधे है, वो कोई भी जलवायु में आप इसको उगा सकते हो। देखेंगे जो पहाड़ी क्षेत्र से लेकर मैदानी क्षेत्र, रेताली क्षेत्र, जैसे कि आपका इसराइल जैसे क्षेत्र है रेताली, तो वहाँ भी स्ट्रॉबेरी उगाया जाता है, लेकिन वहाँ जो सिंचाई का पद्धति है ड्रिप मेथड के थ्रू उसको उगाया जा रहा है।
1: जी क्योंकि हमारा जो प्रदेश है वो ज़्यादातर वर्षा आधारित क्षेत्र है, तो मैं हिमाचल की बात करूँ तो किन किन क्षेत्रों में हमारे जो बागवान भाई बहन है जो स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाहते हैं, तो किन किन
2: हाँ,
1: क्षेत्रों में स्ट्रॉबेरी की खेती कर सकते हैं?
2: देखिए, मैं पहले ही बोला जी, स्ट्रॉबेरी ऊंचाई वाला क्षेत्र से लेकर मैदानी क्षेत्र, कहीं भी जगह आप स्ट्रॉबेरी को खेती कर सकता है।
1: जी
2: इसके लिए कोई अलग से कोई ज़रूरत पड़ता है जी, यहाँ कर सकता है या नहीं कर सकता है। क्योंकि एक चीज़ खाली ध्यान रखना पड़ेगा, जो स्ट्रॉबेरी जो है इसका जो जड़ ये ज़्यादा गहरा तक नहीं जाता है, और इसको जो है थोड़ा आपका जो इरिगेशन जो
1: जी
2: पानी का सिंचाई का थोड़ा ज़रूरत पड़ता है। जहाँ पर नमी बना रहता है वहाँ पर स्ट्रॉबेरी आसानी से आपको उगा सकते हैं। और स्ट्रॉबेरी ऐसे एक पौधे है, खाली आपका ज़मीन पर नहीं, आप जहाँ चाहेंगे इसको गमला में खेती करिए, इसको आप आपके आजकल जो हाइड्रोपोनिक्स एरोपोनिक्स सिस्टम आ रहा है,
1: जी
2: जो सॉयल लेस मतलब मिट्टी बिना इसको खेती, तो ये सब चीज़ आजकल आप स्ट्रॉबेरी ऐसे क्रॉप है, ये सब जगह में उगा सकते हैं और सब कंडीशन में भी इसको उगाए जा सकते हैं। इसको खेती करने के लिए थोड़ा नमी का नमीपन का ज़रूरत पड़ेगा। जैसे कि आप ज़मीन में खेती कर रहे हैं, ये सूखापन हो जाएगा तो इसका जड़ ज़्यादा गहरा तक नहीं है,

0: तो नीचे से आपको उसको मॉइस्चर नहीं ले सकता है, इसलिए आपको इरिगेशन जो नमीपन जरूरत पड़ेगा।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, स्ट्रॉबेरी की खेती करने के लिए बागवान भाई को किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा?
0: देखिए, स्ट्रॉबेरी खेती करने के लिए पहले तो खैर हम आजकल जो बोल रहे हैं जी, क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल,
1: जी
0: मतलब आपका जो पौधे ये अच्छा तरह पौधे होना चाहिए। तो पहले आपको पौधे कहाँ से मिलेगा ये ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद होगा जी कौन से किस्में आप उगाना चाहेंगे, क्योंकि हमारा एक क्षेत्र कर दे दीजिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्षेत्र केंद्र शिमला में हमारा 100 से अधिक किस्में उपलब्ध है हमारा पास। लेकिन वो क्या क्या है जो अलग अलग परिस्थिति के लिए, जैसे कि कोई चाहेंगे खाली स्ट्रॉबेरी टेबल पर्पस में, खाली
1: जी
0: खाने के लिए, फ्रेश खाने के लिए, उसके लिए कोई चाहेंगे जो स्ट्रॉबेरी को हम प्रोसेसिंग करेंगे, ठीक है
1: जी
0: ना, जैम जेली इसी तरह कुछ बनाएंगे, कोई जगह में कैंडी बनाते हैं। आपको पता ही है जो स्ट्रॉबेरी जो फ्लेवर है ना, इसका इतना यूज होता है, कोई भी साइंस नहीं है जो स्ट्रॉबेरी को यूज नहीं कर रहा है। आप मेडिकल साइंस से
1: जी
0: लेकर आप कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री देखिए, आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री देखिए,
1: जी
0: न्यूट्रिशिकल, मतलब कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर को यूज नहीं कर रहा है। तो आप देखेंगे जो इसी तरह एक तो है जो क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, दूसरा मैं बोला जी इसका जड़ ज़्यादा गहरे तक नहीं जाता है,
1: जी
0: इसलिए जमीन जब आपको खेती करने के लिए जो मिट्टी को भुरभुरा करना पड़ेगा हल चलाकर, ये ध्यान रखिए। तीसरा है जो आप मिट्टी में नहीं करेंगे तो फिर दूसरा जो सॉइललेस कल्टीवेशन मैं बोला, जो आप आजकल कोकोपीट आ रहा है, भार्मिकोलाइट, पारलाइट, बहुत सारे सॉइललेस मीडिया आ रहा है, उसमें भी उगा जा सकता है। इवेन आजकल अर्बन हॉर्टिकल्चर जो हम बोलते हैं जो भाई लोग जो गांव छोड़ के जो मकान सिटी में कर रहे हैं, तो वो भी उनके पास जो भी स्पेस होंगे, जैसे छत पे हो,
1: जी
0: बरंदा में हो, तो वहाँ पर गमला में भी स्ट्रॉबेरी कर सकते हैं। आपको मैं बोला हाइड्रोपोनिक्स, फिर एरोपोनिक्स सिस्टम में भी स्ट्रॉबेरी उगाई जा सकता है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो कौन से परिस्थिति में। और पहले मैं बोला जी इसके लिए पानी का बहुत ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि बिना पानी में क्या रहता है, इसका जो जड़ ज़्यादा गहर तक नहीं जाता है तो सूख जाता है पौधे। पौधे जब थोड़ा विल्टिंग में आ जाता है फिर क्या होता है, इसका जो फ्रूट साइज भी कम हो जाता है और ज़्यादा उसको उपज भी ज़्यादा नहीं होता है। तो ये सब चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा।
1: तो डॉक्टर साहब, ये जो स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाहते हैं, तो हमारे बागवान भाई पौधे जो है कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं?
0: देखिए, पहले भी मैं बोला पौधे एक तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्षेत्र के तो शिमला में से उपलब्ध कर सकते हैं। हमारा जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी व एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जहाँ पर स्ट्रॉबेरी के ऊपर शोध का चल रहा है, तो वहाँ से भी ले सकते हैं। कुछ रजिस्टर्ड फार्मर्स जो है जो कुछ किस्में को विकसित करते हैं वहाँ से उपलब्ध कर सकते हैं। रजिस्टर्ड नर्सरी जहाँ से होंगे, रजिस्टर्ड नर्सरी इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई भी पौधे तो दे सकते हैं,
1: जी
0: लेकिन आप जो किस्में मांगेंगे वो किस्में देने के लिए रजिस्टर्ड नर्सरी के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी जो है जो टिश्यू कल्चर लैब, आजकल टिश्यू कल्चर लैब जो स्ट्रॉबेरी में जो वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल आजकल हम बोलते हैं ना,
1: जी
0: तो उसके लिए टिश्यू कल्चर लैब से उगाया गया जो स्ट्रॉबेरी पौधे आ जाते हैं, तो उसको लगाने के लिए आपका उसको बेहतर रहेगा।
1: जी तो डॉक्टर साहब, कोई भी कार्य हो, अगर उसका पहले प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया जाए, तो आने वाले समय में उसको समस्याएं कम आएंगी। तो क्या आपके विभाग द्वारा कोई प्रशिक्षण कार्य भी दिया जाता है स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए?
0: हाँ, ये भी अच्छा सवाल आप पूछा। ये देखिए, कोई भी जो फार्मर्स पहले कोई खेती करना चाहेंगे उसका थोड़ा प्रशिक्षण होना बहुत
1: जी
0: जरूरी है। देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्षेत्र केंद्र शिमला जो है वो हर किस्म का ट्रेनिंग देते हैं, मतलब शीतोष्ण फलों में हर फलों के ऊपर ट्रेनिंग दे देते हैं। तो स्ट्रॉबेरी का खेती करने के लिए इनका भी प्रशिक्षण हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के तरफ से दे देते हैं। और भी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और भी कोलाबोरेशन के साथ, जैसे कि आपका नेशनल हॉर्टिकल्चरल बोर्ड के साथ, डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर के साथ, कभी कभी अंबुजा फाउंडेशन है उनके साथ मिलके, फिर नाबार्ड से, फिर कभी यूनिवर्सिटी प्रशिक्षण भी दे देते हैं। तो इसी तरह प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारा पास उपलब्ध है।
1: तो जो ये प्रशिक्षण कार्यक्रम है, ये निःशुल्क होता है या कुछ अनुदान जो है किसान या बागवान द्वारा दिया जाएगा?
0: देखिए, हमारा पास कोई भी आके प्रशिक्षण ले सकते हैं। देखिए, हमारा जब चलता है फार्म पे, कोई भी आके देख के उसी टाइम में जो कार्यक्रम चल रहा है उसके ऊपर प्रशिक्षण ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ शुल्क देने की जरूरत नहीं पड़ता है। और एक चीज़ बोला, जो कोलाबोरेशन में होता है उस

0: के लिए भी बागवान भाइयों को कोई शुल्क देने की जरूरत नहीं है, वो लोग जो कोलाबोरेटर है वो लोग उसका पैसा देते हैं, तो इसलिए बागवान भाइयों को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है।
1: जी डॉक्टर साहब, आजकल स्ट्रॉबेरी बाजार में काफ़ी देखने को मिल रही है, तो बात करूं मैं इसके समय की, तो इसकी खेती करने का उचित समय कौन सा रहेगा जिससे हमारे बागवान भाई अधिक मुनाफा जो है कमा सके स्ट्रॉबेरी की खेती करके?
0: देखिए, मैं पहले एक चीज़ आपको बता चुका हूँ, जो स्ट्रॉबेरी का खेती पहाड़ी क्षेत्र से लेकर मैदानी क्षेत्र, रेताली क्षेत्र, जो है वो इसराइल जैसे क्षेत्रों में भी हो रहा है, जहाँ पर ड्रिप
1: जी
0: इरिगेशन पद्धति में। तो आप अलग अलग जगह के लिए अलग अलग इसका टाइमिंग्स होता है, जो कब लगाना चाहिए। जैसे कि जनरली पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात के बाद ही इसको प्लांटिंग शुरू कर देते हैं, आपको जनरली 15 अक्टूबर तक इसको प्लांटिंग कर देते हैं। मैदानी क्षेत्रों में भी 15 अक्टूबर तक, हम बोलते हैं जो अक्टूबर लास्ट तक भी इसको प्लांटिंग कंप्लीट कर दे, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पर बर्फ गिरते हैं,
1: जी
0: आपको पता ही है जो नवम्बर के बाद फिर तापमान बहुत कम हो जाता है, फिर आपका बर्फ आ जाता है, तो
1: जी
0: बर्फ के बाद फरवरी मार्च के बाद फिर इसका ग्रोथ लेते हैं। तो आपको एस्टेब्लिशमेंट के लिए हम बोलते हैं जी अक्टूबर से पहले पहले ही पहाड़ी क्षेत्रों में कंप्लीट कर दे प्लांटिंग, और मैदानी क्षेत्रों में अक्टूबर तक आप कर सकते हैं, इवन फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक इसको प्लांटिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में आपको दिसंबर एंड जनवरी से ही फल देना शुरू कर देंगे स्ट्रॉबेरी, और जो पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पर बर्फ हटने के बाद उसका ग्रोथ आएगा, फिर मार्च के एंड अप्रैल से इसको फल देना शुरू कर देंगे। तो ये सब टाइमिंग्स आपको कौन से एरिया में आप स्ट्रॉबेरी लगा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा।
1: तो डॉक्टर साहब, स्ट्रॉबेरी की खेती करने के लिए हमारे किसान या बागवान भाई किन किन समस्याओं का सामना कर सकते हैं और कैसे उनसे बचा जा सकता है?
0: देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा पूछा। पहले भी मैं बोल चुका हूँ जो स्ट्रॉबेरी बहुत शैलो रूटेड क्रॉप है, मतलब
1: जी
0: ज़्यादा इसका जड़ ज़्यादा गहरे तक नहीं जाता है, तो इसको बचाने के लिए, नमीपन के बनाने के लिए आपको कोई मल्चिंग, देखिए स्ट्रॉबेरी नाम भी हुआ, इसका जो फल पकता है ना
1: जी
0: इसके नीचे कुछ स्ट्रॉ जैसे कि पैडी स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, इसी तरह दे देते हैं, तो उसके हिसाब से इसका नाम स्ट्रॉबेरी हुआ। तो एक तो है इसका नमीपन बनाने के लिए आपको मल्चिंग, आजकल प्लास्टिक मल्चिंग भी आ रहा है, जैसे ब्लैक पॉलीथिन सीट आ रहा है, उसको लेकर आपका खरपतवार भी कंट्रोल हो जाता है और आपका उसके नमीपन भी बना रहता है। और कोई भी घास जो स्ट्रॉबेरी खेती जहाँ पर हो रहे खेतों में एक घास का एक लेयर बना दिया, तो उसमें भी आपका नमीपन बना रहेगा और खरपतवार भी कम आएगा, और जब फ्रूट आएगा वो स्ट्रॉ में एक पैडिंग मटेरियल मिल जाता है ना, तो
1: जी
0: ये सब चीज़ एक तो ये ध्यान रहना चाहिए। दूसरा, आपको मैं पहले ही बोला जी स्ट्रॉबेरी फल देखने इतना आकर्षित है, लाल रंग, इसका खुशबू, तो इसमें खाली आदमी अट्रैक्टिव नहीं होता है, ये जो लिजर्ड होता है ना, ये जो लिजर्ड ये भी खा लेते हैं, पंछी खा लेते हैं, तो इसी तरह इसको बचाने के लिए हम बोलते हैं जो एंटीबॉड नेट लगा दीजिए इसको कवर करने के लिए। दूसरा चीज़ है जो इसको तुरंत के बाद, ये इतना सॉफ्ट फ्रूट है वर्ल्ड में, इसके तुरंत के बाद ध्यान देना पड़ेगा जी, आप तुरंत के बाद इमिजिएटली इसको खाएंगे कि कोई जगह इसको मार्केटिंग करेंगे, मतलब कोई जगह ट्रांसपोर्ट करेंगे,
1: जी
0: तो उसी हिसाब से इसको तुरंत जैसे ही थोड़ा कलर आ जाता है उसी टाइम में आपको तुरंत करना पड़ेगा जे 1/4 कलर, हम जो 25% जो स्ट्रॉबेरी में कलर आ जाएगा, तो डिस्टेंट ट्रांसपोर्ट के लिए आपको 25% में, आपका लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए 50% में, और इमीजिएट खाने के लिए 100% जब कलर आ जाएगा उसी टाइम में खाना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों ने पौधे ले भी लिए, अपने पौधे लगा भी दिए और उनको तैयार भी कर लिया, उसके बाद समस्या आती है कि फसल का तुड़ान किस समय करें और अपने उत्पाद का जो है मार्केटिंग कैसे करें? इस विषय में क्या आपके विभाग की तरफ से कोई सहयोग प्रदान किया जाता है?
0: देखिए, विभाग के तरफ से तो मैं बोला प्रशिक्षण हम दिया जाता है, बाकी आपको जो सवाल है जी इसको तोड़ान का, इसका तोड़ान कोई पर्टिकुलर एक टाइम में नहीं होता है, जैसे कि आपका फ्रूट रेडी हो जाता है अप्रैल से लेकर आपको जून तक, शिमला जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में, आपका प्लेन्स में मैदानी क्षेत्रों में इसका दिसंबर एंड से लेकर फेबर तक चलता है, तापमान ज़्यादा बढ़ नहीं जाता है, इसका फसल दे देता है, जैसे कि एक पौधे में आप 200 ग्राम से लेकर 900 ग्राम तक फल आ सकते हैं, तो वो डिपेंड करेगा आपको कैसे उसका मैनेजमेंट कर रहे हैं, कैसे कंडीशन में ग्रो कर रहे हैं। और बाकी मार्केटिंग, देखिए मैं पहले ही बोला ये सॉफ्ट फ्रूट है, वर्ल्ड का सबसे सॉफ्ट फ्रूट में एक है,
1: जी
0: तो इसको जब तोड़ान के बाद, मैं पहले ही बोला जी कलर के ऊपर कौन कौन से कितना प्रतिशत कलर में कहाँ इसको डिस्टेंट में भेजेंगे उसके ऊपर तोड़ान होंगे।

0: 25%, 50%, 75% और 100% कलर के ऊपर तोलन होंगे। फिर इसका जब मार्केटिंग करेंगे, इसका जो पैकिंग करेंगे, ये पैकिंग 200 ग्राम से ज़्यादा पैकिंग एक पैकेट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा आप ऊपर में फ्रूट रखेंगे, नीचे वाला जो फ्रूट है ना वो दब जाएगा और वो क्रैश हो जाएगा। तो इसलिए 200 ग्राम का जो मार्केट में भी आप देखेंगे जो इसको आता है, 200 ग्राम करके ही फल आता है एक पैकेट में।
1: तो डॉक्टर कल्लोल कुमार प्रमाणिक जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी जानकारी आपने स्ट्रॉबेरी की उन्नत खेती के बारे में दी, इन सब जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
2: सनी, ये तो सुनिए आपने जानकारी स्ट्रॉबेरी की उन्नत खेती, डॉक्टर कल्लोल कुमार प्रमाणिक से।

0: 200 ग्राम करके ही फल आता है एक पैकेट में।
1: तो डॉक्टर कल्लोल कुमार प्रमाणिक जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी जानकारी आपने स्ट्रॉबेरी की उन्नत खेती के बारे में दी, इन सब जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
2: सनी, ये तो सुनिए आपने जानकारी स्ट्रॉबेरी की उन्नत खेती। डॉक्टर कल्लोल कुमार प्रमाणिक से जानकारी हासिल कर रहे थे हरिसिंह चंदेल। तो सनी, हम उम्मीद करेंगे कि आप इस जानकारी से जो है लाभ भी उठाएंगे। राजेंद्र जी, अब कार्यक्रम में समय हो चला है सनी को और एक लोकगीत सुनाने का। तो सनी, आइए सुनते हैं मीनाक्षी तनवर की आवाज में ये लोकगीत।

0: वेब 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुरा धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आकाशवाणी FM शिमला पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DTS सेवा पर भी उपलब्ध हैं।
1: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
2: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
1: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
2: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
4: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
3: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवो भव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का किया आग्रह। VBG रामजी योजना के पहलुओं का अध्ययन और सुझाव तैयार करने के लिए राज्य सरकार गठित करेगी उच्च स्तरीय समिति। सरकार के साथ वार्ता विफल रहने के बाद HRTC कर्मचारियों ने कल आधी रात से हड़ताल पर जाने का लिया फैसला। हड़ताल रोकने के लिए प्रदेश में ESMA लागू। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने युवाओं से नशा मुक्त व स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान का किया आह्वान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवो भव की भावना पर बल देते हुए अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त IAS 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर भारत की यात्रा का नेतृत्व करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सार्थक और स्थायी परिणाम प्राप्त करने के लिए विभागों में प्रभावी तालमेल जरूरी है। राज्य में VBG रामजी योजना के सभी पहलुओं का विस्तृत अध्ययन करने और प्रदेश हितों के अनुरूप सुझाव तैयार करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। ये समिति 29 जून तक मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अनुसार योजना के कई प्रावधान राज्य और स्थानीय श्रमिकों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को केंद्र सरकार के समक्ष प्रदेश का पक्ष मजबूती से रखने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने मनरेगा के स्थान पर VBG रामजी योजना लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और सभी राज्यों को 30 जून तक नई योजना अधिसूचित करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि नई योजना को अधिसूचित करने वाले राज्यों को ही बजट आवंटित किया जाएगा।

0: अभी आपने सुना ये प्यारा सा लोकगीत। तो अशोक जी, घड़ी की सुइयां भी इशारा कर रही है कार्यक्रम समाप्ति की ओर। सभी अपने किसान बहनों भाइयों से अनुमति चाहेंगे।
1: नमस्कार,
0: नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता दीपक कुमार।
2: अभी आपने सुना कृषि जगत कार्यक्रम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप ट्यून इन हैं FM शिमला के साथ। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: राज्य पथ परिवहन निगम की चालक परिचालक यूनियन और सरकार के बीच आज हुई वार्ता विफल रही है। यूनियन ने शिमला में परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ वित्तीय देनदारियों सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन इन पर सहमति नहीं बनी है। ऐसे में यूनियन ने कल 24 जून को रात 12 बजे से प्रदेशव्यापी चक्का जाम का ऐलान किया है। यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने बताया कि वित्तीय देनदारियों को लेकर लिखित आदेश न मिलने तक सरकार से कोई वार्ता नहीं होगी।
1: प्रदेश की जनता से भी गुहार लगाना चाहूंगा कि अब वक्त आ गया है, क्योंकि मेरे को लगता है कि इन्होंने हमें हल्के ये हमें ले रहे हैं। हमें कल 12 बजे से बाद बंद करना पड़ेगा। प्रदेश की जनता कहीं बुकिंग ना कराए और बसों का इंतजार ना करे, क्योंकि ये अब हमारी मजबूरी है।
0: इस बीच राज्य सरकार ने परिवहन निगम कर्मचारियों के हड़ताल पर 6 माह के लिए रोक लगा दी है। इस संबंध में परिवहन विभाग में अधिसूचना जारी कर हिमाचल प्रदेश आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम 1972 यानी एस्मा के प्रावधान लागू किए हैं। अधिसूचना के अनुसार सार्वजनिक परिवहन सेवाएं, जनता की आवाजाही, आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई, कानून व्यवस्था और जनहित के लिए अत्यंत आवश्यक है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि HRTC प्रदेश की लाइफलाइन है और चक्का जाम किसी भी समस्या का समाधान नहीं है।
2: चक्का जाम करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमने हिमाचल प्रदेश में आज से एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट एस्मा लगा दिया है। बसें चलाना जो है उतनी ही जरूरी है जितना जो है कुछ सर्विसेज और जरूरी हैं, क्योंकि ये प्रदेश को सेवा देती हैं। कर्मचारियों ने जाना है, स्टूडेंट्स ने जाना है, लोगों ने कहीं जाना है। बसेज चलाने के लिए जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे वो कदम हम उठा रहे हैं। हमारा कर्मचारियों से ये आग्रह है कि वो कोई ऐसा कदम ना उठाएं और नो रिटर्न पॉइंट पे ना पहुंचे। जो फैसले वो ले रहे हैं, सरकार को भी अपने हिसाब से कदम उठाने पड़ेंगे।
0: दूसरी ओर पूर्व परिवहन मंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता विक्रम ठाकुर ने पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों पर एस्मा लागू करने के निर्णय को कांग्रेस सरकार की तानाशाही करार दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार निगम कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने में पूरी तरह विफल रही है और अब एस्मा के सहारे उनकी आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। शिमला में एक बैठक में उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार रसायन मुक्त कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान कर रही है। बागवानी विभाग की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विभाग को हर संभव सहयोग प्रदान करेगी और रिक्त पदों को भी भरा जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को जातीय विकास विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, xhandle@AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज शिमला में ऑकलैंड सुरंग के समीप बहुमंजिला कार पार्किंग का लोकार्पण किया। करीब 7,60,00,000 रुपए की लागत से निर्मित इस परिसर में 145 वाहनों के लिए पार्किंग सुविधा उपलब्ध रहेगी। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने शिमला से ओलंपिक मैराथन को हरी झंडी दिखाई। खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेलो इंडिया प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
3: हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे खेलों में अपना नाम कमाएं, धीरे धीरे खेल को अपने जीवन में अपनाएं। और हमने अभी पिछले दिनों स्पोर्ट्स में बहुत कुछ खर्च करने का निर्णय लिया है, जिसमें हमारा सेंटर ऑफ एक्सलेंस जो मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में नदौन में बन रहा है, इंडोर स्टेडियम बन रहा है, उसमें तकरीबन 150 करोड़ की लागत से अभी अक्टूबर में बनकर पूरा हो जाएगा।
0: मुख्यमंत्री ने युवाओं से सरकार के नशा विरोधी अभियान का समर्थन करने और नशा मुक्त व स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान भी किया। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने आज कांगड़ा जिले के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में करीब 10 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भूमि पूजन किया। इन परियोजनाओं में रजोल, अनुही, जांगल, बग्गा सड़क और इसी मार्ग पर बनने वाला पुल शामिल है। उन्होंने अधिकारियों और संबंधित ठेकेदारों को निर्माण कार्य तय समय और उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूरा करने के निर्देश दिए। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को उनकी जयंती पर आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

0: शिमला के रिज मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता व मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि आधुनिक हिमाचल के निर्माण में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उन्होंने युवाओं और नेताओं से स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की विचारधारा के साथ आगे बढ़ने और प्रदेश के विकास में सहयोग देने का आह्वान किया। इस दौरान लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार और पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह समेत अन्य नेता भी मौजूद रहे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक व महान राष्ट्रवादी चिंतक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर हमीरपुर जिले के बड़सर क्षेत्र में हुए कार्यक्रम में सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने राष्ट्र की एकता व अखंडता के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि डॉ. मुखर्जी का जीवन राष्ट्रभक्ति, त्याग और समर्पण का अनुपम उदाहरण है, जिससे प्रत्येक देशवासी को प्रेरणा लेनी चाहिए। सिरमौर जिला परिषद के अध्यक्ष पद पर भाजपा समर्थित शिवानी और उपाध्यक्ष पद के लिए बलदेव भंडारी को चुना गया है। भाजपा ने इसे कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता का जनादेश बताया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस की नीतियों को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है।
1: ये पहला अवसर है सिरमौर जिला के इतिहास में जब 17 में से 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। आज सिरमौर जिला की जनता ने कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया। सड़कों, पुलों, पानी की योजनाओं, अस्पतालों को बंद करने वाली सरकार, ताला लगाने वाली सरकार, बिजली पानी को महंगा करने वाली सरकार को सिरमौर की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है।
0: वहीं सांसद सुरेश कश्यप ने भी जिला परिषद चुनाव परिणामों को भाजपा के लिए बड़ी सफलता बताया है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा अगले वर्ष विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवो भवा की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का किया आग्रह। वीबीजी रामजी योजना के पहलुओं का अध्ययन और सुझाव तैयार करने के लिए राज्य सरकार गठित करेगी उच्च स्तरीय समिति। सरकार के साथ वार्ता विफल रहने के बाद एचआरटीसी कर्मचारियों ने कल आधी रात से हड़ताल पर जाने का लिया फैसला। हड़ताल रोकने के लिए प्रदेश में एस्मा लागू। और मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने युवाओं से नशा मुक्त व स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान का किया आह्वान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
3: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
2: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
3: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है रोजगार समाचार। हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग, जल शक्ति मंडल नालागढ़, जिला सोलन से प्राप्त सूची अनुसार जल शक्ति मंडल नालागढ़ में पैरा स्टाफ पदों की भर्ती हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। जल शक्ति मंडल नालागढ़ द्वारा जलापूर्ति एवं सिंचाई योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव हेतु पैरा स्टाफ के विभिन्न पदों को अंशकालिक आधार पर भरा जाना है। पदों का विवरण इस प्रकार से है। पैरा पंप ऑपरेटर के 12 पद, पैरा फिटर के 3 पद और मल्टीपर्पज वर्कर के 25 पद भरे जाने हैं। इन पदों को भरने हेतु वांछनीय योग्यता इस प्रकार से है। पैरा पंप ऑपरेटर के लिए उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास होना चाहिए और

0: उम्मीदवार के पास इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, डीजल मैकेनिक, पंप मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, पंप ऑपरेटर का किसी भी मान्यता प्राप्त आईटीआई संस्थान से सर्टिफिकेट होना चाहिए। पैराफिटर के लिए उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास होना चाहिए और फिटर ट्रेड में किसी भी मान्यता प्राप्त आईटीआई संस्थान से प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से 8वीं पास होना चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित प्रपत्र पर अपने आवेदन 30 जून 2026 को सायं 5 बजे तक जल शक्ति मंडल नालागढ़ के कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। जल शक्ति मंडल नालागढ़ में पैरा स्टाफ पदों की भर्ती हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। कुल 40 पद भरे जाने हैं, जिनमें पैरा पंप ऑपरेटर के 12 पद, पैरा फिटर के 3 और मल्टीपर्पज़ वर्कर के 25 पद भरे जाने हैं। इन पदों को भरने हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून 2026 निर्धारित की गई है। रोजगार समाचार समाप्त हुए। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी। माटी की महक है जहां, खेतों खलियानों की वही आवाज घाटियों में गूंजती है। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। FM

फ्रीक्वेंसी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप ट्यून इन हैं एफएम शिमला के साथ। वो धुंधली यादें, वो सुरीले नगमे और वो बीता हुआ दौर, लौट आते हैं वो लम्हे बनकर यादों का शोर। महफिल संगीत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी रेडियो दोस्त दीपा भिक्टा, लेकर आई हूं एक ऐसा कारवां जो आपको ले चलेगा पुरानी दुनिया की सैर पर। हमारे इस कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में संगीत रूह की खुराक है। ये वो जुबान है जो दिल से दिल तक पहुंचती है। बदलते दौर में भले ही आवाज़ें बदल गई हों, लेकिन पुराने गीतों की महक आज भी ताज़ा है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको सुनवाते हैं तकदीर फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

भोले बिस्रे गीत आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम का अगला नगमा उपकार फिल्म से मन्ना डे की आवाज में।

0: अभी आपने सुना कश्मीर की कली फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज पर।
1: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
2: अरे भाई, खुशी तो होगी, अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
3: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध है समाज की असली धार।
1: सीखें युवा दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
2: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनित में जाए।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: के मूवी के इसी सॉन्ग के साथ फिल्म संगीत में आज के लिए इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप ट्यून इन हैं एफएम शिमला के साथ। आठ बजकर 45 मिनट होने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार संध्या और न्यूज एट 9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जर्मनी में जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी। आज भारत ने 2 रजत सहित 3 पदक जीते। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शिष्टमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवो भव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। विकसित भारत

0: 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट।
2: इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। आज के समारोह में पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया, जिनमें पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूडी और प्रख्यात गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं राजनेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, मशहूर अभिनेता आर माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पत्ति शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। सुपर्णा सेके के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
3: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
1: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज खंडों और 11 खनन अन्वेषण लाइसेंस खंडों की सफल नीलामी के साथ देश के खनिज मिशन को गति प्रदान की है। मंत्रालय ने नीलामी के 7वें चरण के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इससे अब तक नीलाम किए गए खंडों की कुल संख्या 56 हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 88 खंडों की नीलामी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेफाइट, दुर्लभ खनिज, वेनेडियम, टाइटेनियम, ग्लोकोनाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए ट्रकों और बसों से बदलने के लिए सरकार डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि ये समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स शोरूम मूल्य पर 8% की छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत दोनों मंत्रालयों में राष्ट्रीय परिवहन गतिशीलता और किफायती आवाजाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मुख्य उद्देश्य सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश और नीति निर्माण में सहयोग के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के

0: शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
1: रास लफान परियोजना में जब वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ विपक्षीय बैठकें की।
1: ब्रिक्स एनएसए की मीटिंग चल रही है, कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन के विदेश मंत्री और वहाँ के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे एनएसए की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक बातचीत थी।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय आधार पर फिलिस्तीन को सहायता भी प्रदान की है।
1: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ UNRWA के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
0: भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा साझेदारी पर श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफ़ी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेसेक बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाम के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़ा है। आज नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत का निर्यात $1.84 trillion तक पहुँच गया और आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर न होकर दूसरे विकल्पों की ओर बढ़ना चाहिए।
2: डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में निर्भर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, विंड, सोलर, न्यूक्लियर वो करना चाहिए। और दूसरी चीज है वी शुड एक्सप्लोर मोर सो दैट वी कैन हैव मोर डोमेस्टिक पेट्रोलियम। थर्ड इज वी शुड डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेज। एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें और कहीं से ला पाएंगे।
0: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले 2 से 3 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने 1 कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा

रात्रि के 9:15 हुए हैं। एफएम शिमला पर अब आप सुनेंगे एक फिल्म से कार्यक्रम। आज की फिल्म है करण अर्जुन। जी हाँ लिसनर्स, ये फिल्म 1995 में रिलीज हुई एक बेहद लोकप्रिय बॉलीवुड एक्शन और ड्रामा फिल्म है। राकेश रोशन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में शाहरुख खान और सलमान खान ने पहली बार एक साथ मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। ये फिल्म पुनर्जन्म और अपने पिता की हत्या का बदला लेने की कहानी पर आधारित एक सुपरहिट क्लासिक है।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

फ्रीक्वेंसी 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप ट्यून इन हैं एफएम शिमला के साथ और सुन रहे हैं एक फिल्म से कार्यक्रम। आज की फिल्म है करण अर्जुन। जी हाँ लिसनर्स, इस फिल्म के प्रतिष्ठित संवाद मेरे करण अर्जुन आएंगे। आज भी भारतीय सिनेमा में बहुत प्रसिद्ध है। फिल्म को कई फिल्मफेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। आपको बता दें कि ये फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद 95 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। फिल्म का संगीत बहुत हिट रहा था।

फ्रीक्वेंसी 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप ट्यून इन हैं एफएम शिमला के साथ। एफएम शिमला पर अब आप एंजॉय करेंगे ईमेल बेस्ड प्रोग्राम दिल की आवाज भी सुन। प्रोग्राम में अगर आप भी सुनना चाहते हैं अपनी चॉइस के सॉन्ग्स तो आप भी हमें सेंड कर सकते हैं ईमेल्स और एंजॉय कर सकते हैं अपने फेवरेट सॉन्ग्स 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल आईडी है airfmshimlamusicmail@gmail.com। सो डियर लिसनर्स, जब तक आपके ईमेल्स हम तक पहुंचते हैं तब तक हम आप सभी के लिए प्ले कर रहे हैं तेजाब मूवी का ये सॉन्ग। एंजॉय कीजिए और यूं ही बने रहिए हमारे साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर।

0: किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
1: कैसे?

0: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ईमेल बेस्ड प्रोग्राम दिल की आवाज़ भी सुन आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हाँ लिसनर्स, आपके ईमेल्स अब तक पहुंचने शुरू हो गए हैं। जो सबसे पहला ईमेल हमें मिला है वो हमें भेजा है चौपाड़ी रोडू से एलएल गुंजेटा, जामिंता गुंजेटा, भजन देवी गुंजेटा, तारा सिंह गुंजेटा और गुंजेटा फैमिली ने। ये सुनना चाहते हैं कुर्बानी फिल्म का कोई सा भी गीत, और इसी फिल्म का गीत सुनने के लिए हमें एक और फरमाइश लिखकर भेजी है। भेजने वाले हैं जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, डमराव से वली उल्ला अंसारी और बक्सर बिहार से शरीफुद्दीन अंसारी, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, गोपाल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा का हमें ईमेल मिला है। छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, प्राण टेलर और पुना राम, और इनके साथ है कृष्णा दिवांगन। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। छत्तीसगढ़ से गुलाब दास, राजा दास, रानी मानी कुमारी और खंडवा से कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली, समर फूलमाली और वेदिका फूलमाली। राजस्थान से रजाक मोहम्मद, समीन बेगम, इमरान खान, इरफान खान और जिशन खान। महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे। उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक। सन भांजी नगर से राजेश और राजदीप राजेश और राशि राजेश, और इनके साथ हैं शीतल राजेश। गंज डुंडवारा से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबाना अंसारी और आलिया अंसारी का हमें ईमेल मिला है। बिहार से मुसरत जहां, नाज तलअत जहां, फरहत जहां, रफ़ी अंत जहां और नुजहत जहां हमें ईमेल कर रहे हैं, और इनके साथ ही हैं साजिया शाहीन और नाजिया नूर नाज। श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश, जीविका और इनके साथ अजय और करिश्मा अविका भी हैं। मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल फूलवाले और इमरान अहमद। इसके साथ ही नई दिल्ली से आमना और आसमा परी, राबिया, आशु और इनका समस्त जो परिवार है वो हमें ईमेल कर रहा है। तो लीजिए आप सभी एंजॉय कीजिए कुर्बानी फिल्म का ये गीत, और यूं ही बने रहिए हमारे साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: आकाशवाणी के साथ जुड़िए और अपने उत्पाद और सर्विसेज यानी सेवाओं से जुड़े अपने कारोबार के बारे में सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें।
1: शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।

ईमेल बेस्ड प्रोग्राम दिल की आवाज़ भी सुन आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा का हमें ईमेल मिला है और ये सुनना चाहते हैं चांदनी फिल्म का कोई सा भी गीत। उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनी, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह का हमें ईमेल मिला है। बिहार से रविंदर मोहनदास और आशा देवी, गांव फरांसी हिसार से राजकुमार, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार हमें ईमेल कर रहे हैं। उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद, नेहा जैन, दीपक, मयंक और चेतन नहाटा का हमें ईमेल मिला है और ये भी सुनना चाहते हैं चांदनी फिल्म का कोई सा भी गीत। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा का हमें ईमेल मिला है। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका, पंजाब से सुभाष, विमला, इंदु, पार्वती, हिमांशु का हमें ईमेल मिला है। तो आप सभी लिसनर्स के लिए हम प्ले कर रहे हैं चांदनी मूवी का ये सॉन्ग। एंजॉय कीजिए और यूं ही ट्यून इन रहिए हमारे साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला। रात्रि के 10 बजे हैं एफएम शिमला पर। अब आप सुनेंगे गजलें।

0: प्रदेश के सशक्त प्रचार प्रसार माध्यम आकाशवाणी पर आप अपने कारोबार में ला सकते हैं बढ़ोतरी।
1: यदि आप जुड़े हैं किसी स्टार्टअप या मेक इन इंडिया या किसी पंजीकृत सेल्फ हेल्प ग्रुप से, तो आप आकाशवाणी पर सस्ते दामों में विज्ञापनों के माध्यम से अपनी मेहनत को जन जन तक पहुँचाकर अपने सपने साकार कर सकते हैं। शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।

गजलें आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम की अगली गज़ल आपको सुनवा रहे हैं अबीदा परवीन की आवाज़ में।

0: यदि आप अपनी लेटेस्ट ज्वेलरी या कपड़ों के डिजाइन या कपड़ों के व्यवसाय को जनजन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी से सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार कर लाभ उठा सकते हैं।
1: शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।
2: कार्यक्रम की अगली गजल मिताली सिंह और भूपेंद्र सिंह की आवाज में 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं गजलें।

ये गज़ल आपने सुनी मिताली सिंह की आवाज़ में 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं गज़लें, कार्यक्रम की अंतिम गज़ल आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में टाइम हुआ है रात्रि के 10:30 और FM शिमला पर अब आप सुनेंगे सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में द ट्रेन मूवी से।

0: सस्ते दामों पर अपना विज्ञापन प्रसारित करवाएं।
1: आपका थोड़ा सा प्रयास आपके सपनों को पूरा कर सकता है।
0: आकाशवाणी के माध्यम से आप न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश भर में अपने व्यवसाय का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप ट्यून इन हैं एफएम शिमला के साथ और सुन रहे हैं सदाबहार नगमे। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं गीता दत्त की आवाज में हावड़ा ब्रिज मूवी का ये सॉन्ग। एंजॉय कीजिए और यूं ही बने रहिए हमारे साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर।

अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में चलती का नाम गाड़ी फिल्म का गीत। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाज़ों में पेइंग गेस्ट फिल्म का गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रस लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। साथ ही भारत कतर सहयोग को विभिन्न क्षेत्रों में और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार एलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों की व्यापक निगरानी के लिए सहमत हो गया है। इसके बदले अमेरिका हार्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही पर पाबंदियों में ढील देगा और कड़े नियमों के तहत रोकी गई वित्तीय रियायतें जारी करेगा। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेतृत्व ने मौजूदा कूटनीतिक बातचीत के दौरान लचीला रुख अपनाया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने परमाणु निगरानी ढांचे के दायरे से को लेकर अमेरिका के दावों को खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने स्पष्ट किया कि ईरान ने अपने विशिष्ट परमाणु केंद्रों की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसियों द्वारा निगरानी के लिए कोई सहमति नहीं दी है। पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ

0: For thunder squall activity with winds speeds likely to reach 60 to 70 kilometers per hour over Delhi, Haryana, Chandigarh and West Uttar Pradesh till tomorrow. And that is the end of this news bulletin.
1: मेगाहर्ट्ज पर यह है एफएम शिमला। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर आप सभी से फिर भेंट होगी। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय हिंद।